0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तदनुसार 23 अगस्त 2026, आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ कामधाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में जा पहुंचा। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने पर वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वो बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी वो वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वो अपने घर लौट आया। अब घर आकर वो 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात ये है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।
1: जीवन सौरभ।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशम के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आज का विषय होगा प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 9:00 प्रकृति की पुकार कार्यक्रम आज वायुमंडल पर केंद्रित होगा। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारतीय सशस्त्र सेनाएं। इस विषय पर जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 10:00 देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद। सुबह 11:00 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा और 11:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम की 10वीं कड़ी सुनेंगे। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है ऋग्वेद के ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
1: दानो अग्ने बृहतो दाह सहस्रिणो दुरो न वाजम श्रुत्या अपावृधि प्राची द्यावा पृथ्वी ब्रह्मणा कृधि स्वर्ण शुक्र मुषसो वि दिद्युतुहु। हे अग्निदेव, आप हमें हजारों तरह की विभूतियां प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। कीर्तिदायी अन्न प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। उषाएं आपको आदित्य के समान प्रकाशित करती हैं, अतः द्युलोक तथा पृथ्वी लोक को ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाएं। स इधान उषसो राम्या अनुस्वर्ण दीदे दरुषेण भानुना होत्राभिरग्निर्मनुषः स्वध्वरो राजा विषामतिथिश्चा रुरायवे। उषा की समाप्ति के बाद प्रज्वलित अग्निदेव अपने उज्ज्वल तेज से प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ याज्ञिक प्रजाधिपति वे अग्निदेव मनुष्यों की स्तुतियों से प्रशंसित होते हुए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते हैं। एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्व्य धीष पीपाय बृहद्दिवेषु मानुषा दुहाना धेनुर्व्रजनेषु कारवेत्मना शतिनम पुरुरूपमिषणि। हे अग्निदेव, आप अत्यंत तेजस्वी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानव समुदाय के बीच में आप स्तुतियों से तृप्त होते हैं। याजकों को आप कामधेनु के समान असंख्य प्रकार का धन प्रदान करते हैं। वयमग्ने अर्वता वा सुवीर्यम् ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाम अति अस्माकम् द्युम्नमधि पंच कृष्टिशुच्चा स्वर्ण शुशुचीत दुष्टरम्। हे अग्निदेव, हम पराक्रम तथा ज्ञान के द्वारा सामर्थ्यशाली बनकर मानव समुदाय में श्रेष्ठ बने। हमारा उच्च स्तरीय अनंत तथा दूसरों के लिए अप्राप्त धन समाज के सभी वर्गों में सूर्य की तरह प्रकाशित हो। स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन् सुजाता इशयन्त सूरयः यमग्ने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वेदमे। हे बलशाली अग्निदेव, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ज्ञानी जन यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन धान्य से संपन्न मनुष्य हमारी इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनीय पूजनीय तथा तेजस्वी रूप में अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि वस्वो रायः पुरुषचंद्रस्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शक्धिनः। हे ज्ञानोत्पादक अग्निदेव, ज्ञानी स्तोताओं सहित हम दोनों सुख की कामना से आपके आश्रित हों। आप हमारे लिए उत्तम संतति रहने के योग्य ग्रह आदि तथा श्रेष्ठ संपत्ति प्रदान करें। ये स्तोत्रिभ्यो गोव ग्रामश्व पेश समग्ने राति मुपसृजन्ति सूरयः अस्मांच तांश्च प्रहिनेषि वस्य आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तोताओं को श्रेष्ठ गौएं तथा बलशाली घोड़ों से युक्त धन प्रदान करते हैं, आप उन्हें तथा हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें। यज्ञों में वीर संतति से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। ग्रंथ और महापुरुषों के उपदेश हमारी समस्याएं हल करने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए जब कभी भी ऐसा लगे कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तब ग्रंथों का पाठ शुरू करें। योग वशिष्ठ, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता और कई ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो आनंद और उल्लास बढ़ाते हैं, समस्याओं का समाधान बताते हैं।

वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास संयम, चरित्र बल और सत्य है। जो लोग आत्मविश्वासी है वे मुश्किल कामों को भी सफलतापूर्वक कर जाते हैं। कभी भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है जो झूठा है अथवा सत्य से दूर है। सत्यमेव जयते यानी सत्य ही सदा जय का कारण बनी है। इसीलिए जीवन में यथार्थवादी रहें, सत्य के साथ रहें।

सपने देखना अच्छी बात है, भविष्य के लिए अच्छे अच्छे विचार रखें, लेकिन हमारे सपने यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक होने चाहिए। जो कुछ भी जीवन में सत्य है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अपनी शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता को देखते हुए ही अपना सपना बुनना चाहिए। बड़ा संकल्प लेकर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। केवल विचारों में बड़े बड़े महल खड़े नहीं करना चाहिए।

श्रम के बिना कभी भी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए श्रमिक बने, संघर्षशील बने, क्योंकि हमारे पास दैवीय सामर्थ्य है। हम मनुष्य हैं, हम में ईश्वर के अंश है, इसीलिए किसी भी कठिनाई में विचलित नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, कठिनाइयां नए अवसर लेकर आती है।

जीवन में उजाला और अंधकार दोनों का आना जाना लगा रहता है। तमस का अर्थ है अंधकार यानी रात्रि रहेगी, प्रकाश का अर्थ है दिवस। कभी जीवन में एक समय ऐसा आता है जब परेशानियां रहती है, तब हमारा आत्मविश्वास सहायक बनता है। जिन लोगों के विचार श्रेष्ठ हैं, वे जीवन की आने वाली कठिनाइयों से कभी विचलित नहीं होते।

समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास धन से भी कुछ अधिक मूल्यवान है तो वो समय ही है। जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं तब जीवन का नाश करते हैं। प्रत्येक सांस मूल्यवान है, हर पल नए अवसर लेकर आता है। हम हर पल में नए प्रयोग कर सकते हैं, जीवन की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक भी पल बर्बाद ना करें।

आशावादिता एक बड़ा सद्गुण है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा की वजह से जीवन बहुत बड़े संकट की ओर चला जाता है। जीवन अंतहीन संभावना से भरा हुआ है। हर पल नई ऊर्जा और नई उमंग हमारा स्वागत करती है। इसीलिए चुपचाप ना बैठ जाएं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। निराशाओं से दूर हटकर नए मार्ग की ओर बढ़ें और कुछ ऐसा करें जहां सिद्धि सफलता सब मिल सकती है।

सही दिशा में सही समय पर सही निर्णय लें, सही लक्ष्य का चुनाव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा और सफलता भी मिलेगी। श्रम करते हुए कठिनाइयां तब आती है जब हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, दिशा नहीं चुन पाते हैं, सही दिशा और सही समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं। हमें सही समय पर उचित दिशा में अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए सही दिशा चुनना चाहिए, तब हमारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज के कार्यक्रम में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी टी प्रकाशम के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास केवल हमारी स्वाधीनता के संघर्ष और आजादी के मिलने तक ही सीमित नहीं रहा। भारत की आजादी के बाद भी कठिनाइयां बहुत सी थीं, अनेक चुनौतियां सामने थीं। भारत की आजादी और आजाद भारत के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की कहानी को अनगिनत राष्ट्र सेवियों ने अपने अनथक प्रयासों से लिखा है। उनके प्रयासों ने ही दबे कुचले भारतीय मन में स्वाभिमान और गौरव का भाव भरा। परिणाम स्वरूप गांव से लेकर शहर तक विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों ने अपनी अस्मिता को नए सिरे से जाना, समझा और उसे रेखांकित किया। इसी दौरान ऐसे लोग उभरे जो अपने अपने क्षेत्र की पहचान बन गए। तेलुगु अस्मिता से जुड़े एक ऐसे ही महानायक थे टंगुटूरी प्रकाशम, जो टी प्रकाशम के नाम से भी जाने जाते हैं। टी प्रकाशम देश के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से तो थे ही। वो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे और सन 1953 में मद्रास स्टेट के विभाजन के बाद स्थापित आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तेलुगु जनमानस ने उन्हें आंध्र केसरी कहकर समादृत किया। टंगुटूरी प्रकाशम का जन्म 23 अगस्त सन 1872 को आंध्र प्रदेश के विनोदर यूनिपलेम गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल कृष्णैया और माता जी का नाम सुबम्मा था। जब वो मात्र 11 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां ने बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। बचपन से ही टी प्रकाशम का सपना था कि वो एक वकील बने, लेकिन वो मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके और ये सपना धुंधलाने लगा। लेकिन आगे चलकर वो एक सफल वकील बने। शुरुआत में टी प्रकाशम दूसरी श्रेणी के वकील थे और उच्च न्यायालय के किसी भी मामले में बहस नहीं कर सकते थे। ये बात उन्हें कचोटती रही और उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड

इंग्लैंड पहुंचकर टी प्रकाशम ने कानून की पढ़ाई तो की ही, यहां वो रॉयल इंडिया सोसाइटी में शामिल हुए और दादा भाई नौरोजी के चुनाव के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में काम किया। बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद टी प्रकाशम भारत लौटे और मद्रास उच्च न्यायालय में कई बड़े मामलों में कानूनी पक्षकार बने। इस दौरान उन्होंने एक कानून की पत्रिका का संपादन भी किया। इस तरह वकालत का उनका सपना पूरा हुआ। प्रिवी काउंसिल में मुकदमा लड़ने के लिए वो दो बार इंग्लैंड गए और यहीं वो पहली बार गांधी जी से मिले। गांधी जी से हुई भेंट का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। धीरे धीरे उनकी सक्रियता बढ़ती चली गई। मद्रास अधिवेशन में विपिन चंद्र पाल का आना हुआ। अंग्रेजी सत्ता की नाराजगी का भय सभी के भीतर था। ऐसे समय में अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रश्न सामने था। टी प्रकाशम ने पूरी निर्भयता के साथ इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो अब स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों में लगातार सक्रिय भागीदारी करने लगे। इस बीच गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। टी प्रकाशम ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करने का संकल्प लेते हुए सत्याग्रह प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया और वकालत का पेशा छोड़ दिया। वो स्वराज पत्र के कार्यकारी संपादक हुए, जो अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होता था। 1922 में असहयोग आंदोलन के समय जब गुंटूर में प्रदर्शन की बात आई, तब उन्होंने 30,000 लोगों को एकत्रित कर इस आंदोलन का आयोजन किया। साइमन कमीशन के विरोध में जब देश खड़ा हुआ, तब टी प्रकाशम ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें न तो पुलिस का डर था और न ही गोलियों का। वो तो अपने साथियों को लेकर डटे रहे। साइमन गो बैक के नारे के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। मद्रास में हुए नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था। टी प्रकाशम शुरू से ही एक लोकप्रिय नेता थे। 31 वर्ष की उम्र में ही वो नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए थे। सन 1937 में हुए चुनावों के बाद वो सी राजगोपालाचारी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए और जमींदारी जांच समिति की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक विकृतियों में पूरा सुधार हो। भारत माता की सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य था।

डूरी प्रकाशम का जीवन राष्ट्र सेवा का एक सुंदर उदाहरण है। वो जब और जहां रहे सदा राष्ट्र को समर्पित रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी लोकप्रियता और सक्रियता ने लोगों को जागृत कर दिया। लोग एकजुट होकर खड़े हो गए और अंग्रेजों को चेतावनी देता नारा गूंज उठा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। करो या मरो का महामंत्र मन में लिए हुए टी प्रकाशम ने इस आंदोलन को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया कि उनकी गतिविधियां अंग्रेजों को चुभने लगीं। उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया गया। वो 3 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अप्रैल 1946 में वो संयुक्त मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इस पद पर उन्होंने 13 महीने तक कार्य किया। इस दौरान उन्होंने समाज सुधार और आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की। सन 1947 में टी प्रकाशम को भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद भी हैदराबाद भारत संघ में सम्मिलित होने को तैयार नहीं था। हैदराबाद का निजाम अब भी सत्ता में बना हुआ था। राज्यों के विलीनीकरण के रास्ते में हैदराबाद का निजाम एक चुनौती बनकर खड़ा था। इस कठिन परिस्थिति को सुलझाने के उद्देश्य से टी प्रकाशम ने अपनी जान की चिंता न करते हुए 1948 में हैदराबाद का दौरा किया। चाहे स्वाधीनता आंदोलन हो या आजाद भारत के सुंदर भविष्य के लिए कोई संघर्ष, टंगुटूरी प्रकाशम कभी भी पीछे नहीं हटे। हर संघर्ष में निर्भय होकर वो शेर की तरह कूद पड़े। इसीलिए आम जनता ने उन्हें आंध्र केसरी कहकर पुकारा। सन 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और टी प्रकाशम इस नए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए। वो केवल पार्टी की ही पसंद नहीं थे, वो आम जनता की भी पसंद थे। टी प्रकाशम ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, ना जीविता यात्रा। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। पहले 2 भाग में उनके शुरुआती जीवन और स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने की चर्चा है। तीसरे भाग में आंध्र प्रदेश की स्वतंत्रता और गठन की जानकारी है और 4 भाग में उनके राजनीतिक करियर का वर्णन है। टी प्रकाशम ने अन्याय के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया और गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए मां भारती की सेवा की। 20 मई सन 1957 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी टी प्रकाशम के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं बच्चों के लिए उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम रक्षाबंधन विशेष है, जिसमें आज का विषय रहेगा प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है रक्षाबंधन, प्रकृति के लिए भी एक रक्षा सूत्र जरूरी है।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। सावन का महीना है, बाहर बारिश की रिमझिम है, पेड़ धुले धुले से लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। सच कहूं तो सावन आते ही मन भी जैसे हरा हरा हो जाता है। भाग दौड़ के बीच भी मन करता है कि थोड़ी देर रुक कर बारिश को देखें, पेड़ों के पास बैठें और इस मौसम को महसूस करें। तो बस आज स्टूडियो में मैंने सोचा क्यों ना हम सावन के इस बहुत ही सुंदर से रंग को और सावन में आने वाले एक और भी सुंदर त्योहार को आप सब बच्चों के साथ मनाएं। तो बच्चों, रक्षाबंधन का तो बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता ही है, और जब ये त्यौहार आने वाला है और हम इसे मना रहे हैं, तब ये ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ बातें और सोचें। और आपको ये भी पता है कि जब भी बाल सभा होती है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा, कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, कुछ ना कुछ ऐसा फूड ज़रूर तैयार करती हूँ जो आपके दिमाग के लिए हो, विचारों के लिए हो, क्योंकि बच्चों सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने से दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो एक वो गाना था ना एक फिल्म में, सोचो सोचो क्या ये पेड़ है, तो वही वाली बात है कि हम ज़रा चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से सोचें तो बच्चों हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो आज हम लोग जो सोचने वाले हैं वो यही कि क्या रक्षाबंधन हम जैसे मनाते हैं उसमें हम कुछ थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा ट्विस्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि बहनें तो इंतज़ार कर रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए और उससे कोई सुंदर सी गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन हम आपको ऐसे रक्षाबंधन की बात बताने वाले हैं बच्चों, जो आपको गिफ्ट में हो सकता है उस समय कुछ ना दे, लेकिन जीवन भर बहुत कुछ देता रहेगा। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ सुनाने वाले हैं जो मुझे एक बच्चे ने लिखकर भेजी थी। उसने लिखकर भेजा था कि रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, हरियाली की आई कहानी, पेड़ हंसे और धरती मुस्काए, सावन सबके मन को भाए। ये बच्ची है मेदिनी और वो आ जाने वाली थी। उसने मुझे ये छोटी सी कविता लिख के भेजी, लेकिन वो क्या हुआ ना, सावन में भीग गई, और भीग गई तो तबीयत खराब हो गई बच्चों। तो बस मैंने कहा जब तुमने छोटी छोटी सी कविताएं लिखी हैं वो मुझे भेजो, मैं आज बच्चों को सुनाऊंगी। अब क्या होता है बच्चों कि हम बाकी दिनों में कितनी भी चीज़ों में उलझे रहें, स्कूल, पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, घर का काम, लेकिन बारिश आते ही हम और आप खिड़की के बाहर झांकते ज़रूर हैं, पेड़ों को देखते ज़रूर हैं, बारिश की आवाज़ सुनते ज़रूर हैं, मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं। यानी हमें प्रकृति थोड़ा रुकना सिखाती है ना, और इसी को बच्चों माइंडफुल लिविंग कहा जाता है। यानी हम जिस पल में जी रहे हैं उसे हमें ध्यान से जीना है, और प्रकृति इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अच्छा लगता है ना, पत्तियां हिलती हैं, कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं बच्चे तो भी ऊपर से पत्तियां गिर रही होती हैं, और कभी कभी हवा चलती है तो बच्चों को और मज़ा आ जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो हमारे मन को बहुत सुकून देती हैं, जैसे किसी पेड़ के पास बैठना, उसे छूना, उसकी छाया में सांस लेना, ये सब हमें प्रकृति से जोड़ता है। और पता है बच्चों, कुछ लोग तो पेड़ों को गले भी लगाते हैं, जैसे हम किसी अपने से मिलकर गले लगते हैं ना, वैसे ही, और इसे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होता है। आप पता है, आज जब मैं यहाँ आ रही थी, बहुत झिमिर झिमिर, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा कुछ बच्चे एक जगह पानी भर गया था, तो उस जगह ना बहुत तेजी तेजी से उछल रहे थे, और वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे कि उनके कपड़े गंदे हो।

0: रक्षा सूत्र अगर हम रक्षा के लिए कहें तो पेड़ और प्रकृति भी तो कितनी चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। ये पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, और उससे बड़ा क्या है बताइए। और जब हम उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे तब हमारा एक रिश्ता कायम होगा पेड़ के साथ। कुछ बच्चे तो पौधों में पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई फूल ना तोड़े, कोई फल ना तोड़े, कोई पत्थर ना मारे पेड़ पर, ये सब ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, अगर आम लगा हुआ है तो फट से कंकड़ मार देंगे और आम तोड़ लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। हाँ, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ को एक रक्षा सूत्र बांधना है, और हो सके तो कुछ और बच्चों को भी ले जाइए अपने साथ। जब आप ढेर सारे बच्चे लेकर पेड़ के पास जाएंगे, उसको तिलक करेंगे ऐसे सांकेतिक रूप से, और रक्षा सूत्र बांधेंगे, और कॉलोनी और मोहल्ले के बच्चों को जब आप ये बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन हम प्रकृति के साथ भी मनाएंगे, है ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपका उस पेड़ के साथ कितना गहरा नाता हो जाएगा, उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। अब एक बहुत सुंदर सी बात है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और हमें पालने पोषण करने वाली मातृभूमि, दोनों का स्थान स्वर्ग के सुखों से भी ऊपर और महान होता है। तो बच्चों, इस धरती के लिए, इस जन्मभूमि के लिए अगर हम बच्चे कुछ सबसे अच्छा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं अपनी प्रकृति की रक्षा और सेवा। ऐसे ही एक और गतिविधि मैंने देखी कि कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं, कलश में जल भरते हैं और जल पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। और बच्चों, यही देखने के बाद आज मैंने आपसे ये बात कही है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जब वो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो एक खुद से संकल्प भी लेते हैं कि अब से हम जल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। नर्मदा नदी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, सालों से, लाखों वर्षों से ये नदी बह रही है बच्चों। और खास बात यह है बच्चों कि इस नदी के पास कोई ग्लेशियर से पानी नहीं आता। जो ये जंगल, जो ये बड़े बड़े पेड़, जो बहुत सारे जंगल मिलकर जो पानी को बचाते हैं, अपनी जड़ों में जो पानी को सोखते हैं, वो पानी धीरे धीरे रिस कर इस नदी में आता है, और फिर ये जाने कितने लोगों को जीवन देती हुई बहती है। तो कितनी बड़ी भूमिका है ना पेड़ों की। तो इस बार आप याद रखिए कि आपको पेड़ों के साथ, जल के साथ और प्रकृति प्रदत्त हर चीज के साथ रक्षा सूत्र का एक बंधन मन ही मन जरूर बांधना है, ताकि आप प्रकृति की सेवा करने का एक संकल्प अपने भीतर जरूर लें। और जो बच्चे ऐसा करेंगे वो मुझे बाल सभा में बाद में भी बता सकते हैं। आप लोगों को तो मैं मिलती ही रहती हूँ, कभी आपके स्कूल से निकलते वक्त, कभी आपके कॉलोनी, कभी आपके मोहल्ले, बहुत सारी जगह आप मुझसे मिल सकते हैं। और मुझसे ही क्या, आप अपनी माँ को बता सकते हैं, पिताजी को बता सकते हैं कि हमने इस बार रक्षाबंधन पर प्रकृति की जितनी भी संसाधन है, चाहे वो जल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, किसी ना किसी को रक्षा सूत्र बांधिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, या नल खुला देखूंगा तो बंद कर दूंगा, और पेड़ों के साथ भी ये वचन निभाऊंगा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा या रक्षा करूंगी। कुछ बच्चे मुझसे बता रहे थे कि हम पेड़ों को पानी रोज देते हैं, लेकिन मैडम क्या होता है ना, कुछ बच्चे आकर वहाँ बहुत कचरा कर देते हैं, घर का सारा कचरा लाकर पेड़ के पास फेंक देते हैं। तो मैंने बोला ये चीज़ कि बच्चों, सब लोग मिल जाओ और एक छोटा सा क्लब बना लो, कॉलोनी का, मोहल्ले का। वो क्या होगा, आपका किड्स क्लब हो जाएगा, वो आपका बच्चों का क्लब हो जाएगा, और उसमें यही सब शिकायतें आए, आप लोग कहानियों की किताबें पढ़ो और उन्हीं कहानियों को फिर आप डिस्कस करो। कम से कम सप्ताह में एक बार तो मिलो सारे लोग मिलकर। फिर अगर कोई बच्चा कंकड़ पत्थर फेंक रहा है पेड़ों के पास, या पेड़ों के पास अपने घर का कचरा लाकर फेंक रहा है, तो उस आपकी जो समिति या क्लब बनाओगे बच्चों का, उसमें उन चीजों को डिस्कस करो। फिर आप में धीरे धीरे, सिर्फ ये डिस्कशन ही नहीं होगा, आप में धीरे धीरे लीडरशिप आएगी। आप धीरे धीरे अपनी बातों को ओन करना शुरू करोगे, आप में गंभीरता आएगी, आप चर्चा करोगे उन बातों की। और बच्चों, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है जब आप कोई निर्णय लेते हो, जब आप सबके साथ बैठते हो, कुछ अच्छी बातें करते हो, खुद से प्रॉमिसेस करते हो, उन्हें निभाते हो, तो बड़ा मजा आता है बच्चों। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एक बच्चों का क्लब जल्दी से बनने वाला है और फिर मुझे आप लोग बताने वाले हो? एक कहानी सुना दूं इसी बात पर आप लोगों को, एक ईमानदार बच्चे की कहानी सुनाती हूँ, ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। माता पिता की इकलौती संतान, बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। बटुआ समझते हो, जो हाथ में लोग लेकर चलते हैं ना, बटुआ कपड़े का भी बनता है और उसमें वो पैसे रखे रहते हैं, मतलब पर्स समझ लीजिए आप एक तरह से। तो जैसे ही रामू ने बटुए को देखा, उसने बटुए को उठाया, उसने क्या देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही है। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उसी दिशा में चल पड़ा। वो पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि उसमें सभी पैसे बहुत सुरक्षित थे। वो रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के स्वरूप कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। तब रामू के पिता ने कहा कि मुझे इसे आगे की पढ़ाई करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस व्यापारी ने कहा कि जब आप इतनी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ कि आपसे रामू की पढ़ाई लिखाई सब का खर्च मैं उठाऊंगा। फिर क्या था, उस व्यापारी ने रामू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और देखते ही देखते रामू ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की और एक दिन बड़ा होकर वो एक सफल डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो फिर गांव लौटा और उसने जाकर उस व्यापारी के पैर छुए और कहा कि अगर आप ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होता। उस व्यापारी ने पता है क्या जवाब दिया? उस व्यापारी ने जवाब दिया, रामू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे माता पिता की परवरिश का आज ये रिजल्ट मिला है तुम्हें, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुमने मेरे पैसे लौटाए थे, तब मैं चकित था कि कोई बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है कि इतने सारे पैसे देखने के बावजूद उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया। ऐसे बच्चे की मदद तो मुझे करनी ही थी। रामू ने उसके पैर छुए और वहां से निकल गया। फिर उसी गांव में गांव वालों के लिए एक क्लिनिक खोला। तो बच्चों, सुना आपने कि किस तरीके से छोटी सी घटना आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल देती है? अगर उस दिन रामू पैसे वापस ना करता और उनसे नहीं मिलता, तो क्या वो पढ़ने के लिए शहर जा पाता? हो सकता है चला जाता, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि नहीं जा पाता, क्योंकि उनके माता पिता के पास बच्चों इतने पैसे नहीं थे। वो गांव के ही किसी स्कूल में फिर आगे पढ़ाई करने के लिए भेजते नहीं भेजते, ये सब भविष्य के हाथों में था। लेकिन उस दिन की एक घटना ने रामू का भविष्य ही बदल दिया। तो कई बार आपके अच्छे काम का अंजाम हो सकता है आपको बच्चों उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जो बार बार मैं आप लोगों से बच्चों बात करती हूँ ना, कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छा रखिए, अपनी बातचीत का लहजा, अपने बातचीत की तहजीब, बड़ों के प्रति सम्मान, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, बच्चों ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका हर दिन, हर पल, हर प्रतिपल आप जो व्यवहार करते हो बच्चों, आपको उसका ही रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरह रामू अपनी ईमानदारी के बल पर इतना अच्छा व्यक्ति बनकर निकला, उसी तरह आप लोग भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए बच्चों। और फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और इस रक्षाबंधन हमको क्या करना है, रक्षा सूत्र पेड़ों को या जल के कलश को भी बांधने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों। रक्षा का जो भाव होता है वो केवल हमारे परिवार तक क्यों रहे, हमारे जीवन में पेड़ हैं, नदियां हैं, जल हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के नाम यदि हम रक्षा सूत्र बांधें, तो हमको उस समय ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ धागा बांध रहे हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। एक छोटा सा वादा करिए कि इस पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको पानी देंगे, इसको बड़ा होते हुए देखेंगे। जब आप लोग अपने आप वादा करेंगे, और वो जो किड्स क्लब की बात मैंने कही, एक छोटी सी समिति बच्चों की बनाइए, वहाँ भी जब ये बात रखेंगे तो और बच्चों को भी समझाइएगा, और मिलकर अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई जगह आपको खाली दिखे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मिट्टी है और खाली जगह है, वहाँ पौधे लगा दीजिए। क्योंकि बच्चों पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी जगह, और बदले में कितना कुछ देते हैं। एक आम का पौधा बड़ा होकर जब बड़ा आम का वृक्ष बनता है, तो कितने लोगों को आम के फल देता है, देता है कि नहीं देता है। आपने सुबह सुबह देखा है नीम के पेड़ से कितने सारे आंटी अंकल जब निकल रहे होते हैं तो पत्तियां तोड़ते हुए चबाते हुए जाते हैं, कोई नीम की पत्तियां उबाल कर नहाने के लिए ले जाता है, क्योंकि नीम बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, हमारी सेहत की बेहतरी के लिए भी। ऐसे कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं बच्चों, जो बहुत अच्छी गिलोय की बेल होती है बच्चों, जो अगर हम उसके पत्ते खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है गिलोय। ऐसे कितने पेड़, कितने फूल, कितने फल हैं जिनकी कहानियां अगर मैं आपको सुनाने बैठूं तो वो बच्चों ख़त्म ही ना हो। गुलाब के फूल तो आपने देखे ही हैं, टीचर्स डे हो या कोई भी खास दिन हो, आप बाहर से लेकर जाते हो, सोचो खरीदते हो आप, कितने लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही पौधे लगे हों और खूब सारे फूल आ रहे हों, तो बस पौधे से जरा सी विनती कीजिए और एक छोटा सा फूल ले लीजिए। लेकिन इन सब के लिए हल्की फुल्की मेहनत तो लगती है, थोड़ा आपका डिटर्मिनेशन लगता है, थोड़ा आपका खुद के प्रति ईमानदारी लगती है कि अब आप पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अच्छा, मुझे एक बच्चा ये भी बता रहा था पिछली बार कि जब वो स्कूल में होता है हमेशा हाथ धोता है और भाग जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, घर में होता है मम्मी डांटती है तो बंद कर देता है। और ये बात उसने खुद ही एक्सेप्ट की, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए गलती कर रहा है लेकिन स्वीकार भी कर रहा है। तो क्या आप में से भी कोई बच्चा है क्या बच्चों, जो नल खुला छोड़ने की आदत है जिसकी, अगर आप घर में हो, ब्रश कर रहे हो, नल बह रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोग के साथ? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी बात हुई ना कि आपको पानी व्यर्थ नहीं बहाना है। याद रखना है बच्चों हमें कि प्रकृति के जो भी संसाधन है वो सीमित संसाधन है। आपने देखा है बच्चों, हम कई बार खरीद के पानी पीते हैं, बोतल का पानी खरीदते हैं और फिर पीते हैं। तो क्यों ना जब भी हम घर से निकलें, भले ही हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं या हम खेलने जा रहे हैं, तो अपने लिए एक बोतल में पानी लेकर जाएं। उससे दो फायदे होंगे बच्चों, पूछे क्या, पूछ लिया आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के, बोल दिया क्या, अब मैं बताती हूँ। फायदे ये होंगे, एक तो हर बार बच्चों जो प्लास्टिक की बोतल आप खरीद रहे हो ना, वो नहीं आपको लेनी पड़ेगी, वो बड़ी बड़ी लंबे समय तक परेशान करने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, आपके पैसे भी खर्च होते हैं हर बार जब आप पानी खरीदते हो। कभी किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ आपका पानी खत्म हो गया है, वहाँ ठीक है, लेकिन एक आदत डालिए कि अपने घर से जब भी निकलेंगे तब हम पानी की बोतल लेकर ही निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो प्लास्टिक की ना हो। कोशिश ये भी करेंगे कि जब हम कुछ खरीदने जाएंगे, या आपकी मम्मी या आपके पापा कुछ खरीदने जाएंगे, तो क्या बोलेंगे आप, आपने थैला लिया या नहीं? क्योंकि जब हम घर से कपड़े का थैला लेकर चलते हैं ना बच्चों, तब फिर हमें वो पॉलीथिन नहीं लेनी पड़ती जो सामान के साथ बेवजह हमारे घर में आ जाती है। और एक पॉलीथिन, एक जो वो पन्नी भी बोलते हैं, पॉलीथिन भी बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली भी बोलते हैं, उस एक पॉलीथिन को डिस्ट्रॉय होने में बहुत लंबा समय लगता है बच्चों, बहुत लंबा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो ज़मीन में बरसों बरस पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होती, और उसके कारण कई बार जानवरों को बहुत नुकसान होता है। कई बार जब नदी में आप जाते हैं और पॉलीथिन कोई छोड़ आते हैं, अपना सामान जो आप पॉलीथिन में लेकर आते हैं, तो जो जलीय जीव हैं उनको बहुत नुकसान होता है बच्चों। कई ऐसे रिसर्च हैं बच्चों, कई। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत थोड़े से दिन पहले की बात है, बच्चे कुछ बात कर रहे थे कि महासागर, अगर हम नदी को गंदा कर रहे हैं तो क्या महासागर भी गंदे हो जाएंगे? हाँ, एक छोटी सी की जाने वाली गलती बहुत लंबे समय तक, कई कई वर्षों तक वो गलती ही रहती है। जैसे नदी में अगर आप पानी गंदा कर रहे हैं, तो आप सिर्फ नदी में नहीं कर रहे हैं, वो समुद्र तक, फिर समुद्र से महासागर तक, वो सब कुछ पहुंच रहा है। कहते हैं ना कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा भाग पर जल है ना बच्चों? तो उस जल को सुरक्षित रखने के लिए, उस जल को स्वच्छ रखने के लिए, हमारी नदियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है हमको? हमको नदियों के पास केमिकल यूज नहीं करना है। जब हम नदियों के पास जाएं तो हमें साबुन से नहीं नहाना है, है ना, जो साबुन में भी केमिकल होते हैं और वो नदी के पानी को खराब करते हैं बच्चों। केमिकल फ्री साबुन, अब आप सोचोगे कि केमिकल फ्री साबुन कैसे ले जाएं? तो बच्चों, जो मुल्तानी मिट्टी होती है और जो खुद नदी की मिट्टी होती है, वो भी बड़ी अच्छी होती है। आप चाहें तो नदी में आप वैसे ही पानी से नहाकर आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कोई गंदगी नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना, अगर उनको आप अपनाएंगे तो आप थोड़े से और समृद्ध हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व और बेहतर हो जाएगा। तो बस इस बार त्योहारों के इस मौसम में हमें अपनी प्रकृति के किसी भी संसाधन को, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, आपको किसी ना किसी को रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। ध्यान रखिए, जल को कलश में लेकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं आप। और जब आप बांधेंगे तो खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि हम प्रकृति के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब चलिए थोड़े से संकल्प ले लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या बहाऊंगी। रक्षा का रिश्ता इंसानों के अलावा प्रकृति के साथ भी निभाऊंगा या निभाऊंगी। अपनी नदियों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। मैं प्रकृति से प्रेम करूंगी या करूंगा। अब एक आखिरी संकल्प, जहां तक संभव हो घर से थैला लेकर निकलेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। बस अब आंखें खोल लीजिए, हल्के हल्के से अपने दोनों हाथों को मलिए और अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगता है बच्चों। जब भी हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दो पल ठहर कर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही लगता है। अब बस आज से नई शुरुआत, और रक्षाबंधन के लिए भी एक नया विचार। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और बातें करने के लिए। लेकिन अभी के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय था रक्षाबंधन विशेष प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी ने। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
4: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा, तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज का विषय है वायुमंडल।
5: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ धरा।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बादल। तो धरा, आज हम बात करेंगे हमारे वायुमंडल के बारे में।
0: तो क्या बात है बादल, आज तो आप बड़े खुश भी लग रहे हो और मैं ये देख रही हूँ कि आप कुछ मंद मंद मुस्करा भी रहे हो।
1: हाँ धरा, आज मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। कुछ देर तो मैं लेटा रहा, फिर खिड़की के बाहर देखा तो बड़ा सुहाना मौसम लगा। सोचा क्यों ना घर की छत पर जाकर कुछ देर टहलाऊं। बस ये मुस्कुराहट इसी का नतीजा है।
0: बात तो सही है, मौसम सुहाना हो और हम खुले आसमान के नीचे खड़े हों, हवा के झोंके इतने मन भावन हों, तो बस मजा तो आ ही जाता है।
1: हाँ धरा, ऐसे में कई कवियों की कविताएं याद आने लगती हैं। तब मन में बस यही बात आती है कि हवा के बीच हम कितना तरोताजा महसूस करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, तब हम लंबी लंबी सांस भी लेने लगते हैं और अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं।
1: जानती हो धरा, ये सब हमारे पृथ्वी के आसपास वायुमंडल के कारण है, जो कई गैसों का मिश्रण है जो हमारी पृथ्वी को सब तरफ से घेरे हुए है।
0: हाँ, पढ़ा तो मैंने भी था कि पृथ्वी की सतह सैकड़ों किलोमीटर तक गैसों से ढकी है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। बस इसी कारण इन गैसों को पृथ्वी की सतह से अलग नहीं किया जा सकता।
1: हाँ, वायुमंडल को अगर सरल शब्दों में कहें तो ये गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, और ये हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है।
0: बिल्कुल, हमें शुद्ध हवा तो मिलती ही है, साथ ही साथ सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये हमें बचा लेता है, और सूर्य की गर्म किरणों से भी हमें बचाता है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही दिन और रात के तापमान को रोककर जीवन को संभव बनाने में मदद भी करता है।
0: क्योंकि पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है ना, वो एक परतदार संरचना है जो सूर्य की ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में रोककर तापमान में संतुलन बनाती है, जो जीवन के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा, यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी का ऐसा आवरण है जो बाह्य अंतरिक्ष और जीव मंडल के बीच एक सुरक्षात्मक कवच या सीमा बनाता है।
0: और हाँ बादल, एक बात बताऊं, ये वायुमंडल जो है ना, वो उल्का पिंडों को भी हमारी ओर आने नहीं देता, और वायुमंडल में घर्षण के साथ ही या रगड़ के साथ ही ये वायुमंडल से गुजरते हुए राख में बदल जाते हैं।
1: और वायुमंडल में नमी की मात्रा के कई प्रकार, जैसे बादल, कोहरा, ओस, वर्षा, पाला, ओलावृष्टि, बर्फबारी आदि का भी निर्माण करते हैं।
0: यानी वायुमंडल में बादल तुम नमी के कारण ही बनते हो। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वायुमंडल में कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है, तो क्या हम इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करें बादल?
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन भी इस वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में।
0: और बादल, तुम तो जानते ही होगे कि नाइट्रोजन जो होती है, ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। और इसके अलावा वायुमंडल में धूल के बहुत सारे छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं।
1: और जब हम सांस लेते हैं तब हम अपने अंदर कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं।
0: लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत तो पेड़ पौधों को ज्यादा होती है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये पेड़ पौधे सीधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस नहीं ले पाते हैं।
1: अच्छा, तब क्या करते हैं?
0: तब मिट्टी और पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और इसका स्वरूप बदल कर पौधों को दे देते हैं।
1: वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलने वाली दूसरी गैस है। हम मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं।
0: और हाँ, हरे पेड़ पौधे प्रकाश के साथ ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान रूप से बनी रहती है।
1: हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जीवित रहने के लिए इस वायुमंडल पर निर्भर रहना होता है।
0: ये वायुमंडल ही तो हमें सांस लेने के लिए वायु देता है, और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है।
1: पता है, अगर ये वायुमंडल ना हो तो क्या हो सकता है?
0: क्या होगा?
1: यदि ये वायुमंडल ना हो तो दिन के समय हमें सूर्य की गर्मी इतनी अधिक लगेगी कि हमारा शरीर जल सकता है।
0: ओह, और अगर दिन में जल सकते हैं तो रात में क्या हो सकता है?
1: रात के समय ठंड इतनी अधिक हो जाएगी कि हम उससे जम सकते हैं।
0: अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को हम प्राणियों के रहने के लायक बनाता है।
1: हाँ हाँ, और पता है जिस वायु का उपयोग सांस लेने में करते हैं असल में वो कई सारी गैसों का मिश्रण होता है।
0: हाँ, मैंने भी स्कूल में पढ़ा था ये तो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है।
1: पर ये भी है कि जब हम वृक्षों को काट देते हैं तो इससे ये संतुलन गड़बड़ाने लग जाता है।
0: बादल, तुम्हारी इस बात पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कहो तो सुनाऊं?
1: हाँ बिल्कुल सुनाओ तारा।
0: धरती डगमग डोलती नित आते भूकंप, करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।
1: वाह वाह, कितनी अच्छी बात कही है।
0: अरे आगे भी तो है। वृक्ष नहीं काटे कभी, धरती सून हो जाए, रहेंगे वृक्ष जो सभी, तभी प्रलय बच पाए।
1: वाह वाह, बिल्कुल सही बात कही है। अब एक और गैस भी है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: वो कौन सी?
1: वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
0: अच्छा।
1: हरे पेड़ पौधे इसे अपने भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं।
0: हाँ, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और एक प्राणी इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बस इससे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है।
1: हाँ, पर ये संतुलन कोयला, ईंधन और खनिज तेल आदि ज्यादा जलाने से बिगड़ जाता है। इससे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाती है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है।
0: पर बादल, ये तो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, ये वायुमंडल के संतुलन को भी प्रभावित करता है।
1: हमने अपने जीवन में वायुमंडल की संरचना के बारे में भी पढ़ा था। इसमें 5 परतें होती हैं, पर मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था।
0: कोई बात नहीं बादल, मुझे तो याद है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने बच्चों को पढ़ाते हुए इसे दोहरा लिया है, तो मुझे सब कुछ याद है।
1: अरे वाह, तो सबको बताओ।
0: तो फिर सुनो। हमारा वायुमंडल कई परतों से बना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल।
1: अरे वाह, ये तो बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। इसको थोड़ा और समझा कर बताओ। श्रोताओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
0: तो फिर सुनो। हाँ। सबसे पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है, और हम इसी में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और पृथ्वी पर होने वाले सभी मौसम इसी परत के अंदर ही होते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर दूसरा है समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत मानी जाती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करती है।
1: अब मुझे भी ये सब याद आ रहा है।
0: आया ना? तो अब सुनो तीसरी परत के बारे में। तीसरी परत है मध्यमंडल परत। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं वो इसी परत में तो जल जाते हैं।
1: ओह।
0: फिर चौथी है बाह्य वायुमंडल परत। ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है और रेडियो संचार के लिए इस परत का हम उपयोग करते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा रोककर फिर से पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है।
1: तो मतलब हम रेडियो जो सुनते हैं वो इसी वायुमंडल परत के कारण सुनते हैं?
0: जी हाँ। और वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम बहिर्मंडल परत कहते हैं। ये वायु की एक बहुत ही पतली परत होती है। यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं।
1: अरे वाह धरा, आपने कितने आसान शब्दों में पांचों वायुमंडल की परतों के बारे में समझाया है। वाह।
0: तो हो गया ना आज आपका रिवीजन? अच्छा बादल, तुमको पता है ना कि मौसम को लेकर हमारे दिलो दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते ही रहते हैं कि मौसम कैसा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी विशेष दिन के लिए हम अक्सर घर पर बात करते हैं कि फला दिन मौसम अच्छा रहे या पता नहीं उस दिन कैसा मौसम होगा।
0: हाँ, और अगर मौसम ठीक ना हो तो गर्मी और उमस यदि हो तो वो हमें चिड़चिड़ा कर देता है।
1: और जब मौसम अच्छा हो, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो बड़ा मजा आता है। लगता है कि कहीं घूमने जाया जाए, पिकनिक मनाई जाए।
0: हाँ, मौसम का अनुमान वहाँ की जलवायु पर ही निर्भर होता है। हम रोजाना जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का ही तो तापमान होता है।
1: हाँ, मुझे पता है, वायुमंडल में ताप यानी गर्मी, शीतलता यानी ठंडक, इसके परिणाम को ही तापमान कहते हैं।
0: बिल्कुल सही बादल। और एक बात और भी पता रखनी होगी कि ये तापमान सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है।
1: हाँ हाँ, गर्मी में बेहद गर्मी और शरद में शीतलता लिए हुए।
0: बिल्कुल सही। सूर्य से आने वाला तीव्र ताप भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो घटता चला जाता है। तभी तो पृथ्वी के ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं।
1: और वायुमंडलीय दबाव के कारण तापमान पर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की हर परत का तापमान अलग अलग होता है और यही तापमान पृथ्वी पर गर्मी और ठंड का कारण बनता है।
0: पर कभी कभी तापमान में कई विषमताएं भी पाई जाती हैं बादल, और इसके कई कारण होते हैं।
1: और पता है, हमारी पृथ्वी सौर ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है।
0: ओ, और ये भी तो आश्चर्य की बात है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ जोर लगाती है, पर हम इंसानों को इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और तब हमारा शरीर भी स्वतः विपरीत जोर लगाने लगता है।
1: हाँ हाँ, कभी कभी ऐसे पवन चलती है हमें उसके विपरीत दिशा में चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस तरह की हवा में हम जब भी छाता लेकर चलते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है।
0: और कभी कभी छाता छूट भी तो जाता है हाथों से।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तेरा।
0: बादल, विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की पवन चलती है और ऋतु के अनुसार से अपनी दिशा भी बदलती रहती है। जैसे मानसून की पवन, ग्रीष्म ऋतु की पवन और शीत ऋतु की पवन।
1: हाँ, और ये किसी भी दिन एक विशेष समय में चलती है। हमारे देश में उत्तरीय गर्म क्षेत्र की पवन जब चलती है तब इसे लू कहते हैं।
0: हाँ, और लू से तो बचकर रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, आज हमने बात की पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण घटक वायुमंडल की, जिसके बिना हमारा ही नहीं बल्कि किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है।
1: आपकी इस बात पर बचपन में पढ़ी हुई एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। अगर आप कहें तो सुनाओ।
0: जी बिल्कुल सुनाइए।
1: जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को बहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण पर हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। मैं थी आपके साथ धरा यानी पूर्वा खले।
1: मैं था आपके साथ बादल यानी दीपक निमा।
0: तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति।
1: नमस्कार।
2: ९.८ मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार, जिसका विषय था वायुमंडल।
3: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

16वीं शताब्दी की शुरुआत में होर्मुज या जारून का द्वीप शहर एक विरोधाभास था। ये एक खारा बंजर चट्टान पर स्थित नगर था जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताजा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यहां नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजीतियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण वे नौकरशाही में तेजी से ऊपर बढ़े और लगभग 1475 तक वजीर के पद पर आसीन हुए, एक ऐसा पद जिस पर उन्होंने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। होर्मुज का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अस्थिर था। 1400 और 1506 के बीच 10 शाहों में से 5 को पदच्युत किया गया और 4 की हत्या कर दी गई। हत्याओं और असुरक्षा के इस माहौल में ख्वाजा अता ही एकमात्र स्थिर शक्ति थे। उन्होंने शाहों के ऊपर रहकर राज्य का संचालन किया, जिसकी आधी आय भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अता की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं, बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तर जीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और ना ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फार्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारतीय सशस्त्र सेनाएं। इस विषय पर जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले।
2: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओं, ये दुनिया आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की कोई तय सीमाएं नहीं होती और विजय के लिए केवल शक्तिशाली राष्ट्र का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि विजय के लिए शक्ति के साथ ही हमेशा ही मुस्तैद और तत्पर राष्ट्र का होना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, अपनी सदियों की परंपराओं से प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार, हिमालय से लेकर थार मरुस्थल तक भारतीय सशस्त्र सेना का हर कदम उभरते हुए भारत की नियति को आज आकार देता हुआ दिखाई देता है। सम्मान में निहित और नवाचारों से प्रेरित एक सशक्त और सुदृढ़ भारत के लिए आज हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों से भारतीय सेना नए कलेवर में अपना रूप ले रही है, एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में, जहां ज्ञान, डेटा, ड्रोन्स और नई तकनीकें सैनिकों के साथ समान गति से चलती हैं। कभी आयात पर निर्भर भारतीय सेना के हथियार अब स्वदेशी हैं और हमारा देश इनका निर्माता ही नहीं, निर्यातक है। थार से लेकर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर अंडमान तक हर प्रणाली पर स्वदेशी छाप है। ये कहना ना होगा कि इस नए स्वरूप में पहुंचने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। देश की आजादी के बाद लगभग 8 दशकों में हमारी भारतीय सेना ने जिन महत्वपूर्ण पायदानों को पार किया है, इसका जिक्र हम इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में करते हुए चले आ रहे हैं और इसका हमने पूरा प्रयास भी किया है, और इस प्रयास का श्रेय हमारे कार्यक्रम विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर को है, जो हर कड़ी में बड़ी ही शिद्दत और गहन अध्ययन के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं से संबंधित जानकारी हमारे लिए संजोते रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय सेना को जानते समझते अब इस कार्यक्रम की हम अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम पुनरावलोकन करें, फिर से दृष्टि डालें हमारी सेनाओं की भूमिका पर, जिनके कारण आज हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें लगभग 20 वर्षों का सेना में अपनी सेवाओं का अनुभव है। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
4: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं,
3: जी,
4: आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: दिस ईयर वी आर 79th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस,
3: जी,
4: एंड आई मस्ट से दैट द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट फैक्टर,
3: बिल्कुल,
4: इन दिस वर्ल्ड।
3: जी, परिवर्तन हमेशा का नियम रहा है संसार का सर।
4: एग्जैक्टली, उसी हिसाब से देखें, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैज टेकन प्लेस, डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, अपग्रेडेशन हैज टेकन प्लेस इन अवर कंट्री, और उसी के साथ साथ जो है हमारी जो सेनाएं हैं वो भी निरंतर जो है अपग्रेडेड हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं।
3: बिल्कुल,
4: हमने सीरीज जब शुरू करी थी तो हमने 47 से शुरू करी थी
3: जी।
4: और हमने देखा था कि 47 से लेके अभी तक हमारी सेना निरंतर जो है वॉर्स में इन्वॉल्व रही हैं.
3: बिल्कुल.
4: 47 में, 65 में, 71 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा जी. और चाइना के साथ हमने 62 में युद्ध लड़ा है. इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं. कारगिल में रहा, सियाचिन में रहा, इंडियन आर्म फोर्सेस ने IPKF में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत श्रीलंका में जो है इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट किया था.
3: बिल्कुल.
4: अभी भी अगर हम देखते हैं जो आर्म फोर्सेस हैं वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है, टेररिज्म रोल में, J&K में जो है, यहाँ पे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है, उससे लड़ रही है. नॉर्थ ईस्ट में भी जो है काफी जगह पे इंसर्जेंसी से लड़ रही है. इसके अलावा भी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को तो देखते ही हैं
3: जी, बिल्कुल.
4: एंड एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए भी जो है आप देखते हैं कि जो सेना है हमेशा जो है तत्पर रहती है, हमेशा जो है उनका प्रयास रहता है, हर जगह जो है सपोर्ट करती
3: जी.
4: तो ओवरऑल इफ यू सी द आर्म फोर्सेस हैज बीन इन्वॉल्वड थ्रू आउट सिंस इंडिपेंडेंस, गार्डिंग अवर नेशंस इंटरेस्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड सपोर्टिंग
3: जी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है.
4: तो ये सब हमने जो है हमारी जो पूरी सीरीज में हमने जो है देखा था
3: जी.
4: तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो है आर्म फोर्सेस भी कॉन्स्टेंटली जो है अपग्रेडेड हुई
3: जी. देश के विकास के साथ सेना का भी विकास
4: जी, सेना का भी विकास हुआ जी. और जो ये चेंजेस हैं, अपग्रेडेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ये मतलब हर तरह से हर जगह पाए जाते हैं. जैसे कि पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं
3: जी,
4: ट्रेनिंग में चेंजेस है, जो हमारे पास वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं
3: जी,

0: हुआ, उसके बाद वो संधि साइन हुई थी एंड देन वी एंटर्ड, ठीक है. दो इट वाज अ रिएक्टिव एक्शन बिकॉज उस समय जो पॉलिसीज थी 47 में, क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उस समय हम आजाद हुए थे, तो जस्ट फॉलोइंग द ब्रिटिश आर्मी, उसी तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, उसी तरह से हमारी पॉलिसीज थी, उसी तरह से हमारे बैटल फॉर्मेशन थे. ब्रिटिशर्स के लिए तो हम तो इट वॉज मोर ऑफ ए पुलिसिंग, ठीक है, डिफेंसिव रोल वाला. तो उस समय जो हमारा रिस्पॉन्स था एंड जो पॉलिसी के हिसाब से डिफेंसिव होता था,
1: केवल प्रतिक्रिया स्वरूप था.
0: प्रतिक्रिया स्वरूप. अभी अगर मैं सीधे जंप करूं 2025
1: में,
0: जब हम आप सिंदूर देखते हैं, आप बंदर देखते हैं, तो यू फाइंड एब्सोल्युटली
1: पूरी मतलब तरह से विपरीत हो गई है वो हमारी जो नीतियां.
0: वी आर एक्चुअली प्रोएक्टिव.
1: जी बिल्कुल सर.
0: अब हम मतलब वो है कि आप कुछ करोगे तो हम पूरी हिम्मत रखते हैं और हम करके दिखाते हैं.
1: जी
0: तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा मतलब आई विल से अपग्रेडेशन है. एंड ये एक माइंडसेट चेंज होता है. और जब ये माइंडसेट ऐसा चेंज होता है तो इसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजें
1: बदलती हैं.
0: बदलती हैं
1: जी, बिल्कुल सर.
0: जो ये मॉडर्नाइजेशन है या अपग्रेडेशन है वो किस कारण से आता है? पहले तो जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनसे हमें सबक मिले.
1: जी बिल्कुल सही.
0: हर लड़ाई ने हमें कुछ ना कुछ
1: सिखाया है.
0: हर युद्ध में हमें कुछ सीखा है. हर कॉन्फ्लिक्ट में, सियाचिन हो, कारगिल हो, कहीं पे भी
1: जी,
0: IPKF हो, हर जगह हमने कुछ सीखा है. तो वो जो हमें सिखलाई मिली उसने हमको प्रेरित किया कि हम ये चेंजेस लेकर आए.
1: जी.
0: चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो, चाहे वो इक्विपमेंट में चेंजेस हो, चाहे हमारे बैटल फॉर्मेशंस में हो, हमारी डॉक्ट्रिन्स में हो, ये ट्रेनिंग में है.
1: जी.
0: तो ये चेंजेस उसके कारण. दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है द चेंजिंग एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, रीजनल इंटरनेशनल सिनेरियो.
1: आसपास क्या चल रहा है,
0: आसपास क्या चल रहा है,
1: जी,
0: आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस
1: क्या है,
0: उनका जो इम्पैक्ट होता है. देन अगर हम देखें हमारी जो सीमाएं हैं उसपे हमें एक साथ दोनों सीमाओं पे यानी कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ लड़ने की हमारी काबिलियत कैपेबिलिटी होनी चाहिए.
1: बिल्कुल सर.
0: तो वो एक और फैक्टर है. तो
1: सर ये हमारे पारंपरिक दुश्मन है, समझ लीजिए, इस तरह से कहा जा सकता है.
0: कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है. तो ये एक और फैक्टर होता है विच इज द की ड्राइविंग फैक्टर जो कि चेंजेस में अपग्रेडेशन में.
1: जी हमें हमारे सेना में हमेशा परिवर्तन बनाए रखना इनके लिए जरूरी है.
0: इनके लिए जरूरी, करेक्ट है ना. देन गार्डिंग अवर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन. अगर देखें तो हमारा 90% जो ट्रेड होता है थ्रू सी लेन,
1: समुद्र के द्वारा,
0: समुद्र के द्वारा है. तो उसमें हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफ गार्ड करने का. देन लाइक द एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सर्विलेंस एंड एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सो दैट हमारे ऊपर जो है कहीं मतलब स्पेस कुछ ना हो. तो ये सब जो है की ड्राइवर्स होते हैं जिनके तहत जो है हम नई पॉलिसीज आती हैं, नए ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, नए डॉक्ट्रिन्स बनते हैं नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होता है. तो अगर हम अपने देश की बात करें, हम सब जानते हैं कि जो हमारी प्रगति है इस समय उसमें निसंदेह अगले 25 साल में 20 साल में जो है हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो जाएंगे. उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारी आर्म फोर्सेस भी
1: उसी के हिसाब से तैयार हों. जी बिल्कुल.
0: क्योंकि अगर एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, ठीक है, पीसफुल एग्जिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए उसके पास फोर्सेस हो.
1: जी बिल्कुल.
0: और वो फोर्सेस की कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से हो. ये जो है एक बहुत बड़ा जरूरी फैक्टर है. ठीक है
1: जी.
0: टुडे अवर फोर्सेस, अगर हम अपने फोर्सेस की आज बात करें तो वर्ल्ड में इसको ऑलमोस्ट फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कहा जाता है. रिपोर्ट्स जो होती हैं उससे बेस पे कि व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज अवर इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, सबको
1: मिला जुला कर
0: जाता है.
1: जी जी.
0: एंड आपको पता ही है कि हमारी भारतीय सेना में ये वॉलंटियर फोर्स है.
1: जी स्वैच्छिक संगठन है.
0: बिल्कुल. एंड इट इज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वॉलंटियर फोर्स है.
1: बिल्कुल सर.
0: इसके अलावा जो है अगर आप देखें हमारी फौज को, वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ UN मिशन. ये सब जो चीजें हैं इसको देखते हुए ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसी तरह से जो है हमारा प्रोग्रेस भी रहा है. ये है भी इसीलिए क्योंकि हमने जो है अपने आप को मॉडर्नाइज किया है. और ये जो मॉडर्नाइजेशन है, एडवांसमेंट है
1: जी,
0: अगर आप देखेंगे पिछले 2 दशकों में
1: बहुत
0: तेजी से हुआ है.
1: जी बिल्कुल सर.
0: और उसका कारण भी बहुत ही ज्यादा विदित है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी 2009 2007

0: 2007 में drones used to be a very big thing. मतलब जी, जो है, आज drones has become a very common thing.
1: जी, बच्चा जानता है सर.
0: जी, उसके बारे में जो है, तो डिफेंस फोर्सेस ने जो ये adoption किया है टेक्नोलॉजी का, इससे देखिए कम्बैट एफिशिएंसी बढ़ी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. एक और जो बात है
1: जी,
0: जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी जो जॉइंटमैनशिप है, उनकी जो काबिलियत है इकट्ठे काम करने की
1: जी,
0: उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है. क्योंकि इससे क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली द कम्युनिकेशन
1: जी,
0: ठीक है, द ट्रांसपेरेंसी. आज क्या है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी से भी बात करने के लिए रहते हैं, द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है हमें सबको मिलता है, एक साथ मिलता है,
1: सूचनाएं तुरंत मिल जाती
0: है, बिल्कुल, और समय पे जो है बिल्कुल जो रियल टाइम होता है वो मिलता है.
1: हमने इसे सर ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे से देखा.
0: एग्जैक्टली,
1: जो चल रहा था हमने उसको लाइव देखा कि क्या हो रहा है,
0: क्या हो रहा है,
1: मतलब हर व्यक्ति ने, देश के हर नागरिक ने इसे देखा.
0: ये ऑफ कारगिल वॉर के बाद शुरू हुआ है, जो है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. नॉट ओनली आई विल से कि अमंग द फोर्सेस, इवन जो और भी एजेंसीज हैं जो डिसाइसिव एजेंसीज हैं, वो भी जो है जुड़ती हैं, उनसे भी मदद मिलती है. और अगर हम जिक्र करें जो हमारी एडवांसमेंट है, उसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, नेचुरल है उनका तो सबसे बड़ा योगदान रहता ही
1: है सर,
0: और उनके कारण जो है बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने 2019-20 में जो है आप देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अपॉइंटमेंट,
1: हाँ जी, ये नया पद बनाया गया
0: था, जिसकी डिमांड काफी टाइम से हो रही है, ऑलमोस्ट कारगिल के बाद से भी चल रहा था. He is the head of the Department of Military Affairs. And जो CDS होते हैं, he is the principal military advisor to the defense minister.
1: सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इनकी काबिलियत क्या होती है, इनको किस तरह से चयन किया जाता है सर?
0: ठीक है, इनके चयन प्रक्रिया ये रहती है कि ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के रैंक के होते हैं
1: जी,
0: एंड पॉलिसीज के हिसाब से होता है कि उनकी कितनी एज होगी, क्या होगा, और तीनों सेनाओं में से कोई भी हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से कोई भी जो है जो सीनियर होते हैं वो इसमें मतलब जो है बन सकते हैं. अब उनका अगर रोल देखें तो ही इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर ऑल द थ्री सर्विसेज, स्पेसिफिकली वो एक सर्विस के नहीं होते, वो तीनों के लिए देखते हैं, तो उसके कारण जो है जॉइंटमैनशिप जो है बढ़ता है. देन ही इज एबल टू, मतलब दिस इज हिज प्राइम जॉब रादर, कि जो एक्विजिशन है मतलब डिफेंस के लिए
1: जी,
0: उसको प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है उनका बहुत बड़ा काम रहता है
1: जी. यानी किस तरह से बांटा जाएगा सोर्सेस को तीनों सेनाओं में.
0: एग्जैक्टली, ही कैन हैव ए होलिस्टिक व्यू फोर्सेस कि कैसे किसको क्या जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन एडवाइज द गवर्नमेंट, ही कैन एडवाइज सब जो है डिफेंस मिनिस्टर.
1: यानी इस तरह से वो सरकार और सेना के बीच की कड़ी है.
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल सही बोला आपने, जो है वो एक कड़ी है जो कि मिसिंग थी.
1: बिल्कुल सर.
0: अभी एक और पॉलिसी आने हुए है जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड.
1: अच्छा,
0: अभी क्या है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑल्दो जॉइंटमैनशिप में भी काम करते हैं
1: जी, जी.
0: लेकिन उनका अपना अपना एक रोल होता है, और में भी अपना एक रोल होता है
1: जी,
0: वो अपने हिसाब से होता है. अभी एक नया कंसेप्ट ये आने वाला है कि थिएटर कमांड होगा.
1: अच्छा,
0: थिएटर कमांड का मतलब होगा कि जैसे एक एरिया है तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, आर्मी, एयरफोर्स जैसे भी है,
1: जैसा भी
0: कॉम्बिनेशन है, वो एक ही कमांडर के अंडर में होंगे.
1: अच्छा,
0: नेचुरल है कि उसमें जो है रिएक्टिव अच्छा रहेगा, रिएक्टिव टाइम कम होगा ठीक है
1: जी,
0: तो उसके लिए जो है इवन कॉमन लॉजिस्टिक्स नोट्स रहेंगे ठीक है, और मतलब यू कैन से कि जो थ्रेट है उसको डील करने की हमारी क्षमता जो है बहुत
1: बढ़ जाएगी जी, बिल्कुल सर.
0: तो वेरी सून वील फाइंड दिस कमिंग अप ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया फंक्शनिंग के हिसाब से
1: जी बनाए
0: जाएंगे. तो अकॉर्डिंगली जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो ज्वाइंट ट्रेनिंग्स है, सेमिनार्स, एक्सरसाइज है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है. टेक्निकल इंटीग्रेशन जो है वो काफी हाई है. अभी जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि तीनों सर्विसेज को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है,
1: जोड़ता है.
0: आप भी जानती हैं एक और चीज है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो एक कंसेप्ट है सेल्फ रिलायंस, उसने डिफेंस के ऊपर जो है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है. आपने अपने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम एक
1: निर्यातक की भूमिका में आ गए हैं सर।
0: बिल्कुल
1: कहा तो हम हथियार आयात करते थे सेना के लिए, आज हम यूज तो कर ही रहे उनका निर्यात भी कर रहे हैं।
0: तो इम्पोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स से जो है हम बिकम सेल्फ रिलायंस
1: जी,
0: इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है हमारा बहुत बड़ा है
1: जी जी।
0: तो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है इसके तहत जो है हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं
1: जी
0: उसमें जो है आत्मनिर्भरता का जो है फैक्टर जो है इमर्ज हुआ है। एंड जो हमारा नेशन है नाउ इट इज इमर्जिंग एज ए हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट
1: जी,
0: जहाँ हम बाहर से जो है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि मतलब इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
1: जी,
0: उसको अलाउ कर रहे हैं ठीक है। देन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है प्राइवेट कंपनीज काफी आ गई हैं। एक और चीज है वो है जैसे डीआरडीओ जो हमारा है।
1: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि अंतरिक्ष में अनुसंधान जो है वो एक एक नया आयाम है। आकाश धरती और जल तो था ही, अब एक अंतरिक्ष भी एक नया आयाम है जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
0: स्पेस
1: जी,
0: स्पेस कम
1: हाँ जी, स्पेस के लिए
0: जिसके ऊपर आईएसआरओ काम
1: जी इसरो काम कर रहे। तो सर इसका क्या उसमें भूमिका है हमारे सेना के लिए?
0: इसकी जो भूमिका है मतलब इन द सेंस यू सी द सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी,
0: एंड नाउ वी हैव गॉट द डिफेंस सैटेलाइट्स
1: जी
0: ठीक है, जो कि हमारे को डिफेंस पे मदद मिलती है
1: जी,
0: हमारे ऑपरेशन प्लानिंग्स पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मदद मिलती है। एंड स्पेस इज गोइंग टू बी द न्यू एरिया
1: जी वही
0: इन फ्यूचर
1: जी, जी
0: फ्यूचर वॉर का एरिया है एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी डोमिनेट दैट ओके
1: जी।
0: उसी तरह इसमें भी काफी जो है प्रगति हुई है और चल रही है ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे डीआरडीओ से
1: हाँ जी जी,
0: तो इसमें जो है काफी गवर्नमेंट ने एनकरेजमेंट दिया है, एनहांस फैसिलिटीज बढ़ाई है एंड इवन दे प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र में काफी जो है प्रमोशन है
1: जी।
0: इवन अगर आप देखेंगे कि इनोवेशन जो होती है आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा
1: प्रोत्साहन
0: दिया जाता
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस बोलते हैं IDEX बोलते हैं जिसमें कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि डिफेंस से कनेक्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
1: जी
0: और उनके लिए जितने नई टेक्नोलॉजीज हैं प्रोडक्शन हैं उनको बढ़ावा देते हैं और उसके कारण जो है काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है
1: जी।
0: जाहिर है कि इन सब से जो है हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है
1: बिल्कुल सर,
0: हमारे को मॉडर्नाइजेशन में मदद मिल रही है। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसके कारण अगर आप देखें तो आज काफी जो है इक्विपमेंट जो हम बाहर से लगवाते थे जैसे अभी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट हुए हैं, कॉम्बैट हैप्टर्स हैं हमारे पास, मिसाइल सिस्टम्स तो खैर हमारा मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे है। रिसेंटली वी हैव टेस्टेड द अग्नि 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को, ICBM को हमने टेस्ट किया है एंड नाउ वी आर गनिंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के 5000 किलोमीटर रेंज में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच इज न्यूक्लियर केपेबल ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मारक क्षमता जो है
1: बहुत बढ़
0: जाएगी। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जो है इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट जिसका कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें मिसाइल सिस्टम्स को देखेंगे तो वी हैव डन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। सिमिलरली लाइक इंडिजिनियसली बिल्ड सबमरीन्स हैं जो है इस समय, देन आवर केपेबिलिटीज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर में काफी हद तक बढ़ गई है। ड्रोन्स के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, अभी तो इस टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है, हम देख भी रहे हैं यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: तो इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा अभी बढ़ा है
1: जी,
0: ये टेक्नोलॉजी को इतना जो है प्रमोट किया गया है कि इवन एट द बटालियन लेवल वी आर हैविंग
1: जी। ऑप सिंदूर में तो हमने देखा सर इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ,
0: भरपूर इस्तेमाल हुआ
1: जी।
0: एंड मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बहुत अच्छी आई है जो मुझे लगती है कि जो हमारा स्मॉल आर्म्स एंड इक्विपमेंट है सोल्जर्स का
1: हाँ जी,
0: उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। अभी लाइक हम AK-203 राइफल्स हमारे यहाँ बननी शुरू हुई एंड बाकी भी जो है हमने जो इक्विपमेंट में जो बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है, जैसे जो रिमोट एरियाज हैं जैसे सियाचिन हो गया, कारगिल हो गया
1: जी,
0: वहाँ के लिए जैसे स्पेशल इक्विपमेंट है वो तैयार करना मौसम के अनुकूल
1: जी,
0: वहाँ पे रहने के लिए जो है शेल्टर्स जो है
1: जी,
0: वो हमने खुद
1: आधुनिक बनाना
0: जी, उसको किया है। और सिमिलरली लाइक कम्युनिकेशन आस्पेक्ट इट हैज चेंज्ड अ लॉट,
1: बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आए, आमूलचूल परिवर्तन है सर, संचार के कारण, मोबाइल के कारण।
0: आप कह सकते हैं मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पे रहा हूँ, मतलब जहाँ 6-6 महीने मेरी घर से कभी बात नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि वो लोग अपने घर से रोज बात कर लेते हैं।
1: क्या बात है,
0: तो इट्स अ मेजर चेंज। एंड इससे क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा बदलाव ये लाया है, नाउ इट हैज गॉट द वीडियो फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो कमांड एंड कंट्रोल एस्पेक्ट हैज गॉन अप वेरी हाई।
1: सूचना तेजी से मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही भी उतनी तेजी से होती है। एग्जैक्टली,
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है तो रियल टाइम डिसीजंस जो है वो काफी जल्दी लिए जा सकते हैं, और उसी तरह से जो है हमारा एक्शन टाइम जो है हमारा काफी अच्छा है। We had done a major improvement, you see, in the transport also. जो पुरानी गाड़ियों के हिसाब से अभी जो है व्हीकल्स जो है FPV Casper जैसे व्हीकल्स हैं, जो कि माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स हैं एंड ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं अभी हमारे पास, तो there's a lot of improvement in this.
1: एक कार्य सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, रेल और सड़क, इसके निर्माण में भी सेना का, विशेष रूप से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर।
0: बल्कि रादर सेना का डेवलपमेंट के लिए इनका होना बहुत बड़ा योगदान हुआ है।
1: बिल्कुल सर।
0: और उसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं कि हम जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करेंगे, जैसे सेला में टनल बनी है, सेला पास,
1: सेला पास।
0: तो जिसे तवांग जो है अरुणाचल वाला जो है वो एरिया है वेस्ट कमांड का, वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल हो गया। अभी जो जिला में जो है टनल बन रही है, देन उसके बाद जो है रोहतांग पास के ऊपर जो है टनल, जिसने की मतलब बहुत ही मेजर चेंज लाया है। नहीं तो लदाख यूज टू गेट कट ऑफ फॉर 6 months, ठीक है, ऐसी तवांग जो है मुश्किल हो जाता था एक वक्त में। एंड जैसे जो ब्रिजेस आए हैं, जो रोड डेवलपमेंट हुआ है हमारा, इवन ट्रेन्स जो है अभी श्रीनगर तक जा रही हैं, उसके आगे तक जा रही हैं, तो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट व्हिच हैड टेकन प्लेस।
1: तो सर युद्ध और सीमा की सुरक्षा के अलावा जो सेना ये कार्य कर रही है उसका योगदान तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सड़कों के रूप में या पुलों के रूप में या रेलवे के रूप में, खुद स्वयं सेना का योगदान है।
0: सेना को इससे फायदा हुआ है कि बनने से जो है हमारी जो मोबिलिटी बढ़ गई है
1: ना,
0: तो उससे हमें फायदा हुआ है। जो सेना का एक अंग है, दैट इज मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द दैट कम्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज BRO, ग्रेफ एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, यस, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में। जी, जो है ऑफकोर्स उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो फौज के होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में, पुल्स बनाने में, दैट इज राइट। इन चीजों को अगर आप देखेंगे जो है, लाइक अभी बॉर्डर एरियाज पे यू फाइंड की जो एयरफील्ड्स हैं वो डेवलप हुए हैं, एडवांस एयर बेसिस हैं जो बॉर्डर एरियाज में है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूव है, रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा इम्प्रूव है। तो आई विल से कि जब हम 47 से देखा है और 2025 पे जब हम आते हैं तो हमें सिनेरियो पूरी तरह से चेंज मिलता है। और ये सिर्फ आर्मी में नहीं है, जब हम नेवी की कभी जिक्र करते हैं या एयरफोर्स का भी जिक्र करते हैं तो उनका भी एडवांसमेंट उतना ही उस लेवल से बड़ा है। आज एयर डिफेंस, सर्विलेंस सिस्टम, आवर डोमिनेशन इन द सी, ठीक है, Our capabilities have gone up to very high level.
1: बहुत उच्च स्तर की है।
0: उच्च स्तर की है। हमारे जो इतने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो इन सब के कारण जो है कैपेबिलिटीज जो है हमारी जो डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है उसमें काफी इजाफा हुआ है।
1: कुल मिलाकर हमारी सेना जो है आज बेहद ही सशक्त स्थिति में है।
0: बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा।
1: जी सर।
0: जो है एडवांसमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आज भी
1: जी
0: सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सोल्जर।
1: जी बिल्कुल सर।
0: सदियों से चाहे हम हमारे पास में मतलब इवन प्रीहिस्टोरिक में भी जाएंगे, जब से हम देखते आ रहे हैं, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। एंड आज भी जो ये इंडियन सोल्जर है, हमारे जो सोल्जर हैं जो मतलब सतत खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल,
0: सबसे महत्व रखते हैं, ये उनकी स्पिरिट है, देश प्रेम है जो है, मतलब दे आर द ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण जो है देश की जो है सुरक्षा।
1: जी सर, तकनीक और हथियार अपनी जगह है लेकिन सैनिक का जब तक साहस नहीं होगा तब तक तकनीक और हथियार भी कुछ नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल, और उनका जो जज्बा है बलिदान का,
1: बिल्कुल,
0: जो है
1: मातृभूमि के प्रति समर्पण,
0: मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण है वो मतलब ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माई कंट्री, ठीक है, देन कम्स एनीथिंग एल्स। वो जो जज्बा है जब तक वो है तब तक कोई हमें हाथ नहीं लगा
1: स्वयं से पहले सेवा।
0: बिल्कुल, स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। आज जो भी कुछ हम हैं, I must say it is because of the bravest of the braves, all those people who had contributed so much to for the country, people like Major Somnath Sharma, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhu, Captain Mahendra Mula, and Captain Vikram Batra, bravest of the braves, and और भी बहुत जितने का हमने इन सब का जिक्र भी किया था अपनी पूरी सीरीज में।
1: हम पिछली कड़ियों में इन सबको हमने कभी भी भुलाया नहीं है और हर एक को याद करने का अपने इस कार्यक्रम में प्रयास किया
0: जी। और इसके अलावा भी जो हर वो जवान जिसने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है उनके लिए तो उनके सामने हम नतमस्तक हैं।
1: बिल्कुल सर, ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी ये जो सोल्जर्स हैं इन्हीं के कारण जो है हमारा देश हमेशा जो है स्ट्रांग रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
1: बस सर, यही भावना हमारी भी है और इसी भावना से प्रेरित एक गीत है, कुछ पंक्तियां हैं सर, वो मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगी कार्यक्रम में अंत में। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, इस आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। तो श्रोताओं, हम भी अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को सर्वप्रथम रखकर अपना सर्वस्व बलिदान दिया। और हम आभारी हैं हमारी सेना और हमारे सैनिकों को जो हमें हमारी स्वतंत्रता का हमेशा आभास कराते रहते हैं। आज की कड़ी और इस कार्यक्रम को भी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने भारतीय सेना के बारे में हम जैसे आम नागरिकों को इतनी अच्छे से सेना के बारे में समझाया और बताया कि हमारे जीवन में सेना का क्या महत्व है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम, एंड इनफैक्ट आई मस्ट से थैंक्स टू यू दैट एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर द व्यूज। थैंक यू वेरी मच एंड सैल्यूटिंग ऑल द सोल्जर्स। जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन रहा अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार श्रोताओं,
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले। विषय था भारतीय सशस्त्र सेनाएं। और अब समय है कार्यक्रम देश के संस्थान का। इस कार्यक्रम में आज हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान। और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, जमीन से रक्षा की गति की कहानी।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले एपिसोड्स में दादू और रुचि यात्रा पर गए थे, जहां रुचि ने विशाल युद्ध पोतों, अत्याधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक और समुद्री सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज उनकी यात्रा समुद्र से आगे बढ़कर वापस धरती पर आ पहुंची है। आज रुचि जानेगी उस संस्था की कहानी जिसने भारत के विकास, रक्षा और अधोसंरचना निर्माण को नई गति दी। तो चलिए दादू पोती के संवादों के साथ सुनते हैं BEML की प्रेरक गाथा।
1: दादाजी, गोवा की यात्रा बड़ी यादगार थी। बहुत थक गई हूँ, अब घर में आकर बड़ा सुकून लगा है। दादू, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न नए तैयार कर दिए हैं।
2: अच्छा बेटा, देखो प्रश्न तो तुम्हारे मन में बहुत तैयार होते रहते हैं। मुझे जरा पहले एक गिलास पानी पी लेने दो।
1: हाँ दादू, ये लीजिए आपका पानी।
2: बेटा, यही तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ होता है। इन यात्राओं से जितना सीखो, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है।
1: दादू, GSL में हमने देखा कि जहाज बनाना कितना कठिन काम है। हजारों पुर्जे, सैकड़ों इंजीनियर और वर्षों की मेहनत लगती है।
2: बिल्कुल सही, कोई भी जहाज बनाना आसान काम नहीं है।
1: लेकिन दादू, समुद्र के अलावा जमीन पर भी तो देश के दूसरे संस्थानों के सामने ऐसी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां होती होंगी।
2: हाँ हाँ बेटा, पहाड़ों में सड़कें बनानी हो, खदानों से खनिज निकालना हो, सेना के लिए भारी वाहन तैयार करने हो या मेट्रो रेल चलानी हो, इन सभी कार्यों के लिए खास संसाधनों की जरूरत होती है।
1: और वो काम करती है BEML। सही कहा ना आपकी रुचि ने।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML का नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है रुचि बेटा। रुचि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अब तुम मुझसे इसी विषय पर जानना चाहती हो?
1: दादू, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेरे मन में आज BEML के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो अब आप मुझे इसी बारे में विस्तार से बताएंगे।
2: तो सुनो बेटा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया था, क्योंकि उस समय इसका मुख्य कार्य भारी अर्थ मूविंग मशीनें बनाना था। लेकिन समय के साथ संस्था का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ गया कि आज ये आधिकारिक रूप से BEML लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फिर भी BEML का ऐतिहासिक विस्तार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ही माना जाता है।
1: दादू, इसका इतिहास कितना पुराना है और इस संस्थान की स्थापना कब हुई, ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML की स्थापना 11 मई 1964 को हुई थी। उस समय भारत एक युवा राष्ट्र था और अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
1: दादू, तब देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी?
2: उस वक्त देश को भारी मशीनों की जरूरत थी बेटा। खदानें बढ़ रही थीं, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, उद्योग विकसित हो रहे थे और अधोसंरचना निर्माण को गति मिल रही थी। लेकिन अधिकांश भारी मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी।
1: यानी तब हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं था?
2: पूरी तरह तो नहीं, इसलिए सरकार ने ऐसी संस्था की कल्पना की जो देश में ही भारी निर्माण और खनन उपकरण बना सके।
1: अच्छा, तभी इस सोच के साथ ही BEML की शुरुआत हुई होगी।
2: बिल्कुल।
1: दादू, शुरुआती दिनों में BEML क्या बनाती थी?
2: सबसे पहले खनन और निर्माण क्षेत्र के लिए भारी मशीनें बनाई जाने लगी।
1: किस तरह की भारी मशीनें दादू, और ये भारी मशीनें काम क्या करती थी?
2: देखो बेटा, बुलडोजर, डंप ट्रक, एक्सकेवेटर, ग्रेडर और अनेक प्रकार के अर्थ मूविंग उपकरण।
1: दादू, ये भला कैसा नाम हुआ, अर्थ मूविंग उपकरण?
2: अरे बुद्धू, मतलब ऐसी मशीनें जो मिट्टी, पत्थर, भारी सामग्री को हटाने, खोदने या स्थानांतरित करने का काम करती हैं।
1: तभी तो इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया होगा।
2: बिल्कुल सही समझा
1: दादू। खदानों में इन मशीनों की क्या भूमिका होती है?
2: देखो बेटा, कल्पना करो, किसी कोयला खदान से लाखों टन मिट्टी हटानी है, क्या ये काम मजदूरों के हाथों से संभव होगा?
1: अरे ना बाबा, उसमें तो जाने कितने साल लग जाएंगे दादाजी।
2: बस यही कारण है कि इसके लिए विशाल डंप ट्रक और एक्सकेवेटर काम में आते हैं। ये मशीनें कुछ ही समय में वो काम कर सकती हैं जिसके लिए सैकड़ों लोगों को कई दिन लग जाएं।
1: मतलब दादू, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक उद्योगों की रीढ़ यही मशीनें हैं।
2: हाँ बेटा, यदि खदानें ना चलें तो कोयला, लौह अयस्क और अनेक खनिज तत्व और पदार्थ देश के उद्योगों तक नहीं पहुँच पाएंगे।
1: और सड़क निर्माण में BEML का क्या योगदान होता है?
2: वहाँ भी इनका महत्व कम नहीं है बेटा। पहाड़ काटकर सड़क बनानी हो, सुरंग निर्माण करना हो या बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हो, हर जगह भारी मशीनों की जरूरत तो होती है
1: दादू। तो जब भी हम किसी नए राजमार्ग पर चलते हैं, तब उसके पीछे भी ऐसी ही संस्थाओं का योगदान होता है।
2: बिल्कुल, विकास केवल दिखाई देने वाली सड़क का नाम नहीं है बेटा, उसके पीछे वर्षों की योजना, तकनीक और मशीनों की मेहनत होती है।
1: अच्छा दादू, आप ये बताइए ना कि आज BEML का नाम किस क्षेत्र में ज्यादा सुनाई देता है?
2: रक्षा के क्षेत्र में बेटा, क्योंकि समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। देश को रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी समाधान चाहिए थे।
1: दादू, आपने बताया था कि शुरुआत में BEML खनन और निर्माण कार्यों के लिए मशीनें बनाती थी, फिर इसका रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव कैसे हुआ?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा, वैसे वैसे सेना के लिए खास तरह के वाहनों और उपकरणों की जरूरत महसूस हुई। तब BEML ने भी रक्षा क्षेत्र में कदम रखा।
1: विशेष वाहन और उपकरण किस तरह के दादू?
2: देखो बेटा, सेना को ऐसे वाहन चाहिए होते हैं जो केवल सामान्य सड़कों पर ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान की तपती रेत, हिमालय की बर्फीली चोटियों, दलदली इलाकों और घने जंगलों में भी आसानी से चल सके। कई बार उन्हें भारी तोपें, टैंक, मिसाइलें और अन्य सैनिक सामग्री भी ढोनी पड़ती है।
1: यानी सेना के वाहन साधारण ट्रकों जैसे नहीं होते दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, उन्हें बेहद मजबूत, भरोसेमंद और कठिन परिस्थितियों में काम करने योग्य बनाना पड़ता है। BEML ने ऐसे अनेक विशेष सैन्य वाहनों और सहायक उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: दादू, ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा।
2: निश्चित रूप से, एक सामान्य वाहन और सैन्य वाहन में बहुत अंतर होता है बेटा।
1: दादू, सेना के वाहनों को सामान्य वाहनों से इतना अलग क्यों बनाया जाता है?
2: क्योंकि बेटी, सेना का काम केवल शहरों की सड़कों पर चलना नहीं होता। कभी उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों पर जाना पड़ता है, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी घने जंगलों के बीच।
1: मतलब जहाँ सामान्य वाहन शायद काम ही ना कर पाए।
2: हाँ बेटा, कई बार तो सड़कें भी नहीं होती, फिर भी सैनिकों तक रसद, हथियार और आवश्यक सामग्री पहुंचानी होती है। इसीलिए सैन्य वाहनों को अधिक शक्तिशाली, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जाता है।
1: तो BEML ऐसे ही विशेष वाहन बनाती होगी दादाजी?
2: हाँ बेटा, BEML सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार के विशेष वाहनों, भारी परिवहन प्रणालियों और सहायक रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
1: यानी देश की सुरक्षा में भारत के संस्थान इस तरह अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इन संस्थानों की उन्नत तकनीकों से बने स्वदेशी उपकरण और वाहन राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं।
1: दादू, आपने एक बार एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर का नाम लिया था।
2: हाँ हाँ बेटा, जब कोई विमान हवाई अड्डे पर खड़ा होता है तो उसे सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता होती है।
1: दादू, क्या ये विमान खुद से नहीं जा सकता?
2: कुछ परिस्थितियों में नहीं, लेकिन तब ऐसे ट्रैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं बेटा।
1: और वे भी BEML ही बनाती है?
2: हाँ, ये संस्था कई प्रकार की विशेष प्रयोजन मशीनें बनाती रही है।
1: दादू, BEML मेट्रो से भी जुड़ी है?
2: हाँ बेटा, जब भारत में आधुनिक मेट्रो प्रणालियों का विस्तार शुरू हुआ तब मेट्रो कोच निर्माण की आवश्यकता तेजी से बढ़ी।
1: फिर
2: BEML ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और मेट्रो कोच निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: यानी केवल खदानों की मशीनें ही नहीं, यात्रियों को ले जाने वाले कोच भी।
2: यही तो BEML की सबसे बड़ी विशेषता है बेटी। एक और ये खनन और निर्माण कार्यों के लिए भारी मशीनें बनाती है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष वाहन और रेल तथा मेट्रो के लिए कोच भी तैयार करती है।
1: दादू, सच कहूँ ना तो अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कितना विश्वसनीय है। आखिर एक संस्था इतने अलग अलग क्षेत्र में काम कैसे कर सकती है दादाजी?
2: इसका उत्तर है इंजीनियरिंग क्षमता।
1: मतलब?
2: जब किसी संस्था के पास डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था हो तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी सफल हो सकती है।
1: तो BEML केवल उत्पाद नहीं बनाती बल्कि तकनीकी ज्ञान भी विकसित करती है।
2: बिल्कुल बेटा, किसी मशीन को बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे वर्षों का अध्ययन, अनुसंधान और परीक्षण छिपा हुआ होता है।
1: मतलब पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी?
2: हाँ, सबसे पहले इंजीनियर मशीन की आवश्यकता को समझते हैं, फिर उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद मॉडल बनाया जाता है और अनेक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मशीन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह काम करेगी।
1: यानी हर मशीन के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक सोच होती है।
2: हाँ बेटा, BEML के विशेषज्ञ लगातार नई तकनीकों पर काम करते रहे हैं। वे मशीनों को अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली और अधिक ईंधन कुशल बनाने का प्रयास करते रहते हैं।
1: तो इसका लाभ देश को भी मिलता होगा?
2: निश्चित रूप से बेटा, जब तकनीक देश में विकसित होती है तो विदेशी निर्भरता कम होती है, लागत घटती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
1: अब समझ में आया दादू कि किसी संस्था की असली ताकत केवल उसके कारखानों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान और नवाचार में भी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, यही ज्ञान और नवाचार किसी संस्था को समय के साथ आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा दादू, क्या इनके पास इनका अपना रिसर्च सेंटर भी है?
2: हाँ हाँ बेटा, नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ किसी भी आधुनिक संस्था का आधार होती हैं।
1: और वहाँ किस तरह की रिसर्च और निर्माण होता होगा?
2: वहाँ पे बेटा नई मशीनों के मॉडल तैयार किए जाते हैं, पुराने डिजाइन सुधारे जाते हैं, ईंधन दक्षता बढ़ाने पर बहुत काम होता है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक विकसित की जाती है।
1: यानी प्रयोगशाला में जन्म लेने वाला विचार बाद में वास्तविक मशीन बन जाता है दादाजी।
2: ठीक कहा बेटा, एकदम ठीक।
1: दादू, आज की कहानी से मुझे एक बात समझ में आ रही है।
2: और वो क्या है?
1: वो बात ये है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं बल्कि उसके उद्योगों और तकनीकी संस्थानों से भी तय होती है।
2: एकदम सही कहा बेटा तुमने। यदि मशीनें, उपकरण और तकनीक अपने देश में विकसित हों तो राष्ट्र अधिक आत्मनिर्भर बनता है।
1: और BEML उसी आत्मनिर्भरता की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना लंबा सफर तय हो गया।
2: हाँ बेटा, और देखो बाहर का नजारा भी लगातार बदल रहा है।
1: अरे दादू, उधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है, लगता है कोई सड़क या पुल बनाया जा रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा। देश के विकास की कहानी केवल लक्ष्यों और योजनाओं में नहीं लिखी जाती बल्कि ऐसी मशीनों के पहियों और इंजनों की शक्ति से भी आगे बढ़ती है।
1: दादू, तो क्या ऐसी परियोजनाओं में भी BEML की मशीनें उपयोग होती हैं?
2: हाँ बेटा, सड़क निर्माण, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं और अनेक बड़े निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले भारी उपकरणों के निर्माण में BEML ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: दादू, मतलब जब हम कोई नया राजमार्ग, सुरंग या औद्योगिक क्षेत्र बनते हुए देखते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी ही संस्थाओं की मेहनत भी होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा।
1: उधर तो देखिए,
2: हाँ।
1: दूसरी पटरी पर एक बहुत लंबी मालगाड़ी जा रही है।
2: हाँ हाँ, और ध्यान से देखो उसके डिब्बो पर क्या रखा है, देखो। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना।
1: अरे हाँ दादू, ये तो बहुत बड़े बड़े वाहन लग रहे हैं, कुछ तो सेना के वाहनों जैसे दिखाई दे रहे हैं दादाजी।
2: तुम्हारी नजर तेज होती जा रही है बेटा।
1: सो तो है दादू। अच्छा ये बताइए ना, क्या ऐसे भारी सैन्य वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है?
2: हाँ हाँ, अक्सर जब सेना को बड़ी संख्या में वाहन, उपकरण या कोई अन्य सामग्री दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचानी होती है, तब रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, मुझे तो सोच कर ही बहुत रोमांच हो रहा है कि किसी वाहन की यात्रा कारखाने से शुरू होकर देश की सीमाओं तक कैसे पहुंचती होगी,
2: और उस यात्रा के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम छिपा होता है बेटा। ये मत भूलना, डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीशियन, परीक्षण विशेषज्ञ और उत्पादन कर्मी।
1: ये तो है दादाजी। अच्छा दादू, जब कोई नया सैन्य वाहन बनाया जाता है तो क्या उसे सीधे सेना को सौंप दिया जाता है?
2: नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
1: तो फिर?
2: देखो, सबसे पहले इसकी जरूरत को समझा जाता है। सेना बताती है कि उसे किस प्रकार का वाहन चाहिए, कहाँ उपयोग होना है, कितना भार उठाएगा, किस परिस्थितियों में कितना काम करेगा।
1: पर दादू, ऐसा तो जहाज बनाने के पहले भी किया जाता है ना?
2: हाँ हाँ, किसी भी वाहन या तकनीकी उपकरण के पहले उसकी जरूरत क्यों होगी, कैसे उसका उपयोग होगा, ये जानना जरूरी होता है बच्चे।
1: फिर इंजीनियर उसका डिजाइन तैयार करते होंगे।
2: हाँ, उसके बाद मॉडल तैयार होता है, फिर परीक्षणों का लंबा दौर चलता है।
1: परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर, कभी गर्म इलाकों में, कभी भारी वजन के साथ, और कभी लगातार कई घंटों तक चलाकर।
1: ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन हर परिस्थिति में काम करेगा।
2: हाँ, रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे।
1: दादू, आपने गौर किया, जब भी हम किसी बड़े संस्थान के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात बार बार सामने आती है।
2: क्या बात सामने आती है बेटा?
1: गुणवत्ता दादाजी।
2: क्योंकि गुणवत्ता के बिना तकनीक अधूरी है।
1: और केवल मशीन बना लेना ही पर्याप्त नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं है, मशीन सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और लंबे समय तक भरोसेमंद ढंग से काम करे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: तभी तो सेना और रेलवे जैसी संस्थाएं किसी उपकरण पर भरोसा कर पाती हैं दादाजी।
2: एकदम सही कहा बेटा।
1: दादू, BEML का योगदान केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, भारत में रेल परिवहन के आधुनिकीकरण की यात्रा में भी ऐसी संस्थाओं का योगदान रहा है। विशेष रूप से मेट्रो रेल परियोजनाओं में BEML ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
1: दादू, मुझे याद है जब पहली बार मैं मेट्रो में बैठी थी ना, तो उसकी गति और सफाई देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी।
2: और सोचो, उस आधुनिक अनुभव के पीछे कितनी इंजीनियरिंग, कितनी योजना और कितना उत्पादन कार्यकर्ता होगा।
1: सचमुच दादू, यात्रियों को तो केवल आरामदायक सफर ही दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। दादू, एक बात बताइए ना, अगर BEML जैसी संस्थाएं ना होती तो देश में विकास कैसे होता? क्या तब हमें हर भारी मशीन विदेशों से खरीदनी पड़ती दादाजी?
2: काफी हद तक हाँ, और इससे लागत भी बढ़ती, समय भी अधिक लगता और तकनीकी निर्भरता भी बढ़ती।
1: मतलब आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं है दादाजी, बल्कि आज की जरूरत है।
2: जब देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीनें, वाहन और तकनीक स्वयं विकसित करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और क्षमता भी बढ़ती है।
1: अब समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में ऐसे संस्थानों का नाम क्यों लिया जाता है।
2: क्योंकि ये संस्थान केवल उत्पाद नहीं बनाते बेटा, बल्कि राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करते हैं।
1: दादू, आपने BEML के वर्तमान के बारे में तो बहुत कुछ बताया मुझे, लेकिन क्या ये संस्था भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रही है?
2: अरे बेटी, यही तो सबसे रोचक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में परिवहन, रक्षा और निर्माण की दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है।
1: मतलब BEML की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, BEML की कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अब बात होगी भविष्य की नई तकनीकों की, आधुनिक निर्माण की और आत्मनिर्भर भारत के अगले कदमों की।
1: दादू, क्या तकनीक सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है?
2: हाँ बेटा, आज से कुछ दशक पहले जिन मशीनों को अत्याधुनिक माना जाता था, आज उनसे कहीं अधिक उन्नत प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। अब मशीनों में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी जोड़ी जा रही है।
1: बुद्धिमत्ता मशीनों में?
2: हाँ, आज कई आधुनिक मशीनों में ऐसे यंत्र तंत्र लगाए जा रहे हैं जो उनके प्रदर्शन पर लगातार नजर रखते हैं। किसी खराबी की संभावना हो तो पहले ही संकेत दे देते हैं।
1: यानी समस्या आने से पहले ही उसका पता चल सकता है।
2: बिल्कुल, इससे समय भी बचता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।
1: तो क्या दादाजी, भविष्य में रक्षा क्षेत्र के वाहन भी और अधिक आधुनिक हो जाएंगे?
2: निश्चित रूप से, दुनिया भर में ऐसे वाहनों पर काम हो रहा है जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके, कम रखरखाव मांगे और अधिक सुरक्षित हो।
1: और दादाजी, भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक विकसित करें और लगातार उसे बेहतर बनाते रहें।
1: मतलब केवल विदेशी तकनीक खरीदना ही समाधान नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, वास्तविक शक्ति तब आती है जब तकनीक का ज्ञान भी अपने देश में विकसित हो रहा हो। बेटा
1: दादू, जब भी हम किसी संस्थान की कहानी सुनते हैं, वहाँ हजारों लोग काम करते दिखाई देते हैं।
2: और यही किसी भी बड़े संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसके लोग,
1: यानी इंजीनियर, तकनीशियन, डिजाइनर और वैज्ञानिक।
2: कोई नई मशीन की रूपरेखा तैयार करता है तो कोई उसके पुर्जे बनाता है, कोई परीक्षण करता है तो कोई गुणवत्ता की जांच करता है।
1: एक मशीन के पीछे सैकड़ों हाथ और हजारों घंटों की मेहनत छिपी होती है दादाजी।
2: शाबाश मेरी बच्ची, एकदम सही कहा तुमने।
1: दादू, अगर कोई स्टूडेंट आज का ये कार्यक्रम सुन रहा हो और भविष्य में ऐसे संस्थान में काम करना चाहे तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए।
2: देखो बेटा, सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनना होगा।
1: जिज्ञासु? वो भला कैसे?
2: जैसे कि मेरी प्यारी पोती रुचि है, है ना? उसे तुम्हारी तरह ही हर मशीन को देखकर ये पूछना होगा कि ये कैसे काम करती है, हर नई तकनीक को समझने की कोशिश करना, विज्ञान और गणित से दोस्ती करना।
1: क्या दादू, और मेहनत?
2: वो तो सबसे जरूरी है बेटा, बड़े सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सीखना पड़ता है।
1: तभी तो कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा ना।
2: हाँ बिल्कुल।
1: दादू, एक बात सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
2: किस बात का आश्चर्य बेटा?
1: वो ये कि जब हम किसी मेट्रो में सफर करते हैं ना दादाजी, या किसी नई सड़क पर चलते हैं, या समाचारों में सेना के आधुनिक वाहनों को देखते हैं, तब हम शायद ही कभी सोचते होंगे कि इनके पीछे कितनी संस्थाओं और कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है।
2: वास्तव में देश के लिए निर्माण का कार्य विशाल यज्ञ की तरह होता है। उसमें कोई वैज्ञानिक अपना ज्ञान देता है, कोई इंजीनियर अपनी कल्पना, कोई तकनीशियन अपना कौशल और कोई श्रमिक अपना परिश्रम,
1: और तभी कोई बड़ा काम पूरा हो पाता है दादाजी।
2: हाँ बेटा, सोचो यदि खदानों से खनिज ना निकले तो कारखाने कैसे चलेंगे? यदि भारी मशीनें ना हो तो बड़े पुल, सड़कें और सुरंगें कैसे बनेंगी?
1: सो तो है।
2: और यदि रक्षा उपकरणों की आवाजाही के लिए उपयुक्त वाहन ना हो तो सेना की तैयारी कैसे मजबूत होगी?
1: दादाजी, यानी विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ बेटा, और BEML जैसी संस्थाएं इन दोनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।
1: दादू, क्या BEML के कर्मचारियों को ये एहसास होता होगा कि उनका काम देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि अवश्य होता होगा, क्योंकि जब कोई इंजीनियर किसी मशीन का डिजाइन बनाता है तब वो केवल एक उत्पाद नहीं बना रहा होता बल्कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा होता है।
1: और जब कोई तकनीशियन किसी पुर्जे को सावधानी से तैयार करता है
2: तब वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है।
1: वाह दादाजी, इसका मतलब हर छोटा काम भी महत्वपूर्ण होता है।
2: यही तो सबसे बड़ी सीख है बेटा, कोई योगदान छोटा नहीं होता, बड़ी उपलब्धियां हजारों छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बनती हैं।
1: दादू, आप अक्सर कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है।
2: हाँ हाँ, मैं आज भी कहता हूँ और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
1: तो क्या आने वाले समय में ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर होगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले वर्षों में नई तकनीकें विकसित होंगी, नई चुनौतियां सामने आएंगी और नए समाधान भी खोजने होंगे। इसके लिए जिज्ञासु, मेहनती और नवाचार करने वाले युवाओं की आवश्यकता होगी।
1: यानी आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा।
2: बिल्कुल, और हो सकता है कि आज ये कार्यक्रम सुनने वाला कोई बच्चा भविष्य में ऐसी ही किसी संस्था का नेतृत्व करे।
1: दादाजी, मुझे तो सोचकर बड़ा ही रोमांच हो रहा है।
2: देखो बेटा, किसी भी संस्थान की सफलता केवल उसकी मशीनों से नहीं मापी जाती है, उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने देश और समाज को कितना मजबूत बनाया।
1: और BEML ने ये काम कई दशकों से किया है।
2: हाँ, बदलते समय के साथ उसने स्वयं को बदला, नई तकनीकों को अपनाया और देश की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ती रही।
1: यानी यही किसी जीवंत संस्था की पहचान है।
2: बिल्कुल बेटा, जो सीखना बंद कर दे वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है,
1: और जो निरंतर सीखता रहे वही भविष्य का निर्माण करता है।
2: शाबाश बेटा, शाबाश। लगता है आज की यात्रा सचमुच सफल रही।
1: दादू, आज हमने जाना कि किसी भी संस्थान की कहानी केवल उसकी इमारतों या मशीनों की कहानी नहीं होती।
2: तो फिर क्या होती है?
1: ये उन लोगों की कहानी होती है दादाजी, जो अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से देश को आगे बढ़ाते हैं।
2: वाह बेटा वाह, लगता है इस यात्रा ने वाकई तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया।
1: और आपने भी तो बहुत कुछ सिखाया दादू।
2: मैं तो तुम्हारा दादू हूँ, सिखाऊंगा ही बेटा। याद रखो बेटा, किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मशीनें नहीं होती, बल्कि वो विश्वास होता है जो वो देश के लोगों में पैदा करता है। BEML ने दशकों से यही विश्वास मजबूत किया है। भारत की अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकता है, बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है।
1: यानी ये केवल मशीनें बनाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाने की कहानी भी है दादाजी।
2: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने। जब किसी देश के युवा सीखने, शोध करने और नवाचार करने का संकल्प लेते हैं, तब ऐसे संस्थान उस संकल्प को शक्ति देने का काम करते हैं।
1: समझ गए दादू, आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव केवल देश के कारखानों से मजबूत नहीं है, बल्कि देश के उन संस्थानों में काम कर रहे लाखों लोगों के ज्ञान, कौशल और परिश्रम से है।
2: शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और यही आज की यात्रा की सबसे बड़ी सीख भी है।
1: दादू चलिए जरा संभल कर उठिएगा।
2: हाँ हाँ बेटा,
1: बैग में लेती हूँ।
2: हाँ।
1: श्रोताओं, आज आपने सुनी BEML की स्थापना, उसके शुरुआती कार्यों और रक्षा अधोसंरचना क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की कहानी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में दादू और रुचि आपको बताएंगे देश के और भी कई संस्थानों के बारे में, साथ ही आत्मनिर्भर भारत में इन संस्थानों की भूमिका और भविष्य की योजनाएं क्या क्या है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना,
2: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है आजाद हिंद। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी शेख भिखारी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं और इतिहास फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और महान देशभक्त की रोचक कथा लेकर। आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में ओर मांझी के राजा उमराव सिंह के देशभक्त दीवान शेख भिखारी की, जिन्होंने सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण क्रांति में उल्लेखनीय योगदान दिया।
1: शेख भिखारी ओर मांझी से 9 किलोमीटर पूर्व अनगढ़ा थाना के खुदिया लोटवा गाँव में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी, साथ ही साथ पूर्वजों के अनुभव से प्रशासनिक कुशलता भी हासिल की थी।
0: आज यानी 8 जनवरी और सन 1858 को ही शेख भिखारी शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी और प्रशासनिक क्षमता के शौर्य से प्रभावित होकर ओर मांझी खटंगा के राजा उमराव सिंह ने उन्हें अपनी रियासत का दीवान और भंडारी बना दिया था।
1: 1857 की क्रांति में छोटा नागपुर में डोरंडा के सैनिकों ने 31 जुलाई को जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां के नेतृत्व में चुटुपालू घाटी में सबसे पहला क्रांति बिगुल बजाया। ये घाटी राजा उमराव सिंह की जमींदारी में ही आती थी।
0: शेख भिखारी सैनिकों के इस कार्य से खासे प्रभावित हुए और उनका उत्साह भी बहुत बढ़ गया। उन्होंने नादिर अली और माधव सिंह को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ये आश्वासन कोरा नहीं था। उन्होंने विद्रोहियों का सामान ढोने के लिए हाथी, घोड़े और पुलियों का प्रबंध करवाया।
1: साथ ही साथ शेख भिखारी और उमराव सिंह ने चुटुपालू और चारू घाटी को तहस नहस करके उधर का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, ताकि अंग्रेजी सेना वापस ना आ सके।
0: विद्रोहियों का आतंक इतना भयानक था कि अंग्रेज कप्तान ग्राहम और 3 अन्य गोरे अफसर हजारीबाग भाग गए। इधर विद्रोही सैनिक सिर्फ 2 तोपों से गोलाबारी करते हुए चुटुपाली के रांची की ओर चल दिए।
1: 2 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने रांची पर कब्जा कर लिया और डर के मारे रांची के जिलाधीश डेविस, जज ओक्स और पलामू के एडीओ बर्च कांके पिठोरिया के मार्ग से भाग खड़े हुए।

0: 1857 की लड़ाई में कई जगहों पर देश के गद्दारों और विश्वासघातियों ने क्रांति मार्ग में विघ्न पैदा करने की कोशिशें की, परंतु शेख भिखारी जैसे दृढ़ निश्चयी वीरों ने हार नहीं मानी।
1: कुछ सिख सेनाएं बिहार और छोटा नागपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों की मदद कर रही थीं। सिख सेना हजारीबाग में 3-4 दिन तक पड़ाव डाले बैठी थी। इसी बीच शेख भिखारी हजारीबाग जा पहुंचे।
0: तमाम मुश्किलें पार करके शेख ने विश्वनाथ शाहदेव का पत्र उस सिख सेना के मेजर बिशन सिंह तक पहुंचा भी दिया और उन्हें स्वतंत्र सरकार का समर्थन करने को राजी भी कर लिया।
1: हाँ तारी, पर ये बात कितनी दुखद है कि हमारे देश के क्रांतिवीरों को अपने ही लोगों को अपनी ही स्वतंत्रता के लिए फुसलाना पड़ा, उन्हें लालच देने पड़े।
0: अगर देश में गद्दार मौजूद ही नहीं होते तो हमारा देश गुलामी के इतने बरस नहीं झेलता। और तब क्यों आज भी हम सब ये प्रण ले लें कि देश और मानवता के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, तो संसार कितना सुख शांति पूर्ण हो जाए, है ना इतिहास।

0: शेख भिखारी ने छोटा नागपुर में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। संथाल परगना के दो भाइयों सिद्धू और कानू ने तो सन 1855 से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
1: हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में संथालों का शुरू से ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से सुरेंद्र शाह के नेतृत्व में 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग की दोनों जेलों को तोड़कर ढेरों संथाल विद्रोहियों को जेल से रिहा कराया गया।
0: इन संथालों के नेता थे वीर रिपु मांझी, फागु मांझी, रिवजा मांझी, डबर गंजू और अर्जुन मांझी। इनके नेतृत्व में 1857 में हजारीबाग स्वतंत्र करा लिया गया।
1: एक बात सोचो इतिहास, उस समय तो संपर्क के साधन भी नहीं थे, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े देश के कोने कोने से हर इलाके के भील, संथाल, आदिवासी और लोग एक आवाज पर जागरूक हो जाते थे और मदद के लिए आगे भी आते थे।
0: बिल्कुल, उस एकता के जज्बे के कारण ही तो भारत स्वतंत्र हो पाया। कोई भी साधन मौजूद नहीं होने के बावजूद जनशक्ति ही थी जो सबसे बड़ा संपर्क का माध्यम और साधन थी।
1: ऐसी शक्ति को हमारा नमन है और साथ ही हम एक जोश से भरा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: हाँ, जरूर।

0: वाह, मजा आ गया ये ताजगी भरा गीत सुनकर। तो तारीख, हम बात कर रहे थे उन पांच वीर संथाली नेताओं की जिन्होंने हजारीबाग स्वतंत्र करवाया था।
1: हाँ, इतना बड़ा कार्य किया और बस अंग्रेजी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए। इन पांचों नेताओं को पकड़वाने का ब्रिटिश सरकार ने 100-100 रुपये इनाम घोषित कर दिया।
0: संथाल विद्रोह इतना उग्र था कि हजारीबाग का जिलाधीश मेजर सिम्पसन भयभीत होकर भाग गया और बड़ई में रहने लगा।
1: अंग्रेजों की संथालों के प्रति नफरत बढ़ती रही। आखिरकार आगे चलकर संथालों का ये विद्रोह भी दबा दिया गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर संथाल में नरसंहार किया और त्राही त्राही मचा दी।
0: इतना ही नहीं तारीख, मार्ड से लेकर कोला तक लगभग 200 संथाल विद्रोहियों को सरेआम फांसी दे दी गई और संथालों के गांव जला डाले।
1: अंग्रेजी आतंक से भयभीत और पूर्ण रूप से निर्धन हो चुके अधिकांश संथाल उत्तर बंगाल भाग गए। मौका पाते ही 22 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः रांची पर कब्जा कर लिया।
0: अंग्रेजों को ये मौका इसलिए मिला क्योंकि डोरंडा की विद्रोही सेना रांची से दिल्ली की ओर कूच कर गई थी और रांची में कोई विद्रोही सैन्य शक्ति नहीं बची थी। कुंवर सिंह भी बिहार से अन्यत्र चले गए और अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया।
1: बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और लगभग अकेले बच गए अपने कट्टर शत्रु शेख भिखारी, उमराव सिंह और उनके भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को घोर यातनाएं देते हुए निर्दयता पूर्वक रांची लाया गया।
0: ब्रिटिश शासन के लिए मैदान एकदम साफ था। वो दुष्टता और बर्बरता की हदें पार कर रहे थे। बदले की भावना में बौराए अंग्रेज रांची में क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी पर लटका रहे थे।
1: छोटा नागपुर के जुडिशियल कमिश्नर विलियम ओक्स ने मद्रास फौज के मेजर मैकडोनल्ड को मौखिक आदेश दिया कि जिस चुटुपालू घाटी और चारू घाटी को शेख भिखारी ने बर्बाद किया है, वहीं उन्हें और राजा उमराव सिंह को एक साथ पेड़ पर जनता के समक्ष फांसी दे दी जाए।
0: जब शेख भिखारी और उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी ले जाया गया तो दृश्य देखने जैसा था। हजारों देशभक्त विद्रोहियों के परिवार मार्ग में उमड़ पड़े। इस भीड़ में महिलाएं और पुरुष रोते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों में भय के साथ साथ उनकी आंखों में एक भयानक आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता था।
1: आक्रोश ऐसा था कि जब ये भीड़ मोरहाबादी पहुंची तो मेजर मैकडोनल्ड को आशंका हुई कि मद्रास फौज कहीं डर के भाग न जाए।
0: खतरा भांपते हुए मैकडोनल्ड ने 8 जनवरी 1858 को रांची और मांझी मार्ग में ही मोरहाबादी टैगोर हिल्स के पास एक वृक्ष की दो डालों पर शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी दे दी।
1: इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड ने जनता में भय बनाए रखने के लिए इनके शव एक पेड़ पर लटके रहने देने के आदेश दिए। मोरहाबादी के स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से पुकारा जाता है।
0: फांसी के बाद दोनों शहीदों की संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके परिवार अभाव और गरीबी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर दिए गए। तारीख, जानती हो, अमर शहीद शेख भिखारी के वंशज शेख अलीमुद्दीन रांची के बाजार में मजदूरी करते थे।
1: इतने बड़े संभ्रांत परिवार में जन्मे शेख भिखारी, जिनके पूर्वज शेख बुलंदू खुदिया लोटवा गांव के जमींदार थे और 12 गांवों के मालिक भी। ये 12 गांव उनको औरागढ़ की रानी ने उन्हें उनकी बहादुरी और रामगढ़ सिकदरी घाटी की रक्षा के एवज में उपहार में दी थी।
0: हाँ तारीख, एक तरफ तो ये तथ्य है और दूसरी ओर शहीद भिखारी दिवस समारोह समिति की कुछ और ही मान्यता है। वो कहते हैं कि शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के बुडमू थाने के होपटे गांव में एक बुनकर परिवार में हुआ था।
1: अरे इतिहास, तारीखें कहती हैं कि अधिकांश किस्से शेख भिखारी के खुदिया लोटवा गांव के होने की पुष्टि करते हैं। यहां तक कि डोरंडा कॉलेज रांची के इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं प्रमुख इतिहासविद डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार भी खुदिया ही उनका जन्म स्थान मानते हैं।
0: हमारा उद्देश्य उन वीरों की लड़ाई को सम्मान पूर्वक याद करना है और हम खुद ही लड़ने लगे।
1: चलो भाई, हम अपने श्रोताओं को प्यारा सा गीत सुनवाएं और मन से वीर अमर शेख भिखारी को नमन करें।
0: बिल्कुल तारीख, मैं तुमसे एकदम सहमत हूँ। तो लीजिए हमारा आज का ये अंतिम गीत। ये गीत हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से शेख भिखारी को श्रद्धांजलि स्वरूप है।
1: और श्रोताओं, जैसा हमने पहले भी बताया था, आज शेख भिखारी की पुण्यतिथि है। हम उनकी शहादत को शत शत नमन।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह ऑडियो

तो श्रोताओं, इस वादन के बाद अब आपको हम सुनवा रहे हैं कबीर गायन, जिसे पेश कर रहे हैं भैरव सिंह चौहान और साथी कलाकार।

देखिए हमारी सबकी ये शरीर रूपी चुनरी को सदगुरु ने सराबोर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान रूपी रंग के माध्यम से लाल लाल कर देनी है। आगे मोरे सदगुरु जी ने देनी है ज्ञान जड़ी। पद प्रस्तुत हैं।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे अब हमारी शाम की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। सभा आरंभ करने से पहले आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों की सूची। सबसे पहले सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि, मंडल 2 सूक्त 2 आज आपको सुनवाएंगे अक्षय निधि का। और अक्षय निधि के ठीक बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह शाम 6 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। टंग गुटुरु प्रकाशम जयंती है आज इनकी, और इन्हीं के ऊपर आधारित होगा आज का कार्यक्रम वतन का राग। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। रक्षाबंधन पर विशेष प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र पर विषय पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा सुनिए शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में स्वर होंगे परिकल्पक और मनीषा चतुर्वेदी के। शाम 7 बजे का समय होगा कार्यक्रम टेक गुरु, और टेक गुरु में सुनिए आज वायुमंडल पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर हैं वर्षा सिंह और दीपक नेमा के।

हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम सुनिए शाम 7:30 पर। भारतीय सशस्त्र सेनाएं विषय पर आज का कार्यक्रम होगा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखाली की चर्चा आपको सुनवाएंगे। देश के संस्थान ये कार्यक्रम सुनिए रात 8:00। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। दीपक नीमा और भगवती सक्सेना के स्वर में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे।

आजाद हिंद कार्यक्रम सुनिए रात 8:30 पर। शेख भिखारी पर आधारित आज का कार्यक्रम होगा। आजाद हिंद के बाद 9 से आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय एकता पर एकता से उत्प्रोत गीत। और रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम काव्य गुंजन। रश्मिरथी का भाग आपको इसमें सुनवाएंगे। कलाकार होंगे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा। तो अब से लेकर रात 10 तक बने रहिए मेरी यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए विभिन्न कार्यक्रमों का। छोटा सा अंतराल और उसके बाद सुनते हैं अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
1: दानो अग्ने बृहतो दाह सहस्रिणो दुरो नवाजम श्रुत्या अपावृधि प्राची द्यावा पृथ्वी ब्रह्मणा कृधि स्वर्ण शुक्र मुषसो विद्युतु। हे अग्निदेव, आप हमें हजारों तरह की विभूतियां प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। कीर्तिदायी अन्न प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। उषाएं आपको आदित्य के समान प्रकाशित करती हैं, अतः द्युलोक तथा पृथ्वी लोक को ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाएं। स इधान उषसो राम्या अनुस्वर्ण दीदे दरुषेण भानुना होत्राभिरग्निर्मनुषः स्वध्वरो राजा विषामतिथिश्चा रुरायवे। उषा की समाप्ति के बाद प्रज्वलित अग्निदेव अपने उज्ज्वल तेज से प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ याज्ञिक प्रजाधिपति वे अग्निदेव मनुष्यों की स्तुतियों से प्रशंसित होते हुए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते हैं। एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्व्य धीश पीपाय बृहद्दिवेशु मानुषा दुहाना धेनुर्व्रजनेशु कारवेत्मना शतिनम पुरुरूपमिषणि। हे अग्निदेव, आप अत्यंत तेजस्वी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानव समुदाय के बीच में आप स्तुतियों से तृप्त होते हैं। याजकों को आप कामधेनु के समान असंख्य प्रकार का धन प्रदान करते हैं। वयमग्ने अर्वता वा सुवीर्यम् ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाम अति अस्माकम् द्युम्नमधि पंच कृष्टिशुच्चा स्वर्ण शुशुचीत दुष्टरम्। हे अग्निदेव, हम पराक्रम तथा ज्ञान के द्वारा सामर्थ्यशाली बनकर मानव समुदाय में श्रेष्ठ बने। हमारा उच्च स्तरीय अनंत तथा दूसरों के लिए अप्राप्त धन समाज के सभी वर्गों में सूर्य की तरह प्रकाशित हो। स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन् सुजाता इशयन्त सूरयः यमग्ने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वेदमे। हे बलशाली अग्निदेव, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ज्ञानी जन यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन धान्य से संपन्न मनुष्य हमारी इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनीय पूजनीय तथा तेजस्वी रूप में अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि वस्वो रायः पुरुषचंद्रस्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शक्धिनः। हे ज्ञानोत्पादक अग्निदेव, ज्ञानी स्तोताओं सहित हम दोनों सुख की कामना से आपके आश्रित हों। आप हमारे लिए उत्तम संतति रहने के योग्य ग्रह आदि तथा श्रेष्ठ संपत्ति प्रदान करें। ये स्तोत्रिभ्यो गोवग्रामश्व पेश समग्ने राति मुपस्रजन्ति सूरयः, अस्मांच तांश्च प्रहिनेषि वस्य आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तोताओं को श्रेष्ठ गौएं तथा बलशाली घोड़ों से युक्त धन प्रदान करते हैं, आप उन्हें तथा हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें। यज्ञों में वीर संतति से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत। भक्ति संगीत में सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की वंदना।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास केवल हमारी स्वाधीनता के संघर्ष और आजादी के मिलने तक ही सीमित नहीं रहा। भारत की आजादी के बाद भी कठिनाइयां बहुत सी थीं, अनेक चुनौतियां सामने थीं। भारत की आजादी और आजाद भारत के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की कहानी को अनगिनत राष्ट्र सेवियों ने अपने अनथक प्रयासों से लिखा है। उनके प्रयासों ने ही दबे कुचले भारतीय मन में स्वाभिमान और गौरव का भाव भरा। परिणाम स्वरूप गांव से लेकर शहर तक विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों ने अपनी अस्मिता को नए सिरे से जाना, समझा और उसे रेखांकित किया। इसी दौरान ऐसे लोग उभरे जो अपने अपने क्षेत्र की पहचान बन गए। तेलुगु अस्मिता से जुड़े एक ऐसे ही महानायक थे टंगुटूरी प्रकाशम, जो टी प्रकाशम के नाम से भी जाने जाते हैं। टी प्रकाशम देश के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से तो थे ही। वो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे और सन 1953 में मद्रास स्टेट के विभाजन के बाद स्थापित आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तेलुगु जनमानस ने उन्हें आंध्र केसरी कहकर समादृत किया। टंगुटूरी प्रकाशम का जन्म 23 अगस्त सन 1872 को आंध्र प्रदेश के विनोदर यूनिपलेम गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल कृष्णैया और माता जी का नाम सुबम्मा था। जब वो मात्र 11 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां ने बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। बचपन से ही टी प्रकाशम का सपना था कि वो एक वकील बने, लेकिन वो मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके और ये सपना धुंधलाने लगा। लेकिन आगे चलकर वो एक सफल वकील बने। शुरुआत में टी प्रकाशम दूसरी श्रेणी के वकील थे और उच्च न्यायालय के किसी भी मामले में बहस नहीं कर सकते थे। ये बात उन्हें कचोटती रही और उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का मन बनाया।

इंग्लैंड पहुंचकर टी प्रकाशम ने कानून की पढ़ाई तो की ही, यहां वो रॉयल इंडिया सोसाइटी में शामिल हुए और दादा भाई नौरोजी के चुनाव के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में काम किया। बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद टी प्रकाशम भारत लौटे और मद्रास उच्च न्यायालय में कई बड़े मामलों में कानूनी पक्षकार बने। इस दौरान उन्होंने एक कानून की पत्रिका का संपादन भी किया। इस तरह वकालत का उनका सपना पूरा हुआ। प्रिवी काउंसिल में मुकदमा लड़ने के लिए वो दो बार इंग्लैंड गए और यहीं वो पहली बार गांधी जी से मिले। गांधी जी से हुई भेंट का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। धीरे धीरे उनकी सक्रियता बढ़ती चली गई। मद्रास अधिवेशन में विपिन चंद्र पाल का आना हुआ। अंग्रेजी सत्ता की नाराजगी का भय सभी के भीतर था। ऐसे समय में अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रश्न सामने था। टी प्रकाशम ने पूरी निर्भयता के साथ इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो अब स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों में लगातार सक्रिय भागीदारी करने लगे। इस बीच गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। टी प्रकाशम ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करने का संकल्प लेते हुए सत्याग्रह प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया और वकालत का पेशा छोड़ दिया। वो स्वराज पत्र के कार्यकारी संपादक हुए, जो अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होता था। 1922 में असहयोग आंदोलन के समय जब गुंटूर में प्रदर्शन की बात आई, तब उन्होंने 30,000 लोगों को एकत्रित कर इस आंदोलन का आयोजन किया। साइमन कमीशन के विरोध में जब देश खड़ा हुआ, तब टी प्रकाशम ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें न तो पुलिस का डर था और न ही गोलियों का। वो तो अपने साथियों को लेकर डटे रहे। साइमन गो बैक के नारे के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। मद्रास में हुए नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था। टी प्रकाशम शुरू से ही एक लोकप्रिय नेता थे। 31 वर्ष की उम्र में ही वो नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए थे। सन 1937 में हुए चुनावों के बाद वो सी राजगोपालाचारी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए और जमींदारी जांच समिति की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक विकृतियों में पूरा सुधार हो। भारत माता की सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य था।

टंगुटूरी प्रकाशम का जीवन राष्ट्र सेवा का एक सुंदर उदाहरण है। वो जब और जहां रहे सदा राष्ट्र को समर्पित रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी लोकप्रियता और सक्रियता ने लोगों को जागृत कर दिया। लोग एकजुट होकर खड़े हो गए और अंग्रेजों को चेतावनी देता नारा गूंज उठा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। करो या मरो का महामंत्र मन में लिए हुए टी प्रकाशम ने इस आंदोलन को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया कि उनकी गतिविधियां अंग्रेजों को चुभने लगीं। उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया गया। वो 3 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अप्रैल 1946 में वो संयुक्त मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इस पद पर उन्होंने 13 महीने तक कार्य किया। इस दौरान उन्होंने समाज सुधार और आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की। सन 1947 में टी प्रकाशम को भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद भी हैदराबाद भारत संघ में सम्मिलित होने को तैयार नहीं था। हैदराबाद का निजाम अब भी सत्ता में बना हुआ था। राज्यों के विलीनीकरण के रास्ते में हैदराबाद का निजाम एक चुनौती बनकर खड़ा था। इस कठिन परिस्थिति को सुलझाने के उद्देश्य से टी प्रकाशम ने अपनी जान की चिंता न करते हुए 1948 में हैदराबाद का दौरा किया। चाहे स्वाधीनता आंदोलन हो या आजाद भारत के सुंदर भविष्य के लिए कोई संघर्ष, टंगुटूरी प्रकाशम कभी भी पीछे नहीं हटे। हर संघर्ष में निर्भय होकर वो शेर की तरह कूद पड़े। इसीलिए आम जनता ने उन्हें आंध्र केसरी कहकर पुकारा। सन 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और टी प्रकाशम इस नए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए। वो केवल पार्टी की ही पसंद नहीं थे, वो आम जनता की भी पसंद थे। टी प्रकाशम ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, ना जीविता यात्रा। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। पहले 2 भाग में उनके शुरुआती जीवन और स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने की चर्चा है। तीसरे भाग में आंध्र प्रदेश की स्वतंत्रता और गठन की जानकारी है और 4 भाग में उनके राजनीतिक करियर का वर्णन है। टी प्रकाशम ने अन्याय के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया और गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए मां भारती की सेवा की। 20 मई सन 1957 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हुगली की घेराबंदी 1632, जब मुगलों ने फिरंगियों को खदेड़ दिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गंगा डेल्टा का आद्र और नदी प्रधान क्षेत्र एक कानून विहीन सीमांत था, जहां नमक की हवा के साथ हिंसा का खतरा हमेशा घुला रहता था। लगभग एक सदी तक पुर्तगाली, जिन्हें स्थानीय रूप से फिरंगी कहा जाता था, किराए के सैनिक और निजी व्यापारियों के एक स्वायत्त बल के रूप में सक्रिय थे। वे बंगाल के तट के निर्विवाद मालिक थे, लेकिन उनकी शक्ति की नींव कुछ ऐसी गतिविधियों पर टिकी थी जिसने मुगल शाही केंद्र के क्रोध को भड़का दिया था। फिरंगी समस्या केवल व्यापारिक नहीं थी, यह गहराई से राजनीतिक थी। ये स्वायत्त पुर्तगाली समूह गुलामों के शिकार के लिए कुख्यात थे, एक ऐसी गतिविधि जो मुगल राज्य के साथ बार बार तनाव पैदा करती थी। 1632 तक इन उद्दंड विदेशियों द्वारा शाही अधिकार को दी गई राजनीतिक चुनौती नए सम्राट शहंशाह के लिए असहनीय हो गई थी। फिरंगियों पर लगाम लगाने का काम बंगाल के सूबेदार कासिम खान को सौंपा गया। 1632 में हुगली की घेराबंदी मुगल सैन्य संकल्प का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन था। हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों की मुख्य बस्ती थी, व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र जो लंबे समय से मुगल नौकरशाही की सीधी पकड़ से बाहर था। कासिम खान की सेना ने एक व्यापक हमला किया, जिसका उद्देश्य रणनीतिक डेल्टा पर शाही नियंत्रण स्थापित करना था। लक्ष्य स्पष्ट था, पुर्तगालियों की राजनीतिक अवहेलना को रोकना और उनकी मजबूत स्थिति से उन्हें उखाड़ फेंकना। मुगलों के लिए घेराबंदी एक विनाशकारी सफलता थी। भूमि आधारित दबाव और नदी मार्गों के नियंत्रण के संयोजन के माध्यम से कासिम खान की सेना ने पुर्तगाली प्रतिरोध को कुचल दिया, जिससे फिरंगियों को समुद्र की ओर भागने या बंदी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जीत दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने गंगा डेल्टा पर निश्चित मुगल नियंत्रण का दावा किया और सभी यूरोपीय शक्तियों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि साम्राज्य में उनकी उपस्थिति सम्राट की इच्छा के अधीन है। हुगली के पतन ने लंबे समय तक खालीपन नहीं छोड़ा, इसके बजाय इसने क्षेत्र में नए खिलाड़ियों की स्थापना को गति दी। पुर्तगालियों की हार के ठीक एक साल बाद 1633 में स्थानीय अधिकारियों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुगल अधिकारी हालांकि यूरोपीय हिंसा से सावधान थे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और कर आय बढ़ाने के साधन के रूप में इन नव आगंतुकों का स्वागत करते थे। 1632 की घेराबंदी की विरासत यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक डरावनी याद बनी रही। भले ही डच और अंग्रेजों ने हरिहरपुर और बालासोर जैसे शहरों में अपने ठिकाने बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसा इस ज्ञान के साथ किया कि उनके संबंधों की शर्तें मुख्य रूप से मुगल राज्य शक्ति द्वारा तय की गई थी। हुगली में पुर्तगालियों की चौंकाने वाली हार इस बात की याद दिलाती रही कि 17वीं शताब्दी के कंपनी राज्य में फिरंगी हमेशा उस सीमांत पर केवल अतिथि थे, जिसे अब मुगल अपने स्वामित्व में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है रक्षाबंधन, प्रकृति के लिए भी एक रक्षा सूत्र जरूरी है।
4: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। सावन का महीना है, बाहर बारिश की रिमझिम है, पेड़ धुले धुले से लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। सच कहूं तो सावन आते ही मन भी जैसे हरा हरा हो जाता है। भाग दौड़ के बीच भी मन करता है कि थोड़ी देर रुक कर बारिश को देखें, पेड़ों के पास बैठें और इस मौसम को महसूस करें। तो बस आज स्टूडियो में मैंने सोचा क्यों ना हम सावन के इस बहुत ही सुंदर से रंग को और सावन में आने वाले एक और भी सुंदर त्यौहार को आप सब बच्चों के साथ मनाएं। तो बच्चों, रक्षाबंधन का तो बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता ही है, और जब ये त्यौहार आने वाला है और हम इसे मना रहे हैं, तब ये ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ बातें और सोचें। और आपको ये भी पता है कि जब भी बाल सभा होती है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा, कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, कुछ ना कुछ ऐसा फूड ज़रूर तैयार करती हूँ जो आपके दिमाग के लिए हो, विचारों के लिए हो, क्योंकि बच्चों सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने से दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो एक वो गाना था ना एक फिल्म में, सोचो सोचो क्या ये पेड़ है, तो वही वाली बात है कि हम ज़रा चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से सोचें तो बच्चों हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो आज हम लोग जो सोचने वाले हैं वो यही कि क्या रक्षाबंधन हम जैसे मनाते हैं उसमें हम कुछ थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा ट्विस्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि बहनें तो इंतज़ार कर रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए और उससे कोई सुंदर सी गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन हम आपको ऐसे रक्षाबंधन की बात बताने वाले हैं बच्चों, जो आपको गिफ्ट में हो सकता है उस समय कुछ ना दे, लेकिन जीवन भर बहुत कुछ देता रहेगा। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ सुनाने वाले हैं जो मुझे एक बच्चे ने लिखकर भेजी थी। उसने लिखकर भेजा था कि रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, हरियाली की आई कहानी, पेड़ हंसे और धरती मुस्काए, सावन सबके मन को भाए। ये बच्ची है मेदिनी, और वो आ जाने वाली थी, उसने मुझे ये छोटी सी कविता लिख के भेजी, लेकिन वो क्या हुआ ना, सावन में भीग गई, और भीग गई तो तबीयत खराब हो गई बच्चों। तो बस मैंने कहा जब तुमने छोटी छोटी सी कविताएं लिखी हैं वो मुझे भेजो, मैं आज बच्चों को सुनाऊंगी। अब क्या होता है बच्चों कि हम बाकी दिनों में कितनी भी चीज़ों में उलझे रहें, स्कूल, पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, घर का काम, लेकिन बारिश आते ही हम और आप खिड़की के बाहर झांकते ज़रूर हैं, पेड़ों को देखते ज़रूर हैं, बारिश की आवाज़ सुनते ज़रूर हैं, मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं, यानी हमें प्रकृति थोड़ा रुकना सिखाती है ना। और इसी को बच्चों माइंडफुल लिविंग कहा जाता है, यानी हम जिस पल में जी रहे हैं उसे हमें ध्यान से जीना है, और प्रकृति इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अच्छा लगता है ना, पत्तियां हिलती हैं, कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं बच्चे तो भी ऊपर से पत्तियां गिर रही होती हैं, और कभी कभी हवा चलती है तो बच्चों को और मज़ा आ जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो हमारे मन को बहुत सुकून देती हैं, जैसे किसी पेड़ के पास बैठना, उसे छूना, उसकी छाया में सांस लेना, ये सब हमें प्रकृति से जोड़ता है। और पता है बच्चों, कुछ लोग तो पेड़ों को गले भी लगाते हैं, जैसे हम किसी अपने से मिलकर गले लगते हैं ना, वैसे ही, और इससे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होता है। आप पता है, आज जब मैं यहाँ आ रही थी, बहुत झिमिर झिमिर, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा कुछ बच्चे एक जगह पानी भर गया था, तो उस जगह ना बहुत तेज़ी तेज़ी से उछल रहे थे, और वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे कि उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं। बस यही बचपना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए आज जो बात मैं करने वाली हूँ आपसे रक्षाबंधन की, वो ये है कि बच्चों, रक्षाबंधन पे हम भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन या फिर कभी भी आपको जब लगे, तब एक रक्षा सूत्र किसी पेड़ को, किसी पौधे को बांध कर देखिए। इसलिए क्योंकि वो आपका प्रकृति से एक अलग तरह का रिश्ता बनाएगा बच्चों। क्योंकि रक्षा सूत्र, अगर हम रक्षा के लिए कहें तो पेड़ और प्रकृति भी तो कितनी चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। ये पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, और उससे बड़ा क्या है बताइए। और जब हम उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे तब हमारा एक रिश्ता कायम होगा पेड़ के साथ। कुछ बच्चे तो पौधों में पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई फूल ना तोड़े, कोई फल ना तोड़े, कोई पत्थर ना मारे पेड़ पर, ये सब ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शैतानी करते हैं। अगर आम लगा हुआ है तो फट से कंकड़ मार देंगे और आम तोड़ लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। हाँ, तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ को एक रक्षा सूत्र बांधना है, और हो सके तो कुछ और बच्चों को भी ले जाइए अपने साथ। जब आप ढेर सारे बच्चे लेकर पेड़ के पास जाएंगे, उसको तिलक करेंगे ऐसे सांकेतिक रूप से, और रक्षा सूत्र बांधेंगे, और कॉलोनी और मोहल्ले के बच्चों को जब आप ये बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन हम प्रकृति के साथ भी मनाएंगे, है ना, तो फिर आप देखेगा कि आपका उस पेड़ के साथ कितना गहरा नाता हो जाएगा, उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। अब एक बहुत सुंदर सी बात है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और हमें पालने पोषण करने वाली मातृभूमि, दोनों का स्थान स्वर्ग के सुखों से भी ऊपर और महान होता है। तो बच्चों, इस धरती के लिए, इस जन्मभूमि के लिए अगर हम बच्चे कुछ सबसे अच्छा कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपनी प्रकृति की रक्षा और सेवा। ऐसे ही एक और गतिविधि मैंने देखी कि कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं, कलश में जल भरते हैं और जल पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। और बच्चों, यही देखने के बाद आज मैंने आपसे ये बात कही है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जब वो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो एक खुद से संकल्प भी लेते हैं कि अब से हम जल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। नर्मदा नदी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, सालों से, लाखों वर्षों से ये नदी बह रही है बच्चों। और खास बात यह है बच्चों कि इस नदी के पास कोई ग्लेशियर से पानी नहीं आता। जो ये जंगल, जो ये बड़े बड़े पेड़, जो बहुत सारे जंगल मिलकर जो पानी को बचाते हैं, अपनी जड़ों में जो पानी को सोखते हैं, वो पानी धीरे धीरे रिस कर इस नदी में आता है, और फिर ये जाने कितने लोगों को जीवन देती हुई बहती है। तो कितनी बड़ी भूमिका है ना पेड़ों की। तो इस बार आप याद रखिए कि आपको पेड़ों के साथ, जल के साथ और प्रकृति प्रदत्त हर चीज के साथ रक्षा सूत्र का एक बंधन मन ही मन जरूर बांधना है, ताकि आप प्रकृति की सेवा करने का एक संकल्प अपने भीतर जरूर लें। और जो बच्चे ऐसा करेंगे वो मुझे बाल सभा में बाद में भी बता सकते हैं। आप लोगों को तो मैं मिलती ही रहती हूँ, कभी आपके स्कूल से निकलते वक्त, कभी आपके कॉलोनी, कभी आपके मोहल्ले, बहुत सारी जगह आप मुझसे मिल सकते हैं। और मुझसे ही क्या, आप अपनी माँ को बता सकते हैं, पिताजी को बता सकते हैं कि हमने इस बार रक्षाबंधन पर प्रकृति की जितनी भी संसाधन है, चाहे वो जल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, किसी ना किसी को रक्षा सूत्र बांधिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, या नल खुला देखूंगा तो बंद कर दूंगा, और पेड़ों के साथ भी ये वचन निभाऊंगा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा या रक्षा करूंगी। कुछ बच्चे मुझसे बता रहे थे कि हम पेड़ों को पानी रोज देते हैं, लेकिन मैडम क्या होता है ना, कुछ बच्चे आकर वहाँ बहुत कचरा कर देते हैं, घर का सारा कचरा लाकर पेड़ के पास फेंक देते हैं। तो मैंने बोला ये चीज कि बच्चों सब लोग मिल जाओ और एक छोटा सा क्लब बना लो, कॉलोनी का, मोहल्ले का। वो क्या होगा, आपका किड्स क्लब हो जाएगा, वो आपका बच्चों का क्लब हो जाएगा, और उसमें यही सब शिकायतें आए, आप लोग कहानियों की किताबें पढ़ो और उन्हीं कहानियों को फिर आप डिस्कस करो। कम से कम सप्ताह में एक बार तो मिलो सारे लोग मिलकर। फिर अगर कोई बच्चा कंकड़ पत्थर फेंक रहा है पेड़ों के पास, या पेड़ों के पास अपने घर का कचरा लाकर फेंक रहा है, तो उस आपकी जो समिति या क्लब बनाओगे बच्चों का, उसमें उन चीजों को डिस्कस करो। फिर आप में धीरे धीरे सिर्फ ये डिस्कशन ही नहीं होगा, आप में धीरे धीरे लीडरशिप आएगी, आप धीरे धीरे अपनी बातों को ओन करना शुरू करोगे, आप में गंभीरता आएगी, आप चर्चा करोगे उन बातों की। और बच्चों, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है जब आप कोई निर्णय लेते हो, जब आप सबके साथ बैठते हो, कुछ अच्छी बातें करते हो, खुद से प्रॉमिसेस करते हो, उन्हें निभाते हो, तो बड़ा मजा आता है बच्चों। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एक बच्चों का क्लब जल्दी से बनने वाला है और फिर मुझे आप लोग बताने वाले हो? एक कहानी सुना दूं इसी बात पर आप लोगों को, एक ईमानदार बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। माता पिता की इकलौती संतान, बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। बटुआ समझते हो, जो हाथ में लोग लेकर चलते हैं ना, बटुआ कपड़े का भी बनता है और उसमें वो पैसे रखे रहते हैं, मतलब पर्स समझ लीजिए आप एक तरह से। तो जैसे ही रामू ने बटुए को देखा, उसने बटुए को उठाया, उसने क्या देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही है। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उसी दिशा में चल पड़ा। वो पता गांव के एक धनी व्यापारी का था।

0: पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के स्वरूप कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। तब रामू के पिता ने कहा कि मुझे इसे आगे की पढ़ाई करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस व्यापारी ने कहा कि जब आप इतनी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ कि आपसे रामू की पढ़ाई लिखाई सबका खर्च मैं उठाऊंगा। फिर क्या था, उस व्यापारी ने रामू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और देखते ही देखते रामू ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की और एक दिन बड़ा होकर वो एक सफल डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो फिर गांव लौटा और उसने जाकर उस व्यापारी के पैर छुए और कहा कि अगर आप ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होता। उस व्यापारी ने पता है क्या जवाब दिया? उस व्यापारी ने जवाब दिया, रामू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे माता पिता की परवरिश का आज ये रिजल्ट मिला है तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुमने मेरे पैसे लौटाए थे, तब मैं चकित था कि कोई बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है कि इतने सारे पैसे देखने के बावजूद उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया। ऐसे बच्चे की मदद तो मुझे करनी ही थी। रामू ने उसके पैर छुए और वहां से निकल गया। फिर उसी गांव में गांव वालों के लिए एक क्लिनिक खोला। तो बच्चों, सुना आपने कि किस तरीके से छोटी सी घटना आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल देती है? अगर उस दिन रामू पैसे वापस ना करता और उनसे नहीं मिलता, तो क्या वो पढ़ने के लिए शहर जा पाता? हो सकता है चला जाता, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि नहीं जा पाता, क्योंकि उनके माता पिता के पास बच्चों इतने पैसे नहीं थे। वो गांव के ही किसी स्कूल में फिर आगे पढ़ाई करने के लिए भेजते नहीं भेजते, ये सब भविष्य के हाथों में था। लेकिन उस दिन की एक घटना ने रामू का भविष्य ही बदल दिया। तो कई बार आपके अच्छे काम का अंजाम हो सकता है आपको बच्चों उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जो बार बार मैं आप लोगों से बच्चों बात करती हूँ ना, कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छा रखिए, अपनी बातचीत का लहजा, अपने बातचीत की तहजीब, बड़ों के प्रति सम्मान, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, बच्चों ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका हर दिन, हर पल, हर प्रतिपल आप जो व्यवहार करते हो बच्चों, आपको उसका ही रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरह रामू अपनी ईमानदारी के बल पर इतना अच्छा व्यक्ति बनकर निकला, उसी तरह आप लोग भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए बच्चों। और फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और इस रक्षाबंधन हमको क्या करना है, रक्षा सूत्र पेड़ों को या जल के कलश को भी बांधने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों। रक्षा का जो भाव होता है वो केवल हमारे परिवार तक क्यों रहे, हमारे जीवन में पेड़ हैं, नदियां हैं, जल हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के नाम यदि हम रक्षा सूत्र बांधें, तो हमको उस समय ये नहीं सोचना है कि ये हम सिर्फ धागा बांध रहे हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। एक छोटा सा वादा करिए कि इस पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको पानी देंगे, इसको बड़ा होते हुए देखेंगे। जब आप लोग अपने आप वादा करेंगे, और वो जो किड्स क्लब की बात मैंने कही, एक छोटी सी समिति बच्चों की बनाइए, वहाँ भी जब ये बात रखेंगे तो और बच्चों को भी समझाइएगा, और मिलकर अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई जगह आपको खाली दिखे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मिट्टी है और खाली जगह है, वहाँ पौधे लगा दीजिए। क्योंकि बच्चों पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी जगह और बदले में कितना कुछ देते हैं। एक आम का पौधा बड़ा होकर जब बड़ा आम का वृक्ष बनता है तो कितने लोगों को आम के फल देता है, देता है कि नहीं देता है? आपने सुबह सुबह देखा है नीम के पेड़ से कितने सारे आंटी अंकल जब निकल रहे होते हैं तो पत्तियां तोड़ते हुए चबाते हुए जाते हैं, कोई नीम की पत्तियां उबाल कर नहाने के लिए ले जाता है, क्योंकि नीम बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, हमारी सेहत की बेहतरी के लिए भी। ऐसे कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं बच्चों, जो बहुत अच्छी गिलोय की बेल होती है बच्चों, जो अगर हम उसके पत्ते खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है गिलोय। ऐसे कितने पेड़, कितने फूल, कितने फल हैं जिनकी कहानियाँ अगर मैं आपको सुनाने बैठूँ तो वो बच्चों ख़त्म ही ना हो। गुलाब के फूल तो आपने देखे ही हैं, टीचर्स डे हो या कोई भी खास दिन हो, आप बाहर से लेकर जाते हो, सोचो खरीदते हो आप, कितने लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही पौधे लगे हों और खूब सारे फूल आ रहे हों तो बस पौधे से ज़रा सी विनती कीजिए और एक छोटा सा फूल ले लीजिए। लेकिन इन सब के लिए हल्की फुल्की मेहनत तो लगती है, थोड़ा आपका डिटर्मिनेशन लगता है, थोड़ा आपका खुद के प्रति ईमानदारी लगती है कि अब आप पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अच्छा, मुझे एक बच्चा ये भी बता रहा था पिछली बार कि जब वो स्कूल में होता है हमेशा हाथ धोता है और भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, घर में होता है मम्मी डांटती है तो बंद कर देता है। और ये बात उसने खुद ही एक्सेप्ट की, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए गलती कर रहा है लेकिन स्वीकार भी कर रहा है। तो क्या आप में से भी कोई बच्चा है क्या बच्चों जो नल खुला छोड़ने की आदत है जिसकी? अगर आप घर में हो, ब्रश कर रहे हो, नल बह रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोग के साथ? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी बात हुई ना कि आपको पानी व्यर्थ नहीं बहाना है। याद रखना है बच्चों हमें कि प्रकृति के जो भी संसाधन हैं वो सीमित संसाधन हैं। आपने देखा है बच्चों, हम कई बार खरीद के पानी पीते हैं, बोतल का पानी खरीदते हैं और फिर पीते हैं। तो क्यों ना जब भी हम घर से निकलें, भले ही हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं या हम खेलने जा रहे हैं, तो अपने लिए एक बोतल में पानी लेकर जाएं। उससे दो फायदे होंगे बच्चों, पूछे क्या? पूछ लिया आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के, बोल दिया क्या? अब मैं बताती हूँ, फायदे ये होंगे, एक तो हर बार बच्चों जो प्लास्टिक की बोतल आप खरीद रहे हो ना वो नहीं आपको लेनी पड़ेगी, वो बड़ी बड़ी लंबे समय तक परेशान करने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, आपके पैसे भी खर्च होते हैं हर बार जब आप पानी खरीदते हो। कभी किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ आपका पानी ख़त्म हो गया है, वहाँ ठीक है, लेकिन एक आदत डालिए कि अपने घर से जब भी निकलेंगे तब हम पानी की बोतल लेकर ही निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो प्लास्टिक की ना हो। कोशिश ये भी करेंगे कि जब हम कुछ खरीदने जाएंगे या आपकी मम्मी या आपके पापा कुछ खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप? आपने थैला लिया या नहीं? क्योंकि जब हम घर से कपड़े का थैला लेकर चलते हैं ना बच्चों, तब फिर हमें वो पॉलीथिन नहीं लेनी पड़ती जो सामान के साथ बेवजह हमारे घर में आ जाती है। और एक पॉलीथिन, एक जो वो पन्नी भी बोलते हैं, पॉलीथिन भी बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली भी बोलते हैं, उस एक पॉलीथिन को डिस्ट्रॉय होने में बहुत लंबा समय लगता है बच्चों, बहुत लंबा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो ज़मीन में बरसों बरस पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होती, और उसके कारण कई बार जानवरों को बहुत नुकसान होता है। कई बार जब नदी में आप जाते हैं और पॉलीथिन कोई छोड़ आते हैं, अपना सामान जो आप पॉलीथिन में लेकर आते हैं, तो जो जलीय जीव हैं उनको बहुत नुकसान होता है बच्चों। कई ऐसे रिसर्च हैं बच्चों, कई। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत थोड़े से दिन पहले की बात है, बच्चे कुछ बात कर रहे थे कि महासागर, अगर हम नदी को गंदा कर रहे हैं तो क्या महासागर भी गंदे हो जाएंगे? हाँ, एक छोटी सी की जाने वाली गलती बहुत लंबे समय तक, कई कई वर्षों तक वो गलती ही रहती है। जैसे नदी में अगर आप पानी गंदा कर रहे हैं तो आप सिर्फ नदी में नहीं कर रहे हैं, वो समुद्र तक, फिर समुद्र से महासागर तक वो सब कुछ पहुंच रहा है। कहते हैं ना कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा भाग पर जल है ना बच्चों? तो उस जल को सुरक्षित रखने के लिए, उस जल को स्वच्छ रखने के लिए, हमारी नदियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है हमको? हमको नदियों के पास केमिकल यूज नहीं करना है। जब हम नदियों के पास जाएं तो हमें साबुन से नहीं नहाना है, है ना, जो साबुन में भी केमिकल होते हैं और वो नदी के पानी को खराब करते हैं। बच्चों केमिकल फ्री साबुन, अब आप सोचोगे कि केमिकल फ्री साबुन कैसे ले जाएं, तो बच्चों जो मुल्तानी मिट्टी होती है और जो खुद नदी की मिट्टी होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। आप चाहें तो नदी में आप वैसे ही पानी से नहाकर आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कोई गंदगी नहीं करेंगे। तो बच्चों आज मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना, अगर उनको आप अपनाएंगे तो आप थोड़े से और समृद्ध हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व और बेहतर हो जाएगा। तो बस इस बार त्योहारों के इस मौसम में हमें अपनी प्रकृति के किसी भी संसाधन को, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, आपको किसी ना किसी को रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। ध्यान रखिए, जल को कलश में लेकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं आप। और जब आप बांधेंगे तो खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि हम प्रकृति के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब चलिए थोड़े से संकल्प ले लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या बहाऊंगी। रक्षा का रिश्ता इंसानों के अलावा प्रकृति के साथ भी निभाऊंगा या निभाऊंगी। अपनी नदियों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। मैं प्रकृति से प्रेम करूंगी या करूंगा। अब एक आखिरी संकल्प, जहां तक संभव हो घर से थैला लेकर निकलेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। बस अब आंखें खोल लीजिए, हल्के हल्के से अपने दोनों हाथों को मलिए और अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगता है बच्चों। जब भी हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दो पल ठहर कर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही लगता है। अब बस आज से नई शुरुआत और रक्षाबंधन के लिए भी एक नया विचार। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और बातें करने के लिए। लेकिन अभी के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय था प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ धरा।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बादल। तो धरा, आज हम बात करेंगे हमारे वायुमंडल के बारे में।
0: तो क्या बात है बादल, आज तो आप बड़े खुश भी लग रहे हो और मैं ये देख रही हूँ कि आप कुछ मंद मंद मुस्करा भी रहे हो।
1: हाँ धरा, आज मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। कुछ देर तो मैं लेटा रहा, फिर खिड़की के बाहर देखा तो बड़ा सुहाना मौसम लगा। सोचा क्यों ना घर की छत पर जाकर कुछ देर टहलाऊं। बस ये मुस्कुराहट इसी का नतीजा है।
0: बात तो सही है, मौसम सुहाना हो और हम खुले आसमान के नीचे खड़े हों, हवा के झोंके इतने मन भावन हों, तो बस मजा तो आ ही जाता है।
1: हाँ धरा, ऐसे में कई कवियों की कविताएं याद आने लगती हैं। तब मन में बस यही बात आती है कि हवा के बीच हम कितना तरोताजा महसूस करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, तब हम लंबी लंबी सांस भी लेने लगते हैं और अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं।
1: जानती हो धरा, ये सब हमारे पृथ्वी के आसपास वायुमंडल के कारण है, जो कई गैसों का मिश्रण है जो हमारी पृथ्वी को सब तरफ से घेरे हुए है।
0: हाँ, पढ़ा तो मैंने भी था कि पृथ्वी की सतह सैकड़ों किलोमीटर तक गैसों से ढकी है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। बस इसी कारण इन गैसों को पृथ्वी की सतह से अलग नहीं किया जा सकता।
1: हाँ, वायुमंडल को अगर सरल शब्दों में कहें तो ये गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, और ये हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है।
0: बिल्कुल, हमें शुद्ध हवा तो मिलती ही है, साथ ही साथ सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये हमें बचा लेता है, और सूर्य की गर्म किरणों से भी हमें बचाता है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही दिन और रात के तापमान को रोककर जीवन को संभव बनाने में मदद भी करता है।
0: क्योंकि पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है ना, वो एक परतदार संरचना है जो सूर्य की ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में रोककर तापमान में संतुलन बनाती है, जो जीवन के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा, यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी का ऐसा आवरण है जो बाह्य अंतरिक्ष और जीव मंडल के बीच एक सुरक्षात्मक कवच या सीमा बनाता है।
0: और हाँ बादल, एक बात बताऊं, ये वायुमंडल जो है ना, वो उल्का पिंडों को भी हमारी ओर आने नहीं देता, और वायुमंडल में घर्षण के साथ ही या रगड़ के साथ ही ये वायुमंडल से गुजरते हुए राख में बदल जाते हैं।
1: और वायुमंडल में नमी की मात्रा के कई प्रकार, जैसे बादल, कोहरा, ओस, वर्षा, पाला, ओलावृष्टि, बर्फबारी आदि का भी निर्माण करते हैं।
0: यानी वायुमंडल में बादल तुम नमी के कारण ही बनते हो। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वायुमंडल में कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है, तो क्या हम इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करें बादल?
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन भी इस वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में।
0: और बादल, तुम तो जानते ही होगे कि नाइट्रोजन जो होती है, ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, और इसके अलावा वायुमंडल में धूल के बहुत सारे छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं।
1: और जब हम सांस लेते हैं तब हम अपने अंदर कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं।
0: लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत तो पेड़ पौधों को ज्यादा होती है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये पेड़ पौधे सीधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस नहीं ले पाते हैं।
1: अच्छा, तब क्या करते हैं?
0: तब मिट्टी और पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और इसका स्वरूप बदल कर पौधों को दे देते हैं।
1: वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलने वाली दूसरी गैस है। हम मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं।
0: और हाँ, हरे पेड़ पौधे प्रकाश के साथ ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान रूप से बनी रहती है।
1: हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जीवित रहने के लिए इस वायुमंडल पर निर्भर रहना होता है।
0: ये वायुमंडल ही तो हमें सांस लेने के लिए वायु देता है, और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है।
1: पता है, अगर ये वायुमंडल ना हो तो क्या हो सकता है?
0: क्या होगा?
1: यदि ये वायुमंडल ना हो तो दिन के समय हमें सूर्य की गर्मी इतनी अधिक लगेगी कि हमारा शरीर जल सकता है।
0: ओह, और अगर दिन में जल सकते हैं तो रात में क्या हो सकता है?
1: रात के समय ठंड इतनी अधिक हो जाएगी कि हम उससे जम सकते हैं।
0: अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को हम प्राणियों के रहने के लायक बनाता है।
1: हाँ हाँ, और पता है जिस वायु का उपयोग सांस लेने में करते हैं असल में वो कई सारी गैसों का मिश्रण होता है।
0: हाँ, मैंने भी स्कूल में पढ़ा था ये तो, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है।
1: पर ये भी है कि जब हम वृक्षों को काट देते हैं तो इससे ये संतुलन गड़बड़ाने लग जाता है।
0: बादल, तुम्हारी इस बात पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कहो तो सुनाऊं?
1: हाँ बिल्कुल सुनाओ तारा।
0: धरती डगमग डोलती नित आते भूकंप, करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।
1: वाह वाह, कितनी अच्छी बात कही है।
0: अरे आगे भी तो है। वृक्ष नहीं काटे कभी, धरती सून हो जाए, रहेंगे वृक्ष जो सभी, तभी प्रलय बच पाए।
1: वाह वाह, बिल्कुल सही बात कही है। अब एक और गैस भी है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: वो कौन सी?
1: वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
0: अच्छा।
1: हरे पेड़ पौधे इसे अपने भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं।
0: हाँ, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और एक प्राणी इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बस इससे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है।
1: हाँ, पर ये संतुलन कोयला, ईंधन और खनिज तेल आदि ज्यादा जलाने से बिगड़ जाता है। इससे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाती है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है।
0: पर बादल, ये तो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, ये वायुमंडल के संतुलन को भी प्रभावित करता है।
1: हमने अपने जीवन में वायुमंडल की संरचना के बारे में भी पढ़ा था। इसमें 5 परतें होती हैं, पर मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था।
0: कोई बात नहीं बादल, मुझे तो याद है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने बच्चों को पढ़ाते हुए इसे दोहरा लिया है, तो मुझे सब कुछ याद है।
1: अरे वाह, तो सबको बताओ।
0: तो फिर सुनो। हमारा वायुमंडल कई परतों से बना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल।
1: अरे वाह, ये तो बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है, इसको थोड़ा और समझा कर बताओ। श्रोताओं बहुत ध्यान से सुनिएगा।
0: तो फिर सुनो। सबसे पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है, और हम इसी में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और पृथ्वी पर होने वाले सभी मौसम इसी परत के अंदर ही होते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर दूसरा है समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत मानी जाती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करती है।
1: अब मुझे भी ये सब याद आ रहा है।
0: आया ना? तो अब सुनो तीसरी परत के बारे में। तीसरी परत है मध्यमंडल परत। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं वो इसी परत में तो जल जाते हैं।
1: ओह।
0: फिर चौथी है बाह्य वायुमंडल परत। ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है और रेडियो संचार के लिए इस परत का हम उपयोग करते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा रोककर फिर से पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है।
1: तो मतलब हम रेडियो जो सुनते हैं वो इसी वायुमंडल परत के कारण सुनते हैं?
0: जी हाँ। और वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम बहिर्मंडल परत कहते हैं। ये वायु की एक बहुत ही पतली परत होती है। यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं।
1: अरे वाह धरा, आपने कितने आसान शब्दों में पांचों वायुमंडल की परतों के बारे में समझाया है। वाह।
0: तो हो गया ना आज आपका रिवीजन। अच्छा बादल, तुमको पता है ना कि मौसम को लेकर हमारे दिलो दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते ही रहते हैं कि मौसम कैसा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी विशेष दिन के लिए हम अक्सर घर पर बात करते हैं कि फला दिन मौसम अच्छा रहे या पता नहीं उस दिन कैसा मौसम होगा।
0: हाँ, और अगर मौसम ठीक ना हो तो गर्मी और उमस यदि हो तो वो हमें चिड़चिड़ा कर देता है।
1: और जब मौसम अच्छा हो, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो बड़ा मजा आता है। लगता है कि कहीं घूमने जाया जाए, पिकनिक मनाई जाए।
0: हाँ, मौसम का अनुमान वहाँ की जलवायु पर ही निर्भर होता है। हम रोजाना जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का ही तो तापमान होता है।
1: हाँ, मुझे पता है। वायुमंडल में ताप यानी गर्मी, शीतलता यानी ठंडक, इसके परिणाम को ही तापमान कहते हैं।
0: बिल्कुल सही बादल। और एक बात और भी पता रखनी होगी कि ये तापमान सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है।
1: हाँ हाँ, गर्मी में बेहद गर्मी और शरद में शीतलता लिए हुए।
0: बिल्कुल सही। सूर्य से आने वाला तीव्र ताप भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो घटता चला जाता है। तभी तो पृथ्वी के ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं।
1: और वायुमंडलीय दबाव के कारण तापमान पर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की हर परत का तापमान अलग अलग होता है और यही तापमान पृथ्वी पर गर्मी और ठंड का कारण बनता है।
0: पर कभी कभी तापमान में कई विषमताएं भी पाई जाती हैं बादल, और इसके कई कारण होते हैं।
1: और पता है, हमारी पृथ्वी सौर्य ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है।
0: ओ, और ये भी तो आश्चर्य की बात है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ जोर लगाती है, पर हम इंसानों को इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और तब हमारा शरीर भी स्वतः विपरीत जोर लगाने लगता है।
1: हाँ हाँ, कभी कभी ऐसे पवन चलती है हमें उसके विपरीत दिशा में चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस तरह की हवा में हम जब भी छाता लेकर चलते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है।
0: और कभी कभी छाता छूट भी तो जाता है हाथों से।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तेरा।
0: बादल, विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की पवन चलती है और ऋतु के अनुसार से अपनी दिशा भी बदलती रहती है। जैसे मानसून की पवन, ग्रीष्म ऋतु की पवन और शीत ऋतु की पवन।
1: हाँ, और ये किसी भी दिन एक विशेष समय में चलती है। हमारे देश में उत्तरीय गर्म क्षेत्र की पवन जब चलती है तब इसे लू कहते हैं।
0: हाँ, और लू से तो बचकर रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, आज हमने बात की पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण घटक वायुमंडल की, जिसके बिना हमारा ही नहीं बल्कि किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है।
1: आपकी इस बात पर बचपन में पढ़ी हुई एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। अगर आप कहें तो सुनाओ।
0: जी बिल्कुल सुनाइए।
1: जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को बहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण पर हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। मैं थी आपके साथ धरा यानी पूर्वा खले।
1: मैं था आपके साथ बादल यानी दीपक निमा।
0: तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओं, ये दुनिया आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की कोई तय सीमाएं नहीं होती और विजय के लिए केवल शक्तिशाली राष्ट्र का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि विजय के लिए शक्ति के साथ ही हमेशा ही मुस्तैद और तत्पर राष्ट्र का होना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, अपनी सदियों की परंपराओं से प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार, हिमालय से लेकर थार मरुस्थल तक भारतीय सशस्त्र सेना का हर कदम उभरते हुए भारत की नियति को आज आकार देता हुआ दिखाई देता है। सम्मान में निहित और नवाचारों से प्रेरित एक सशक्त और सुदृढ़ भारत के लिए आज हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों से भारतीय सेना नए कलेवर में अपना रूप ले रही है, एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में, जहां ज्ञान, डेटा, ड्रोन्स और नई तकनीकें सैनिकों के साथ समान गति से चलती हैं। कभी आयात पर निर्भर भारतीय सेना के हथियार अब स्वदेशी हैं और हमारा देश इनका निर्माता ही नहीं, निर्यातक है। थार से लेकर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर अंडमान तक हर प्रणाली पर स्वदेशी छाप है। ये कहना ना होगा कि इस नए स्वरूप में पहुंचने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। देश की आजादी के बाद लगभग 8 दशकों में हमारी भारतीय सेना ने जिन महत्वपूर्ण पायदानों को पार किया है, इसका जिक्र हम इस कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में करते हुए चले आ रहे हैं और इसका हमने पूरा प्रयास भी किया है, और इस प्रयास का श्रेय हमारे कार्यक्रम विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर को है, जो हर कड़ी में बड़ी ही शिद्दत और गहन अध्ययन के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं से संबंधित जानकारी हमारे लिए संजोते रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय सेना को जानते समझते अब इस कार्यक्रम की हम अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम पुनरावलोकन करें, फिर से दृष्टि डालें हमारी सेनाओं की भूमिका पर, जिनके कारण आज हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्हें लगभग 20 वर्षों का सेना में अपनी सेवाओं का अनुभव है। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
2: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं,
1: जी,
2: आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: दिस ईयर वी आर 79th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस,
1: जी,
2: एंड आई मस्ट से दैट द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट।
1: बिल्कुल,
2: इन दिस वर्ल्ड
1: जी, परिवर्तन हमेशा का नियम रहा है संसार का सर।
2: एग्जैक्टली, उसी हिसाब से देखें
1: जी,
2: देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैज टेकन प्लेस, अब डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, अपग्रेडेशन हैज टेकन प्लेस इन आवर कंट्री
1: जी,
2: और उसी के साथ साथ जो है हमारी जो सेनाएं हैं वो भी निरंतर जो है अपग्रेडेड हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं।
1: बिल्कुल,
2: हमने ये सीरीज जब शुरू करी थी तो हमने 47 से शुरू करी थी
1: जी,
2: और हमने देखा था कि 47 से लेके अभी तक हमारी सेना निरंतर जो है वॉर्स में इन्वॉल्व रही है।
1: बिल्कुल,
2: 47 में, 65 में, 71 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा
1: जी,
2: और चाइना के साथ हमने 62 में युद्ध लड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कारगिल में रहा, सियाचिन में रहा, इंडियन आर्म फोर्सेस ने IPKF में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत श्रीलंका में जो है इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट किया
1: जी,
2: था।
1: बिल्कुल,
2: अभी भी अगर हम देखते हैं जो आर्म फोर्सेस हैं वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है एंटी टेररिज्म रोल में जेएनके में जो है यहाँ पे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवाद है उससे लड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो है काफी जगह पे इंसर्जेंसी से लड़ रही है। इसके अलावा भी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को तो देखते ही हैं
1: जी बिल्कुल,
2: एंड एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए भी जो है आप देखते हैं कि जो सेनाएं हैं हमेशा जो है तत्पर रहती हैं, हमेशा जो है उनका प्रयास रहता है, हर जगह जो है सपोर्ट करती
1: जी।
2: तो ओवरऑल इफ यू सी द आर्म फोर्सेस हैज बीन इन्वॉल्वड थ्रू आउट सिंस इंडिपेंडेंस गार्डिंग आवर नेशंस इंटरेस्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड सपोर्टिंग
1: जी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है।
2: तो ये सब हमने जो है हमारी जो पूरी सीरीज में हमने जो है देखा था
1: जी।
2: तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे जो है आर्म फोर्सेस भी कॉन्स्टेंटली जो है अपग्रेडेड हुई
1: जी। देश के विकास के साथ सेना का भी विकास
2: जी, सेना का भी विकास हुआ
1: जी।
2: और जो ये चेंजेस हैं अपग्रेडेशन है मॉडर्नाइजेशन है ये मतलब हर तरह से हर जगह पाए जाते हैं, जैसे की पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं
1: जी,
2: ट्रेनिंग में चेंजेस है, जो हमारे पास वेपन्स हैं इक्विपमेंट्स हैं वो उनका मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन रेगुलरली हुआ है। तो इससे जो है हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील करने की कैपेबिलिटी हमारी जो बढ़ती है,
1: बढ़ती है।
2: आपका दुश्मन जो कर सकता है तो आपको वो अपग्रेडेशन होना चाहिए
1: कि आप मुकाबला कर पाए,
2: उसका आप मुकाबला कर सकें, ठीक है, ओके, रादर आप उससे आगे रहें, ठीक है। हमने 47 के वॉर में जो देखा था जब शुरू हुआ था 47 में जो श्रीनगर में जब शुरू हुआ था, इफ यू सी वी वेर काइंड ऑफ अ रिएक्टिव रोल, हमारे पर अटैक हुआ कबाइलीज का अटैक हुआ, उसके बाद वो संधि साइन हुई थी एंड देन वी एंटर्ड, ठीक है, तो इट वाज अ रिएक्टिव एक्शन बिकॉज उस समय जो पॉलिसीज थी 47 में, क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उस समय हम आजाद हुए थे तो जस्ट फॉलोइंग द ब्रिटिश आर्मी, उसी तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, उसी तरह से हमारी पॉलिसीज थी, उसी तरह से हमारे बैटल फॉर्मेशंस थे। ब्रिटिशर्स के लिए तो हम तो इट वाज मोर ऑफ ए पुलिसिंग, ठीक है, डिफेंसिव रोल वाला
1: जी,
2: था।
1: जी।
2: तो उस समय जो हमारा रिस्पांस था एंड जो पॉलिसी के हिसाब से डिफेंसिव होता था,
1: केवल प्रतिक्रिया स्वरूप था,
2: प्रतिक्रिया स्वरूप। अभी अगर मैं सीधे जंप करूं 2025 जब हम आप सिंदूर देखते हैं और बंदर देखते हैं तो यू फाइंड एब्सोल्युटली
1: पूरी तरह से विपरीत हो गई है वो हमारी जो नीतियां
2: हैं, वी आर एक्चुअली प्रोएक्टिव
1: जी बिल्कुल सर।
2: अब हम मतलब वो है कि आप कुछ करोगे तो हम पूरी हिम्मत रखते हैं और हम करके दिखाते हैं
1: जी।
2: तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा मतलब आई विल से अपग्रेडेशन है एंड ये एक माइंडसेट चेंज होता है
1: जी।
2: और जब ये माइंडसेट ऐसा चेंज होता है तो इसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजें बदलती हैं
1: जी, बिल्कुल सर।
2: जो ये मॉडर्नाइजेशन है या अपग्रेडेशन है वो किस कारण से आता है, पहले तो जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनसे हमें सबक मिले
1: जी, बिल्कुल सही।
2: हर लड़ाई ने हमें कुछ ना कुछ
1: सिखाया है,
2: हर युद्ध में हमें कुछ सीखा है, हर कॉन्फ्लिक्ट में सियाचिन हो कारगिल हो कहीं पे भी IPKF हो हर जगह हमने कुछ सीखा है, तो वो जो हमें सिखलाई मिली उसने हमको प्रेरित किया कि हम ये चेंजेस लेकर आए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो, चाहे वो इक्विपमेंट में चेंजेस हो, चाहे हमारे बैटल फॉर्मेशंस में हो, हमारी डॉक्ट्रिन्स में हो, ये ट्रेनिंग में है
1: जी।
2: तो ये चेंजेस उसके कारण है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन होता है द चेंजिंग एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, रीजनल इंटरनेशनल सिनेरियो,
1: आसपास क्या चल रहा है,
2: आसपास क्या चल रहा है, आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस
1: क्या है,
2: उनका जो इम्पैक्ट होता है। देन अगर हम देखें हमारी जो सीमाएं हैं उसपे हमें एक साथ दोनों सीमाओं पे यानी कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ लड़ने की हमारी काबिलियत कैपेबिलिटी होनी चाहिए,
1: बिल्कुल सर।
2: तो वो एक और फैक्टर है
1: तो सर ये हमारे पारंपरिक दुश्मन है समझ लीजिए, इस तरह से कहा जा सकता है,
2: कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो ये एक और फैक्टर होता है विच इज द की ड्राइविंग फैक्टर जो कि चेंजेस में अपग्रेडेशन में
1: जी, हमें हमारे सेना में हमेशा परिवर्तन बनाए रखना इनके लिए जरूरी है,
2: इनके लिए जरूरी, करेक्ट है ना। देन गार्डिंग अवर ओवर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, अगर देखें तो हमारा 90% जो ट्रेड होता है थ्रू सी लेन, समुद्र के द्वारा है, तो उसमें हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सेफ गार्ड करने का. देन लाइक द एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सर्विलेंस एंड एयर डिफेंस ऑफ द कंट्री, सो दैट हमारे ऊपर जो है कहीं मतलब स्पेस कुछ ना हो. तो ये सब जो है की ड्राइवर्स होते हैं जिनके तहत जो है हम नई पॉलिसीज आती हैं, नए ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, नए डॉक्ट्रिन्स बनते हैं नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होता है. तो अगर हम अपने देश की बात करें
1: जी,
2: हम सब जानते हैं कि जो हमारी प्रगति है इस समय
1: जी,
2: उसमें निसंदेह अगले 25 साल में 20 साल में जो है हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो जाएंगे. उसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारी आर्म फोर्सेस भी
1: उसी के हिसाब से तैयार हों. जी बिल्कुल.
2: क्योंकि अगर एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, ठीक है, पीसफुल एग्जिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए उसके पास फोर्सेस हो.
1: जी बिल्कुल.
2: और वो फोर्सेस की कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से हो. ये जो है एक बहुत जरूरी फैक्टर है. ठीक है
1: जी.
2: टुडे अवर फोर्सेस, अगर हम अपने फोर्सेस की आज बात करें तो वर्ल्ड में इसको ऑलमोस्ट फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स कहा जाता है. रिपोर्ट्स जो होती हैं उससे बेस पे कि व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज अवर इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, सबको
1: मिलाकर मिलाजुला
2: जाता है.
1: जी जी.
2: एंड आपको पता ही है कि हमारी भारतीय सेना में ये वॉलंटियर फोर्स है.
1: जी, स्वैच्छिक संगठन है.
2: बिल्कुल. एंड इट इज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वॉलंटियर फोर्स है.
1: बिल्कुल सर.
2: इसके अलावा जो है अगर आप देखें हमारी फौज को, वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन मिशन. ये सब जो चीजें हैं इसको देखते हुए ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसी तरह से जो है हमारा प्रोग्रेस भी रहा है. ये है भी इसीलिए क्योंकि हमने जो है अपने आप को मॉडर्नाइज किया है. और ये जो मॉडर्नाइजेशन है, एडवांसमेंट है
1: जी,
2: अगर आप देखेंगे पिछले 2 दशकों में
1: बहुत
2: तेजी से हुआ है.
1: जी बिल्कुल सर.
2: और उसका कारण भी बहुत ही ज्यादा विदित है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी हुआ है. 2009-2007 में ड्रोन्स यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग. आज ड्रोन्स हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग.
1: जी, बच्चा-बच्चा जानता है सर.
2: जी, उसके बारे में जो है तो डिफेंस फोर्सेस ने जो ये अडॉप्शन किया है टेक्नोलॉजी का, इससे देखिए कम्बैट एफिशिएंसी बढ़ी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. एक और जो बात है
1: जी,
2: जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी जो जॉइंटमैनशिप है, उनकी जो काबिलियत है इकट्ठे काम करने की
1: जी,
2: उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है. क्योंकि इससे क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली द कम्युनिकेशन
1: जी,
2: ठीक है, ट्रांसपेरेंसी. आज क्या है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी से भी बात करने के लिए

0: एडवांसमेंट है उसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं
1: जी
0: नेचुरल है उनका तो सबसे बड़ा योगदान रहता ही
1: जी,
0: है
1: सर,
0: और उनके कारण जो है बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने 2019-20 में जो है आप देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अपॉइंटमेंट,
1: हाँ जी, ये नया पद बनाया गया था
0: जी, जिसकी डिमांड काफी टाइम से हो रही है, ऑलमोस्ट कारगिल के बाद से भी चल रहा था
1: जी।
0: He is the head of the Department of Military Affairs. And जो CDS होते हैं, ये the Principal Military Advisor to the Defense Minister.
1: सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इनकी काबिलियत क्या होती है, इनको किस तरह से चयन किया जाता है सर?
0: देखिए इनके चयन प्रक्रिया ये रहती है कि ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के रैंक के होते हैं
1: जी,
0: एंड पॉलिसीज के हिसाब से होता है कि उनकी कितनी एज होगी, क्या
1: अच्छा,
0: होगा, और तीनों सेनाओं में से कोई भी हो सकते हैं,
1: अच्छा,
0: आर्मी नेवी एयरफोर्स में से कोई भी जो है जो सीनियर होते हैं
1: अच्छा,
0: वो इसमें मतलब जो है बन सकते हैं
1: अच्छा।
0: हाँ, अब उनका अगर रोल देखें तो ही इज वन पर्सन हु लुक्स आफ्टर ऑल द थ्री सर्विसेज, स्पेसिफिकली वो एक सर्विस के नहीं होते, वो तीनों के लिए देखते हैं, तो उसके कारण जो है जॉइंटमैनशिप जो है बढ़ता है। देन ही इज एबल टू मतलब दिस इज हिज प्राइम जॉब रादर कि जो एक्विजिशन है मतलब डिफेंस के लिए
1: जी,
0: उसको प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है उनका बहुत बड़ा काम रहता है
1: जी। यानी किस तरह से बांटा जाएगा सोर्सेज को तीनों सेनाओं में,
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ही कैन हैव ए होलिस्टिक व्यू कैसे किसको क्या जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली ही कैन एडवाइज द गवर्नमेंट, ही कैन एडवाइज सब जो है डिफेंस मिनिस्टर,
1: यानी इस तरह से वो सरकार और सेना के बीच की कड़ी है।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल सही बोला आपने, जो है वो एक कड़ी है जो कि मिसिंग थी।
1: बिल्कुल सर,
0: अभी एक और पॉलिसी आने हुए हैं जिसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड।
1: अच्छा,
0: अभी क्या है जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑल्दो जॉइंटमैनशिप में भी काम करते हैं
1: जी, जी,
0: लेकिन उनका अपना अपना एक रोल होता है, वॉर में भी अपना एक रोल होता है
1: जी,
0: वो अपने हिसाब से होता है। अभी एक नया कंसेप्ट ये आने वाला है कि थिएटर कमांड होगा।
1: अच्छा,
0: थिएटर कमांड का मतलब होगा कि जैसे एक एरिया है तो उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, आर्मी एयरफोर्स जैसे भी है,
1: जैसा भी कॉम्बिनेशन
0: कॉम्बिनेशन है, वो एक ही कमांडर के अंडर में होंगे।
1: अच्छा,
0: नेचुरल है कि उसमें जो है रिएक्टिवेशन अच्छा रहेगा, रिएक्टिव टाइम कम होगा ठीक है
1: जी,
0: तो उसके लिए जो है इवन कॉमन लॉजिस्टिक्स नोट्स रहेंगे ठीक है, और मतलब यू कैन से कि जो थ्रेट है उसको डील करने की हमारी क्षमता जो है बहुत
1: बढ़ जाएगी
0: जी,
1: बिल्कुल सर।
0: तो वेरी सून वी विल फाइंड दिस कमिंग अप ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया फंक्शनिंग के हिसाब से
1: जी बनाए
0: जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो ज्वाइंट ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेस हैं, सेमिनार्स एक्सरसाइज हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। टेक्निकल इंटीग्रेशन जो है वो काफी हाई है
1: जी।
0: अभी जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि तीनों सर्विसेज को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है,
1: जोड़ता है।
0: आप भी जानती हैं एक और चीज है, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो एक कंसेप्ट है
1: जी,
0: सेल्फ रिलायंस, उसने डिफेंस के ऊपर जो है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आपने अपने अभी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम एक
1: निरातक की भूमिका में आ गए हैं सर।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: है ना,
1: तो कहां तो हम हथियार आयात करते थे सेना के लिए, आज हम यूज तो कर ही रहे, उनका निर्यात भी कर रहे हैं।
0: तो इंपोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स से जो है हम बिकम सेल्फ रिलायंस
1: जी, सेल्फ रिलायंस,
0: इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है हमारा बहुत बड़ा है
1: जी जी।
0: तो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है इसके तहत जो है हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं
1: जी,
0: उसमें जो है आत्मनिर्भरता का जो है फैक्टर जो है इमर्ज हुआ है, एंड जो हमारा नेशन है नाउ इट इज इमर्जिंग एज ए हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट
1: जी।
0: जहाँ हम बाहर से जो है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि मतलब इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
1: जी,
0: उसको अलाउ कर रहे हैं ठीक है। देन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनीज काफी आ गई हैं। एक और चीज है वो है जैसे DRDO जो हमारा है।
1: हाँ जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि अंतरिक्ष में अनुसंधान जो है वो एक एक नया आयाम है। आकाश, धरती और जल तो था ही, अब एक अंतरिक्ष भी एक नया आयाम है जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
0: स्पेस
1: जी,
0: स्पेस कमांड,
1: हाँ जी, स्पेस के लिए
0: जिसके ऊपर ISRO काम करते
1: जी, ISRO काम करते। तो सर इसका क्या उसमें भूमिका है हमारे सेना के लिए?
0: इसके में जो भूमिका है, मतलब इन द सेंस यू सी द सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी,
0: एंड नाउ वी हैव गॉट द डिफेंस सैटेलाइट्स
1: जी,
0: ठीक है, क्योंकि हमारे को डिफेंस पे

0: मदद मिलती है
1: जी,
0: हमारी ऑपरेशन प्लानिंग में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मदद मिलती है. एंड स्पेस इज गोइंग टू बी द न्यू एरिया
1: जी
0: इन फ्यूचर, फ्यूचर वॉर का एरिया. एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी डोमिनेट दैट. ओके
1: जी,
0: उसी तरह इसमें भी काफी जो है प्रगति हुई है और चल रही है. ठीक है, इसी तरह से जो है हमारे डीआरडीओ
1: है, हाँ जी, जी.
0: तो इसमें जो है काफी गवर्नमेंट ने एनकरेजमेंट दिया है, एनहांस फैसिलिटीज बढ़ाई है, एंड इवन दे प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र में काफी जो है प्रमोशन है. इवन अगर आप देखेंगे कि इनोवेशन जो होती है, आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा
1: प्रोत्साहन दिया जाता है.
0: तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस बोलते हैं, आईडेक्स बोलते हैं, जिसमें कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि डिफेंस से कनेक्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट है
1: जी,
0: और उनके लिए जितने नई टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देते हैं, और उसके कारण जो है काफी ज्यादा स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट मिल रहा है. जाहिर है कि इन सब से जो है हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है.
1: बिल्कुल सर,
0: हमारे को मॉडर्नाइजेशन में मदद मिल रही है. तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसके कारण अगर आप देखें तो आज काफी जो है इक्विपमेंट जो हम बाहर से लगवाते थे, जैसे अभी तेजास फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट हुए हैं, कम्बैट हैप्टर्स हैं हमारे पास, मिसाइल सिस्टम्स तो खैर हमारा मतलब बहुत ही एडवांस लेवल पे है. रिसेंटली वी हैव टेस्टेड द अग्नि 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को, ICBM को हमने टेस्ट किया है, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के 5000 किलोमीटर रेंज में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच इज न्यूक्लियर केपेबल. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मारक क्षमता जो है
1: बहुत बढ़ जाएगी,
0: बहुत बढ़ जाएगी. हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जो है इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, जिसका कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. ओवरऑल अगर हम देखें मिसाइल सिस्टम्स को देखेंगे तो वी हैव डन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन दिस फील्ड. सिमिलरली लाइक इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन्स हैं जो है इस समय, देन आवर केपेबिलिटीज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर में काफी हद तक बढ़ गई है. ड्रोन्स के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, अभी तो इस टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है, हम देख भी रहे हैं यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल.
0: तो इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा अभी बढ़ा है
1: जी,
0: ये टेक्नोलॉजी को इतना जो है प्रमोट किया गया है कि इवन एट द बटालियन लेवल वी आर हैविंग
1: जी. ऑफ सिंदूर में तो हमने देखा सर इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ,
0: भरपूर इस्तेमाल हुआ
1: जी.
0: एंड मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बहुत अच्छी आई है जो मुझे लगती है कि जो हमारा स्मॉल आर्म्स एंड इक्विपमेंट है सोल्जर्स का,
1: हाँ जी,
0: उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया. अभी लाइक हम AK-203 राइफल्स हमारे यहाँ बननी शुरू हुई, एंड बाकी भी जो है हमने जो इक्विपमेंट में जो बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है, जैसे जो रिमोट एरियाज हैं जैसे सियाचिन हो गया, कारगिल हो गया
1: जी,
0: वहाँ के लिए जैसे स्पेशल इक्विपमेंट है वो तैयार करना मौसम के अनुकूल, वहाँ पे रहने के लिए जो है शेल्टर्स जो है
1: जी,
0: वो हमने खुद
1: आधुनिक बनाना
0: जी, उसको किया है. और सिमिलरली लाइक कम्युनिकेशन आस्पेक्ट इट हैज टू चेंज्ड अ लॉट,
1: बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आए, आमूलचूल परिवर्तन है सर, संचार के कारण, मोबाइल के कारण.
0: आप कह सकते हैं मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पे रहा हूँ मतलब जहाँ 6-6 महीने मेरे घर से कभी बात नहीं होती थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि वो लोग अपने घर से रोज बात कर लेते हैं.
1: क्या बात है,
0: तो इट्स अ मेजर चेंज. एंड इससे क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन ने बहुत बड़ा बदलाव ये लाया है, नाउ इट हैज गॉट द वीडियो फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो कमांड एंड कंट्रोल एस्पेक्ट हैज गॉन अप वेरी हाई.
1: सूचना तेजी से मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही भी उतनी तेजी से होती है.
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है तो रियल टाइम डिसीशंस जो है वो काफी जल्दी लिए जा सकते हैं, और उसी तरह से जो है हमारा एक्शन टाइम जो है हमारा काफी अच्छा है. We had done a major improvement, you see, in the transport also. जो पुरानी गाड़ियों के हिसाब से अभी जो है व्हीकल्स जो है एपीवी कैस्पर जैसे व्हीकल्स हैं जो कि माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स हैं एंड ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं अभी हमारे पास, तो there's a lot of improvement in this.
1: एक कार्य सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, रेल और सड़क, इसके निर्माण में भी सेना का, विशेष रूप से सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर.
0: बल्कि राधर सेना का डेवलपमेंट के लिए इनका होना बहुत बड़ा योगदान हुआ है।
1: बिल्कुल सर।
0: और उसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं कि हम जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करेंगे, जैसे सेला में टनल बनी है, सेला पास
1: जी, सेला पास जी।
0: तो जिससे तवांग जो है अरुणाचल वाला जो है वो एरिया वेस्ट कमांड का, वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल हो गया। अभी जोजिला में जो है टनल बन रही है, देन उसके बाद जो है रोहतांग पास के ऊपर जो है टनल, जिसने की मतलब बहुत ही मेजर चेंज लाया है। नहीं तो लद्दाख यूज टू गेट कट ऑफ फॉर 6 months,
1: ठीक है,
0: ऐसी तवांग जो है मुश्किल हो जाता था एक वक्त में। एंड जैसे जो ब्रिजेस आए हैं, जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, हमारा इवन ट्रेन्स जो है अभी श्रीनगर तक जा रहे हैं, उसके आगे तक जा रही हैं, तो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट व्हिच हैड टेकन प्लेस।
1: तो सर, युद्ध और सीमा की सुरक्षा के अलावा जो सेना ये कार्य कर रही है, उसका योगदान तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, सड़कों के रूप में या पुलों के रूप में या रेलवे के रूप में, खुद स्वयं सेना का योगदान है।
0: सेना को इससे फायदा हुआ है कि बनने से जो है हमारी जो मोबिलिटी बढ़ गई है ना, तो उससे हमें फायदा हुआ है। जो सेना का एक अंग है, दैट इज मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज BRO, ग्रेफ एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, यस, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में
1: जी,
0: जो है। ऑफकोर्स उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो फौज के होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, दैट इज राइट। इन चीजों को अगर आप देखेंगे जो है, लाइक अभी बॉर्डर एरियाज पे यू फाइंड की जो एयरफील्ड्स हैं वो डेवलप हुए हैं, एडवांस एयर बेसिस हैं जो बॉर्डर एरियाज में है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूव है, रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा इम्प्रूव है। तो आई विल से कि जब हम 47 से देखा है और 2025 पे जब हम आते हैं, तो हमें सिनेरियो पूरी तरह से चेंज
1: मिलता है।
0: और ये सिर्फ आर्मी में नहीं है, जब हम नेवी की कभी जिक्र करते हैं या एयरफोर्स का भी जिक्र करते हैं, तो उनका भी एडवांसमेंट उतना ही उस लेवल से बड़ा है। आज एयर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम, आवर डोमिनेशन इन द सी, ठीक है, Our capabilities have gone up to very high level.
1: बहुत उच्च स्तर की
0: है, उच्च स्तर की है। हमारे जो इतने फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो इन सब के कारण जो है कैपेबिलिटीज जो है हमारी, जो डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है, उसमें काफी इजाफा हुआ है।
1: कुल मिलाकर हमारी सेना जो है आज बेहद ही सशक्त स्थिति में है।
0: बिल्कुल, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा
1: जी सर,
0: जो है एडवांसमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आज भी
1: जी
0: सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सोल्जर
1: जी। बिल्कुल सर,
0: सदियों से चाहे हम हमारे पास में, मतलब इवन प्री हिस्टोरिक में भी जाएंगे
1: जी,
0: जब से हम देखते आ रहे हैं, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। एंड आज भी जो ये इंडियन सोल्जर है, हमारे जो सोल्जर हैं, जो मतलब सतत खड़े हैं
1: जी
0: देश की सुरक्षा के लिए जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल,
0: सबसे महत्व रखते हैं, ये उनकी स्पिरिट है जी, देश की सुरक्षा के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल,
0: सबसे महत्व रखते हैं, ये उनकी स्पिरिट है, देश प्रेम है जो है, मतलब दे आर द ड्राइविंग फोर्स
1: जी,
0: जिसके कारण जो है देश की जो है सुरक्षा
1: जी सर। तकनीक और हथियार अपनी जगह है, लेकिन सैनिक का जब तक साहस नहीं होगा तब तक तकनीक और हथियार भी कुछ नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल, और उनका जो जज्बा है बलिदान का,
1: बिल्कुल,
0: जो है
1: मातृभूमि के प्रति समर्पण,
0: मातृभूमि के प्रति उनका जो समर्पण है वो मतलब ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माय कंट्री, ठीक है, देन कम्स एनीथिंग एल्स। वो जो जज्बा है, जब तक वो है तब तक कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता।
1: स्वयं से पहले सेवा।
0: बिल्कुल, स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। आज जो भी कुछ हम हैं, I must say it is because of the bravest of the braves, all those people who had contributed so much to for the country, people like Major Somnath Sharma, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhu, Captain Mahendra Mula, and Captain Vikram Batra, bravest of the braves, and aur bhi bahut jitne का हमने इन सब का जिक्र भी किया था अपनी पूरी सीरीज में।
1: हम पिछली कड़ियों में इन सब को हमने कभी भी भुलाया नहीं है, और हर एक को याद करने का अपने इस कार्यक्रम में प्रयास किया
0: जी। और इसके अलावा भी जो हर वो जवान जिसने जो है इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए तो उनके सामने हम नतमस्तक हैं।
1: बिल्कुल सर, ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी ये जो सोल्जर्स हैं, इन्हीं के कारण जो है हमारा देश हमेशा जो है स्ट्रांग रहेगा। सुरक्षित रहेगा।
1: बस सर यही भावना हमारी भी है और इसी भावना से प्रेरित एक गीत है, कुछ पंक्तियां हैं सर, वो मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगी कार्यक्रम में अंत में। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, इस आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। तो श्रोताओं, हम भी अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धांजलि देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को सर्वप्रथम रखकर अपना सर्वस्व बलिदान दिया। और हम आभारी हैं हमारी सेना और हमारे सैनिकों को जो हमें हमारी स्वतंत्रता का हमेशा आभास कराते रहते हैं। आज की कड़ी और इस कार्यक्रम को भी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने भारतीय सेना के बारे में हम जैसे आम नागरिकों को इतनी अच्छे से सेना के बारे में समझाया और बताया कि हमारे जीवन में सेना का क्या महत्व है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम एंड इनफैक्ट आई मस्ट से थैंक्स टू यू दैट एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर द व्यूज। थैंक यू वेरी मच एंड सैल्यूटिंग ऑल द सोल्जर्स। जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन रहा अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, जमीन से रक्षा की गति की कहानी।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले एपिसोड्स में दादू और रुचि यात्रा पर गए थे, जहां रुचि ने विशाल युद्ध पोतों, अत्याधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक और समुद्री सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज उनकी यात्रा समुद्र से आगे बढ़कर वापस धरती पर आ पहुंची है। आज रुचि जानेगी उस संस्था की कहानी जिसने भारत के विकास, रक्षा और अधोसंरचना निर्माण को नई गति दी। तो चलिए दादू पोती के संवादों के साथ सुनते हैं BEML की प्रेरक गाथा।
1: दादाजी, गोवा की यात्रा बड़ी यादगार थी। बहुत थक गई हूँ, अब घर में आकर बड़ा सुकून लगा है। दादू, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न नए नए तैयार कर दिए हैं।
2: अच्छा बेटा, देखो प्रश्न तो तुम्हारे मन में बहुत तैयार होते रहते हैं, मुझे जरा पहले एक गिलास पानी पी लेने दो।
1: हाँ दादू, ये लीजिए आपका पानी।
2: बेटा, यही तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ होता है। इन यात्राओं से जितना सीखो, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और बढ़ती जाती है।
1: दादू, GSL में हमने देखा कि जहाज बनाना कितना कठिन काम है। हजारों पुर्जे, सैकड़ों इंजीनियर और वर्षों की मेहनत लगती है।
2: बिल्कुल सही, कोई भी जहाज बनाना आसान काम नहीं है।
1: लेकिन दादू, समुद्र के अलावा जमीन पर भी तो देश के दूसरे संस्थानों के सामने ऐसी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां होती होंगी।
2: हाँ हाँ बेटा, पहाड़ों में सड़कें बनानी हो, खदानों से खनिज निकालना हो, सेना के लिए भारी वाहन तैयार करने हो या मेट्रो रेल चलानी हो, इन सभी कार्यों के लिए खास संसाधनों की जरूरत होती है।
1: और वो काम करती है BEML। सही कहा ना आपकी रुचि ने।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML का नाम सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है रुचि बेटा। रुचि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अब तुम मुझसे इसी विषय पर जानना चाहती हो?
1: दादू, आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मेरे मन में आज BEML के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो अब आप मुझे इसी बारे में विस्तार से बताएंगे।
2: तो सुनो बेटा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया था, क्योंकि उस समय इसका मुख्य कार्य भारी अर्थ मूविंग मशीनें बनाना था। लेकिन समय के साथ संस्था का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ गया कि आज ये आधिकारिक रूप से BEML लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। फिर भी BEML का ऐतिहासिक विस्तार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ही माना जाता है।
1: दादू, इसका इतिहास कितना पुराना है और इस संस्थान की स्थापना कब हुई, ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ।
2: हाँ हाँ बेटा, BEML की स्थापना 11 मई 1964 को हुई थी। उस समय भारत एक युवा राष्ट्र था और अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
1: दादू, तब देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी?
2: उस वक्त देश को भारी मशीनों की जरूरत थी बेटा। खदानें बढ़ रही थीं, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, उद्योग विकसित हो रहे थे और अधोसंरचना निर्माण को गति मिल रही थी। लेकिन अधिकांश भारी मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी।
1: यानी तब हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं था?
2: पूरी तरह तो नहीं, इसलिए सरकार ने ऐसी संस्था की कल्पना की जो देश में ही भारी निर्माण और खनन उपकरण बना सके।
1: अच्छा, तभी इस सोच के साथ ही BEML की शुरुआत हुई होगी।
2: बिल्कुल।
1: दादू, शुरुआती दिनों में BEML क्या बनाती थी?
2: सबसे पहले खनन और निर्माण क्षेत्र के लिए भारी मशीनें बनाई जाने लगी।
1: किस तरह की भारी मशीनें दादू, और ये भारी मशीनें काम क्या करती थी?
2: देखो बेटा, बुलडोजर, डंप ट्रक, एक्सकेवेटर, ग्रेडर और अनेक प्रकार के अर्थ मूविंग उपकरण।
1: दादू, ये भला कैसा नाम हुआ, अर्थ मूविंग उपकरण?
2: अरे बुद्धू, मतलब ऐसी मशीनें जो मिट्टी, पत्थर, भारी सामग्री को हटाने, खोदने या स्थानांतरित करने का काम करती हैं।
1: तभी तो इसका नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रखा गया होगा।
2: बिल्कुल सही समझा
1: दादू। खदानों में इन मशीनों की क्या भूमिका होती है?
2: देखो बेटा, कल्पना करो, किसी कोयला खदान से लाखों टन मिट्टी हटानी है, क्या ये काम मजदूरों के हाथों से संभव होगा?
1: अरे ना बाबा, उसमें तो जाने कितने साल लग जाएंगे दादाजी।
2: बस यही कारण है कि इसके लिए विशाल डंप ट्रक और एक्सकेवेटर काम में आते हैं। ये मशीनें कुछ ही समय में वो काम कर सकती हैं जिसके लिए सैकड़ों लोगों को कई दिन लग जाएं।
1: मतलब दादू, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक उद्योगों की रीढ़ यही मशीनें हैं।
2: हाँ बेटा, यदि खदानें ना चलें तो कोयला, लौह अयस्क और अनेक खनिज तत्व और पदार्थ देश के उद्योगों तक नहीं पहुँच पाएंगे।
1: और सड़क निर्माण में BEML का क्या योगदान होता है?
2: वहाँ भी इनका महत्व कम नहीं है बेटा। पहाड़ काटकर सड़क बनानी हो, सुरंग निर्माण करना हो या बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हो, हर जगह भारी मशीनों की जरूरत होती है
1: दादू। तो जब भी हम किसी नए राजमार्ग पर चलते हैं, तब उसके पीछे भी ऐसी ही संस्थाओं का योगदान होता है।
2: बिल्कुल, विकास केवल दिखाई देने वाली सड़क का नाम नहीं है बेटा, उसके पीछे वर्षों की योजना, तकनीक और मशीनों की मेहनत होती है।
1: अच्छा दादू, आप ये बताइए ना कि आज BEML का नाम किस क्षेत्र में ज्यादा सुनाई देता है?
2: रक्षा के क्षेत्र में बेटा, क्योंकि समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। देश को रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी समाधान चाहिए थे।
1: दादू, आपने बताया था कि शुरुआत में BEML खनन और निर्माण कार्यों के लिए मशीनें बनाती थी, फिर इसका रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव कैसे हुआ?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा, वैसे वैसे सेना के लिए खास तरह के वाहनों और उपकरणों की जरूरत महसूस हुई, तब BEML ने भी रक्षा क्षेत्र में कदम रखा।
1: विशेष वाहन और उपकरण किस तरह के दादू?
2: देखो बेटा, सेना को ऐसे वाहन चाहिए होते हैं जो केवल सामान्य सड़कों पर ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान की तपती रेत, हिमालय की बर्फीली चोटियों, दलदली इलाकों और घने जंगलों में भी आसानी से चल सके। कई बार उन्हें भारी तोपें, टैंक, मिसाइलें और अन्य सैनिक सामग्री भी ढोनी पड़ती है।
1: यानी सेना के वाहन साधारण ट्रकों जैसे नहीं होते दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, उन्हें बेहद मजबूत, भरोसेमंद और कठिन परिस्थितियों में काम करने योग्य बनाना पड़ता है। BEML ने ऐसे अनेक विशेष सैन्य वाहनों और सहायक उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: दादू, ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा।
2: निश्चित रूप से, एक सामान्य वाहन और सैन्य वाहन में बहुत अंतर होता है बेटा।
1: दादू, सेना के वाहनों को सामान्य वाहनों से इतना अलग क्यों बनाया जाता है?
2: क्योंकि बेटी, सेना का काम केवल शहरों की सड़कों पर चलना नहीं होता। कभी उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों पर जाना पड़ता है, कभी तपते रेगिस्तान में, कभी घने जंगलों के बीच।
1: मतलब जहाँ सामान्य वाहन शायद काम ही ना कर पाए।
2: हाँ बेटा, कई बार तो सड़कें भी नहीं होती, फिर भी सैनिकों तक रसद, हथियार और आवश्यक सामग्री पहुंचानी होती है। इसीलिए सैन्य वाहनों को अधिक शक्तिशाली, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जाता है।
1: तो BEML ऐसे ही विशेष वाहन बनाती होगी दादाजी?
2: हाँ बेटा, BEML सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप कई प्रकार के विशेष वाहनों, भारी परिवहन प्रणालियों और सहायक रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
1: यानी देश की सुरक्षा में भारत के संस्थान इस तरह अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इन संस्थानों की उन्नत तकनीकों से बने स्वदेशी उपकरण और वाहन राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं।
1: दादू, आपने एक बार एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर का नाम लिया था।
2: हाँ हाँ बेटा, जब कोई विमान हवाई अड्डे पर खड़ा होता है तो उसे सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता होती है।
1: दादू, क्या ये विमान खुद से नहीं जा सकता?
2: कुछ परिस्थितियों में नहीं, लेकिन तब ऐसे ट्रैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं बेटा।
1: और वे भी BEML ही बनाती है?
2: हाँ, ये संस्था कई प्रकार की विशेष प्रयोजन मशीनें बनाती रही है।
1: दादू, BEML मेट्रो से भी जुड़ी है?
2: हाँ बेटा, जब भारत में आधुनिक मेट्रो प्रणालियों का विस्तार शुरू हुआ तब मेट्रो कोच निर्माण की आवश्यकता तेजी से बढ़ी।
1: फिर
2: BEML ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और मेट्रो कोच निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: यानी केवल खदानों की मशीनें ही नहीं, यात्रियों को ले जाने वाले कोच भी।
2: यही तो BEML की सबसे बड़ी विशेषता है बेटी। एक और ये खनन और निर्माण कार्यों के लिए भारी मशीनें बनाती है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष वाहन और रेल तथा मेट्रो के लिए कोच भी तैयार करती है।
1: दादू, सच कहूँ ना तो अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि कितना विश्वसनीय है। आखिर एक संस्था इतने अलग अलग क्षेत्र में काम कैसे कर सकती है दादाजी?
2: इसका उत्तर है इंजीनियरिंग क्षमता।
1: मतलब?
2: जब किसी संस्था के पास डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था हो तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी सफल हो सकती है।
1: तो BEML केवल उत्पाद नहीं बनाती बल्कि तकनीकी ज्ञान भी विकसित करती है।
2: बिल्कुल बेटा, किसी मशीन को बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे वर्षों का अध्ययन, अनुसंधान और परीक्षण छिपा हुआ होता है।
1: मतलब पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी?
2: हाँ, सबसे पहले इंजीनियर मशीन की आवश्यकता को समझते हैं, फिर उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद मॉडल बनाया जाता है और अनेक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मशीन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह काम करेगी।
1: यानी हर मशीन के पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक सोच होती है।
2: हाँ बेटा, BEML के विशेषज्ञ लगातार नई तकनीकों पर काम करते रहे हैं। वे मशीनों को अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली और अधिक ईंधन कुशल बनाने का प्रयास करते रहते हैं।
1: तो इसका लाभ देश को भी मिलता होगा?
2: निश्चित रूप से बेटा, जब तकनीक देश में विकसित होती है तो विदेशी निर्भरता कम होती है, लागत घटती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
1: अब समझ में आया दादू कि किसी संस्था की असली ताकत केवल उसके कारखानों में नहीं बल्कि उसके ज्ञान और नवाचार में भी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, यही ज्ञान और नवाचार किसी संस्था को समय के साथ आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा दादू, क्या इनके पास इनका अपना रिसर्च सेंटर भी है?
2: हाँ हाँ बेटा, नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ किसी भी आधुनिक संस्था का आधार होती हैं।
1: और वहाँ किस तरह की रिसर्च और निर्माण होता होगा?
2: वहाँ पे बेटा नई मशीनों के मॉडल तैयार किए जाते हैं, पुराने डिजाइन सुधारे जाते हैं, ईंधन दक्षता बढ़ाने पर बहुत काम होता है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक विकसित की जाती है।
1: यानी प्रयोगशाला में जन्म लेने वाला विचार बाद में वास्तविक मशीन बन जाता है दादाजी।
2: ठीक कहा बेटा, एकदम ठीक।
1: दादू, आज की कहानी से मुझे एक बात समझ में आ रही है।
2: और वो क्या है?
1: वो बात ये है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं बल्कि उसके उद्योगों और तकनीकी संस्थानों से भी तय होती है।
2: एकदम सही कहा बेटा तुमने। यदि मशीनें, उपकरण और तकनीक अपने देश में विकसित हों तो राष्ट्र अधिक आत्मनिर्भर बनता है।
1: और BEML उसी आत्मनिर्भरता की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना लंबा सफर तय हो गया।
2: हाँ बेटा, और देखो बाहर का नजारा भी लगातार बदल रहा है।
1: अरे दादू, उधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है, लगता है कोई सड़क या पुल बनाया जा रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा। देश के विकास की कहानी केवल लक्ष्यों और योजनाओं में नहीं लिखी जाती बल्कि ऐसी मशीनों के पहियों और इंजनों की शक्ति से भी आगे बढ़ती है।
1: दादू, तो क्या ऐसी परियोजनाओं में भी BEML की मशीनें उपयोग होती हैं?
2: हाँ बेटा, सड़क निर्माण, खनन, औद्योगिक परियोजनाएं और अनेक बड़े निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले भारी उपकरणों के निर्माण में BEML ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: दादू, मतलब जब हम कोई नया राजमार्ग, सुरंग या औद्योगिक क्षेत्र बनते हुए देखते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी ही संस्थाओं की मेहनत भी होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा।
1: उधर तो देखिए, दूसरी पटरी पर एक बहुत लंबी मालगाड़ी जा रही है।
2: हाँ हाँ, और ध्यान से देखो उसके डिब्बों पर क्या रखा है, देखो। हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना।
1: अरे हाँ दादू, ये तो बहुत बड़े बड़े वाहन लग रहे हैं, कुछ तो सेना के वाहनों जैसे दिखाई दे रहे हैं दादाजी।
2: तुम्हारी नजर तेज होती जा रही है बेटा।
1: सो तो है दादू। अच्छा ये बताइए ना, क्या ऐसे भारी सैन्य वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेल के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है?
2: हाँ हाँ, अक्सर जब सेना को बड़ी संख्या में वाहन, उपकरण या कोई अन्य सामग्री दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचानी होती है, तब रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, मुझे तो सोचकर ही बहुत रोमांच हो रहा है कि किसी वाहन की यात्रा कारखाने से शुरू होकर देश की सीमाओं तक कैसे पहुंचती होगी,
2: और उस यात्रा के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम छिपा होता है बेटा। ये मत भूलना, डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीशियन, परीक्षण विशेषज्ञ और उत्पादन कर्मी।
1: ये तो है दादाजी। अच्छा दादू, जब कोई नया सैन्य वाहन बनाया जाता है तो क्या उसे सीधे सेना को सौंप दिया जाता है?
2: नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
1: तो फिर
2: देखो, सबसे पहले इसकी जरूरत को समझा जाता है। सेना बताती है कि उसे किस प्रकार का वाहन चाहिए, कहाँ उपयोग होना है, कितना भार उठाएगा, किस परिस्थितियों में कितना काम करेगा।
1: पर दादू, ऐसा तो जहाज बनाने के पहले भी किया जाता है ना?
2: हाँ हाँ, किसी भी वाहन या तकनीकी उपकरण के पहले उसकी जरूरत क्यों होगी, कैसे उसका उपयोग होगा, ये जानना जरूरी होता है बच्चे।
1: फिर इंजीनियर उसका डिजाइन तैयार करते होंगे।
2: हाँ, उसके बाद मॉडल तैयार होता है, फिर परीक्षणों का लंबा दौर चलता है।
1: परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू?
2: देखो बेटा, कभी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, कभी गर्म इलाकों में, कभी भारी वजन के साथ, और कभी लगातार कई घंटों तक चलाकर।
1: ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहन हर परिस्थिति में काम करेगा।
2: हाँ, रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे।
1: दादू, आपने गौर किया, जब भी हम किसी बड़े संस्थान के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात बार बार सामने आती है।
2: क्या बात सामने आती है बेटा?
1: गुणवत्ता दादाजी।
2: क्योंकि गुणवत्ता के बिना तकनीक अधूरी है।
1: और केवल मशीन बना लेना ही पर्याप्त नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं है, मशीन सुरक्षित हो, टिकाऊ हो और लंबे समय तक भरोसेमंद ढंग से काम करे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: तभी तो सेना और रेलवे जैसी संस्थाएं किसी उपकरण पर भरोसा कर पाती हैं दादाजी।
2: एकदम सही कहा बेटा।
1: दादू, BEML का योगदान केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं है।
2: हाँ बेटा, भारत में रेल परिवहन के आधुनिकीकरण की यात्रा में भी ऐसी संस्थाओं का योगदान रहा है। विशेष रूप से मेट्रो रेल परियोजनाओं में BEML ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
1: दादू, मुझे याद है जब पहली बार मैं मेट्रो में बैठी थी ना, तो उसकी गति और सफाई देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी।
2: और सोचो, उस आधुनिक अनुभव के पीछे कितनी इंजीनियरिंग, कितनी योजना और कितना उत्पादन कार्यकर्ता होगा।
1: सचमुच दादू, यात्रियों को तो केवल आरामदायक सफर ही दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। दादू, एक बात बताइए ना, अगर BEML जैसी संस्थाएं ना होती तो देश में विकास कैसे होता? क्या तब हमें हर भारी मशीन विदेशों से खरीदनी पड़ती दादाजी?
2: काफी हद तक हाँ, और इससे लागत भी बढ़ती, समय भी अधिक लगता और तकनीकी निर्भरता भी बढ़ती।
1: मतलब आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं है दादाजी, बल्कि आज की जरूरत है।
2: जब देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीनें, वाहन और तकनीक स्वयं विकसित करता है, तब उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और क्षमता भी बढ़ती है।
1: अब समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में ऐसे संस्थानों का नाम क्यों लिया जाता है।
2: क्योंकि ये संस्थान केवल उत्पाद नहीं बनाते बेटा, बल्कि राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करते हैं।
1: दादू, आपने BEML के वर्तमान के बारे में तो बहुत कुछ बताया मुझे, लेकिन क्या ये संस्था भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रही है?
2: अरे बेटी, यही तो सबसे रोचक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में परिवहन, रक्षा और निर्माण की दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है।
1: मतलब BEML की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दादाजी?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, BEML की कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अब बात होगी भविष्य की नई तकनीकों की। आधुनिक निर्माण की और आत्मनिर्भर भारत के अगले कदमों की।
1: दादू, क्या तकनीक सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है?
2: हाँ बेटा, आज से कुछ दशक पहले जिन मशीनों को अत्याधुनिक माना जाता था, आज उनसे कहीं अधिक उन्नत प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं। अब मशीनों में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी जोड़ी जा रही है।
1: बुद्धिमत्ता मशीनों में?
2: हाँ, आज कई आधुनिक मशीनों में ऐसे यंत्र तंत्र लगाए जा रहे हैं जो उनके प्रदर्शन पर लगातार नजर रखते हैं। किसी खराबी की संभावना हो तो पहले ही संकेत दे देते हैं।
1: यानी समस्या आने से पहले ही उसका पता चल सकता है।
2: बिल्कुल, इससे समय भी बचता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।
1: तो क्या दादाजी, भविष्य में रक्षा क्षेत्र के वाहन भी और अधिक आधुनिक हो जाएंगे?
2: निश्चित रूप से, दुनिया भर में ऐसे वाहनों पर काम हो रहा है जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके, कम रखरखाव मांगे और अधिक सुरक्षित हो।
1: और दादाजी, भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: हाँ हाँ बेटा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक विकसित करें और लगातार उसे बेहतर बनाते रहें।
1: मतलब केवल विदेशी तकनीक खरीदना ही समाधान नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं, वास्तविक शक्ति तब आती है जब तकनीक का ज्ञान भी अपने देश में विकसित हो रहा हो। बेटा
1: दादू, जब भी हम किसी संस्थान की कहानी सुनते हैं, वहाँ हजारों लोग काम करते दिखाई देते हैं।
2: और यही किसी भी बड़े संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसके लोग,
1: यानी इंजीनियर, तकनीशियन, डिजाइनर और वैज्ञानिक।
2: कोई नई मशीन की रूपरेखा तैयार करता है तो कोई उसके पुर्जे बनाता है, कोई परीक्षण करता है तो कोई गुणवत्ता की जांच करता है।
1: एक मशीन के पीछे सैकड़ों हाथ और हजारों घंटों की मेहनत छिपी होती है दादाजी।
2: शाबाश मेरी बच्ची, एकदम सही कहा तुमने।
1: दादू, अगर कोई स्टूडेंट आज का ये कार्यक्रम सुन रहा हो और भविष्य में ऐसे संस्थान में काम करना चाहे तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए।
2: देखो बेटा, सबसे पहले उसे जिज्ञासु बनना होगा।
1: जिज्ञासु? वो भला कैसे?
2: जैसे कि मेरी प्यारी पोती रुचि है, है ना? उसे तुम्हारी तरह ही हर मशीन को देखकर ये पूछना होगा कि ये कैसे काम करती है, हर नई तकनीक को समझने की कोशिश करना, विज्ञान और गणित से दोस्ती करना।
1: क्या दादू, और मेहनत?
2: वो तो सबसे जरूरी है बेटा, बड़े सपनों को साकार करने के लिए निरंतर सीखना पड़ता है।
1: तभी तो कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा ना।
2: हाँ बिल्कुल।
1: दादू, एक बात सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
2: किस बात का आश्चर्य बेटा?
1: वो ये कि जब हम किसी मेट्रो में सफर करते हैं ना दादाजी, या किसी नई सड़क पर चलते हैं, या समाचारों में सेना के आधुनिक वाहनों को देखते हैं, तब हम शायद ही कभी सोचते होंगे कि इनके पीछे कितनी संस्थाओं और कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है।
2: वास्तव में देश के लिए निर्माण का कार्य विशाल यज्ञ की तरह होता है। उसमें कोई वैज्ञानिक अपना ज्ञान देता है, कोई इंजीनियर अपनी कल्पना, कोई तकनीशियन अपना कौशल और कोई श्रमिक अपना परिश्रम,
1: और तभी कोई बड़ा काम पूरा हो पाता है दादाजी।
2: हाँ बेटा, सोचो यदि खदानों से खनिज ना निकले तो कारखाने कैसे चलेंगे? यदि भारी मशीनें ना हो तो बड़े पुल, सड़कें और सुरंगें कैसे बनेंगी?
1: वो तो है।
2: और यदि रक्षा उपकरणों की आवाजाही के लिए उपयुक्त वाहन ना हो तो सेना की तैयारी कैसे मजबूत होगी?
1: दादाजी, यानी विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ बेटा, और BEML जैसी संस्थाएं इन दोनों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।
1: दादू, क्या BEML के कर्मचारियों को ये एहसास होता होगा कि उनका काम देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि अवश्य होता होगा, क्योंकि जब कोई इंजीनियर किसी मशीन का डिजाइन बनाता है तब वो केवल एक उत्पाद नहीं बना रहा होता बल्कि देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा होता है।
1: और जब कोई तकनीशियन किसी पुर्जे को सावधानी से तैयार करता है
2: तब वो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है।
1: वाह दादाजी, इसका मतलब हर छोटा काम भी महत्वपूर्ण होता है।
2: यही तो सबसे बड़ी सीख है बेटा, कोई योगदान छोटा नहीं होता, बड़ी उपलब्धियाँ हजारों छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर बनती हैं।
1: दादू, आप अक्सर कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है?
2: हाँ हाँ, मैं आज भी कहता हूँ, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
1: तो क्या आने वाले समय में ऐसे संस्थानों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर होगी?
2: निश्चित रूप से बेटा, आने वाले वर्षों में नई तकनीकें विकसित होंगी, नई चुनौतियां सामने आएंगी और नए समाधान भी खोजने होंगे। इसके लिए जिज्ञासु, मेहनती और नवाचार करने वाले युवाओं की आवश्यकता होगी।
1: यानी आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बनेगा।
2: बिल्कुल, और हो सकता है कि आज ये कार्यक्रम सुनने वाला कोई बच्चा भविष्य में ऐसी ही किसी संस्था का नेतृत्व करे।
1: दादाजी, मुझे तो सोचकर बड़ा ही रोमांच हो रहा है।
2: देखो बेटा, किसी भी संस्थान की सफलता केवल उसकी मशीनों से नहीं मापी जाती है, उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने देश और समाज को कितना मजबूत बनाया।
1: और BEML ने ये काम कई दशकों से किया है।
2: हाँ, बदलते समय के साथ उसने स्वयं को बदला, नई तकनीकों को अपनाया और देश की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ती रही।
1: यानी यही किसी जीवंत संस्था की पहचान है।
2: बिल्कुल बेटा, जो सीखना बंद कर दे वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है,
1: और जो निरंतर सीखता रहे वही भविष्य का निर्माण करता है।
2: शाबाश बेटा, शाबाश। लगता है आज की यात्रा सचमुच सफल रही।
1: दादू, आज हमने जाना कि किसी भी संस्थान की कहानी केवल उसकी इमारतों या मशीनों की कहानी नहीं होती।
2: तो फिर क्या होती है?
1: ये उन लोगों की कहानी होती है दादाजी, जो अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से देश को आगे बढ़ाते हैं।
2: वाह बेटा वाह, लगता है इस यात्रा ने वाकई तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया।
1: और आपने भी तो बहुत कुछ सिखाया दादू।
2: मैं तो तुम्हारा दादू हूँ, सिखाऊंगा ही बेटा। याद रखो बेटा, किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मशीनें नहीं होती, बल्कि वो विश्वास होता है जो वो देश के लोगों में पैदा करता है। BEML ने दशकों से यही विश्वास मजबूत किया है। भारत की अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकता है, बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार भी कर सकता है।
1: यानी ये केवल मशीनें बनाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाने की कहानी भी है दादाजी।
2: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने। जब किसी देश के युवा सीखने, शोध करने और नवाचार करने का संकल्प लेते हैं, तब ऐसे संस्थान उस संकल्प को शक्ति देने का काम करते हैं।
1: समझ गए दादू, आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव केवल देश के कारखानों से मजबूत नहीं है, बल्कि देश के उन संस्थानों में काम कर रहे लाखों लोगों के ज्ञान, कौशल और परिश्रम से है।
2: शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, और यही आज की यात्रा की सबसे बड़ी सीख भी है।
1: दादू चलिए जरा संभल कर उठिएगा।
2: हाँ हाँ बेटा,
1: बैग में लेती हूँ।
2: हाँ।
1: श्रोताओं, आज आपने सुनी BEML की स्थापना, उसके शुरुआती कार्यों और रक्षा अधोसंरचना क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की कहानी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में दादू और रुचि आपको बताएंगे देश के और भी कई संस्थानों के बारे में, साथ ही आत्मनिर्भर भारत में इन संस्थानों की भूमिका और भविष्य की योजनाएं क्या क्या है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना,
2: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं और इतिहास फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और महान देशभक्त की रोचक कथा लेकर। आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में ओर मांझी के राजा उमराव सिंह के देशभक्त दीवान शेख भिखारी की, जिन्होंने सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण क्रांति में उल्लेखनीय योगदान दिया।
1: शेख भिखारी ओर मांझी से 9 किलोमीटर पूर्व अनगढ़ा थाना के खुदिया लोटवा गाँव में पैदा हुए थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला सीखी थी, साथ ही साथ पूर्वजों के अनुभव से प्रशासनिक कुशलता भी हासिल की थी।
0: आज यानी 8 जनवरी और सन 1858 को ही शेख भिखारी शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी और प्रशासनिक क्षमता के शौर्य से प्रभावित होकर ओर मांझी खटंगा के राजा उमराव सिंह ने उन्हें अपनी रियासत का दीवान और भंडारी बना दिया था।
1: 1857 की क्रांति में छोटा नागपुर में डोरंडा के सैनिकों ने 31 जुलाई को जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खां के नेतृत्व में चुटुपालू घाटी में सबसे पहला क्रांति बिगुल बजाया। ये घाटी राजा उमराव सिंह की जमींदारी में ही आती थी।
0: शेख भिखारी सैनिकों के इस कार्य से खासे प्रभावित हुए और उनका उत्साह भी बहुत बढ़ गया। उन्होंने नादिर अली और माधव सिंह को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ये आश्वासन कोरा नहीं था। उन्होंने विद्रोहियों का सामान ढोने के लिए हाथी, घोड़े और पुलियों का प्रबंध करवाया।
1: साथ ही साथ शेख भिखारी और उमराव सिंह ने चुटुपालू और चारू घाटी को तहस नहस करके उधर का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, ताकि अंग्रेजी सेना वापस ना आ सके।
0: विद्रोहियों का आतंक इतना भयानक था कि अंग्रेज कप्तान ग्राहम और 3 अन्य गोरे अफसर हजारीबाग भाग गए। इधर विद्रोही सैनिक सिर्फ 2 तोपों से गोलाबारी करते हुए चुटुपाली के रांची की ओर चल दिए।
1: 2 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने रांची पर कब्जा कर लिया और डर के मारे रांची के जिलाधीश डेविस, जज ओक्स और पलामू के एडीओ बर्च कांके पिठोरिया के मार्ग से भाग खड़े हुए।

0: 1857 की लड़ाई में कई जगहों पर देश के गद्दारों और विश्वासघातियों ने क्रांति मार्ग में विघ्न पैदा करने की कोशिशें की, परंतु शेख भिखारी जैसे दृढ़ निश्चयी वीरों ने हार नहीं मानी।
1: कुछ सिख सेनाएं बिहार और छोटा नागपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों की मदद कर रही थीं। सिख सेना हजारीबाग में 3-4 दिन तक पड़ाव डाले बैठी थी। इसी बीच शेख भिखारी हजारीबाग जा पहुंचे।
0: तमाम मुश्किलें पार करके शेख ने विश्वनाथ शाहदेव का पत्र उस सिख सेना के मेजर बिशन सिंह तक पहुंचा भी दिया और उन्हें स्वतंत्र सरकार का समर्थन करने को राजी भी कर लिया।
1: हाँ तारीख, पर ये बात कितनी दुखद है कि हमारे देश के क्रांतिवीरों को अपने ही लोगों को अपनी ही स्वतंत्रता के लिए फुसलाना पड़ा, उन्हें लालच देने पड़े।
0: अगर देश में गद्दार मौजूद ही नहीं होते तो हमारा देश गुलामी के इतने बरस नहीं झेलता। और तब क्यों आज भी हम सब ये प्रण ले लें कि देश और मानवता के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, तो संसार कितना सुख शांति पूर्ण हो जाए, है ना इतिहास।

0: शेख भिखारी ने छोटा नागपुर में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। संथाल परगना के दो भाइयों सिद्धू और कानू ने तो सन 1855 से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
1: हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में संथालों का शुरू से ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से सुरेंद्र शाह के नेतृत्व में 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग की दोनों जेलों को तोड़कर ढेरों संथाल विद्रोहियों को जेल से रिहा कराया गया।
0: इन संथालों के नेता थे वीर रिपु मांझी, फागु मांझी, रिवजा मांझी, डबर गंजू और अर्जुन मांझी। इनके नेतृत्व में 1857 में हजारीबाग स्वतंत्र करा लिया गया।
1: एक बात सोचो इतिहास, उस समय तो संपर्क के साधन भी नहीं थे, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े देश के कोने कोने से हर इलाके के भील, संथाल, आदिवासी और लोग एक आवाज पर जागरूक हो जाते थे और मदद के लिए आगे भी आते थे।
0: बिल्कुल, उस एकता के जज्बे के कारण ही तो भारत स्वतंत्र हो पाया। कोई भी साधन मौजूद नहीं होने के बावजूद जनशक्ति ही थी जो सबसे बड़ा संपर्क का माध्यम और साधन थी।
1: ऐसी शक्ति को हमारा नमन है और साथ ही हम एक जोश से भरा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: हाँ हाँ, जरूर।

0: वाह, मजा आ गया ये ताजगी भरा गीत सुनकर। तो तारीख, हम बात कर रहे थे उन पांच वीर संथाली नेताओं की जिन्होंने हजारीबाग स्वतंत्र करवाया था।
1: हाँ, इतना बड़ा कार्य किया और बस अंग्रेजी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए। इन पांचों नेताओं को पकड़वाने का ब्रिटिश सरकार ने 100-100 रुपये इनाम घोषित कर दिया।
0: संथाल विद्रोह इतना उग्र था कि हजारीबाग का जिलाधीश मेजर सिम्पसन भयभीत होकर भाग गया और बड़ई में रहने लगा।
1: अंग्रेजों की संथालों के प्रति नफरत बढ़ती रही। आखिरकार आगे चलकर संथालों का ये विद्रोह भी दबा दिया गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर संथाल में नरसंहार किया और त्राही त्राही मचा दी।
0: इतना ही नहीं तारीख, मार्ड से लेकर कोला तक लगभग 200 संथाल विद्रोहियों को सरेआम फांसी दे दी गई और संथालों के गांव जला डाले।
1: अंग्रेजी आतंक से भयभीत और पूर्ण रूप से निर्धन हो चुके अधिकांश संथाल उत्तर बंगाल भाग गए। मौका पाते ही 22 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः रांची पर कब्जा कर लिया।
0: अंग्रेजों को ये मौका इसलिए मिला क्योंकि डोरंडा की विद्रोही सेना रांची से दिल्ली की ओर कूच कर गई थी और रांची में कोई विद्रोही सैन्य शक्ति नहीं बची थी। कुंवर सिंह भी बिहार से अन्यत्र चले गए और अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया।
1: बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और लगभग अकेले बच गए अपने कट्टर शत्रु शेख भिखारी, उमराव सिंह और उनके भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को घोर यातनाएं देते हुए निर्दयता पूर्वक रांची लाया गया।
0: ब्रिटिश शासन के लिए मैदान एकदम साफ था। वो दुष्टता और बर्बरता की हदें पार कर रहे थे। बदले की भावना में बौराए अंग्रेज रांची में क्रांतिकारियों को सरेआम फांसी पर लटका रहे थे।
1: छोटा नागपुर के जुडिशियल कमिश्नर विलियम ओक्स ने मद्रास फौज के मेजर मैकडोनल्ड को मौखिक आदेश दिया कि जिस चुटुपालू घाटी और चारू घाटी को शेख भिखारी ने बर्बाद किया है, वहीं उन्हें और राजा उमराव सिंह को एक साथ पेड़ पर जनता के समक्ष फांसी दे दी जाए।
0: जब शेख भिखारी और उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी ले जाया गया तो दृश्य देखने जैसा था। हजारों देशभक्त विद्रोहियों के परिवार मार्ग में उमड़ पड़े। इस भीड़ में महिलाएं और पुरुष रोते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों में भय के साथ साथ उनकी आंखों में एक भयानक आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता था।
1: आक्रोश ऐसा था कि जब ये भीड़ मोरहाबादी पहुंची तो मेजर मैकडोनल्ड को आशंका हुई कि मद्रास फौज कहीं डर के भाग न जाए।
0: खतरा भांपते हुए मैकडोनल्ड ने 8 जनवरी 1858 को रांची और माझी मार्ग में ही मोरहाबादी टैगोर हिल्स के पास एक वृक्ष की दो डालों पर शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी दे दी।
1: इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड ने जनता में भय बनाए रखने के लिए इनके शव एक पेड़ पर लटके रहने देने के आदेश दिए। मोरहाबादी के स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से पुकारा जाता है।
0: फांसी के बाद दोनों शहीदों की संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके परिवार अभाव और गरीबी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर दिए गए। तारीख, जानती हो, अमर शहीद शेख भिखारी के वंशज शेख अलीमुद्दीन रांची के बाजार में मजदूरी करते थे।
1: इतने बड़े संभ्रांत परिवार में जन्मे शेख भिखारी, जिनके पूर्वज शेख बुलंदू खुदिया लोटवा गांव के जमींदार थे और 12 गांवों के मालिक भी। ये 12 गांव उनको औरागढ़ की रानी ने उन्हें उनकी बहादुरी और रामगढ़ सिकदरी घाटी की रक्षा के एवज में उपहार में दी थी।
0: हाँ तारीख, एक तरफ तो ये तथ्य है और दूसरी ओर शहीद भिखारी दिवस समारोह समिति की कुछ और ही मान्यता है। वो कहते हैं कि शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के बुडबू थाने के होपटे गांव में एक बुनकर परिवार में हुआ था।
1: अरे इतिहास, तारीखें कहती हैं कि अधिकांश किस्से शेख भिखारी के खुदिया लोटवा गांव के होने की पुष्टि करते हैं। यहां तक कि डोरंडा कॉलेज रांची के इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं प्रमुख इतिहासविद डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार भी खुदिया ही उनका जन्म स्थान मानते हैं।
0: हमारा उद्देश्य उन वीरों की लड़ाई को सम्मान पूर्वक याद करना है और हम खुद ही लड़ने लगे।
1: चलो भाई, हम अपने श्रोताओं को प्यारा सा गीत सुनवाएं और मन से वीर अमर शेख भिखारी को नमन करें।
0: बिल्कुल तारीख, मैं तुमसे एकदम सहमत हूँ। तो लीजिए हमारा आज का ये अंतिम गीत। ये गीत हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से शेख भिखारी को श्रद्धांजलि स्वरूप है।
1: और श्रोताओं, जैसा हमने पहले भी बताया था, आज शेख भिखारी की पुण्यतिथि है। हम उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत
3: और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए
2: नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

बजबज की विजय। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक को किसी महान सेनापति ने नहीं बल्कि पूरी तरह नशे में धुत एक अकेले नाविक ने जीता था। ये साल 1756 की बात है, जब बंगाल के नवाब के हाथों कलकत्ता के पतन ने अंग्रेजों के बीच अकथनीय घबराहट पैदा कर दी थी और कंपनी की नींव हिला दी थी। मद्रास से एक राहत अभियान भेजा गया जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थलसेना की कमान संभाल रहा था और एडमिरल वॉटसन एक शक्तिशाली नौसैनिक दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। हुगली नदी के रास्ते आगे बढ़ते समय उनकी पहली बड़ी बाधा बजबज का किला था, जो कलकत्ता के ठीक नीचे जल मार्ग पर नियंत्रण रखता था। स्वर्ग से जन्मे सेनापति कहे जाने वाले क्लाइव ने भोर होते ही किले पर औपचारिक हमले की पूरी योजना तैयार कर ली थी, लेकिन नियति और थोड़ी सी शराब को कुछ और ही मंजूर था। क्या आप जानते हैं कि जब अधिकारी रणनीति पर बहस कर रहे थे, तब स्ट्रेहन नाम का एक आम नाविक अत्यधिक शराब पीने में व्यस्त था। 29 दिसंबर की रात को नशे में चूर स्ट्रेहन अंग्रेजी कैंप से भटक गया और अनजाने में खुद को किले की दीवारों के नीचे पाया। उसे प्राचीर में एक दरार मिली जो नौसेना की गोलाबारी से बनी थी। स्ट्रेहन मलबे के सहारे ऊपर चढ़ गया और दरार के शीर्ष पर पहुंच गया, जहां उसने खुद को दुश्मन के संतरियों के सामने अकेला पाया। भागने के बजाय उस नशे में धुत नाविक ने अपनी कटार लहराई, पिस्तौल चलाई और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए 3 बार हुर्रे का जयघोष किया। ये जगह मेरी है। कैंप में मौजूद उसके साथी नाविकों ने जब शोर सुना तो उन्हें लगा कि आधिकारिक हमला समय से पहले शुरू हो गया है और वे उसकी मदद के लिए दरार की ओर दौड़ पड़े। किले की सेना, जिसे लगा कि ये बहुत बड़ा और अचानक हमला है, घबरा गई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। जब तक क्लाइव और उसके अधिकारी अपने शानदार हमले का नेतृत्व करने पहुंचे, उन्होंने पाया कि किला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जीता जा चुका था जो सीधे चल भी नहीं पा रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब इस आकस्मिक नायक को उसके वरिष्ठों के सामने लाया गया तो क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि जब इस आकस्मिक नायक को उसके वरिष्ठों के सामने लाया गया तब क्या हुआ? एडमिरल वॉटसन ने नौसैनिक अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करते हुए स्ट्रेहन को कड़ी फटकार लगाई। उस नाविक ने, जो लहू लुहान था पर झुका नहीं था, एक ऐसा जवाब दिया जो कंपनी के इतिहास में अमर हो गया। उसने एडमिरल से कहा, अगर मुझे अपनी बहादुरी के लिए कोड़े खाने पड़ने हैं तो भगवान की कसम, मैं अपने पूरे जीवन में फिर कभी अकेले कोई किला नहीं जीतूंगा। बजबज की ये अजीबोगरीब घटना उस प्रसिद्ध 200 दिनों का एक निर्णायक मोड़ बन गई, जिसमें अंग्रेजों ने कलकत्ता को वापस लिया और अंततः पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये घटना याद दिलाती है कि कंपनी के सत्ता में उदय के दौरान अक्सर भव्य सैन्य योजनाओं की तुलना में व्यक्तियों की, यहां तक कि नशे में धुत व्यक्तियों की चतुराई और साहस ने अधिक अंतर पैदा किया।

गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। ১৬৬০ तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्य के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब VOC को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते, जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने VOC से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था। वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा
जहां VOC ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, VOC ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। सत्रहवीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ

शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन महाकाव्यों का गुच्छा, ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना गंगा के पावन तट पर खड़ा वो तेजस्वी दानवीर जिसके लिए त्याग कोई प्रदर्शन नहीं, स्वभाव था। सूर्य की प्रखर किरणों के मध्य जल में स्थिर कर्ण मानो तप, तेज और करुणा का संगम बन गया था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस दृश्य को जिस दिव्यता से रचा है, वो केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि भीतर उतरता है।
1: जी हाँ, अब कथा उस संधि क्षण में प्रवेश कर रही है जहां भाग्य अपनी अगली चाल चलने वाला है। गंगा की धारा अभी भी उतनी ही निर्मल है, आकाश में सूर्य उतना ही दैदीप्यमान, किंतु प्रकृति के इस शांत विस्तार के भीतर कोई अदृश्य हलचल जन्म ले चुकी है। कर्ण अपनी उपासना पूर्ण कर चुका है। जल से उठता हुआ वह सूर्य पुत्र मानो स्वयं तेज का प्रतिरूप प्रतीत होता है। तभी तट पर एक सूक्ष्म सी आहट सुनाई देती है। देखने में तो वह क्षण साधारण है, पर महाकाव्य अक्सर ऐसे ही मौन पलों में दिशा बदलते हैं। कौन जानता है कि ये आने वाला अतिथि एक याचक है, देवता है या स्वयं नियति का दूत।
0: श्रोताओं, मनुष्य का वास्तविक मूल्य तब नहीं आका जाता जब उसके पास सब कुछ सुरक्षित हो, बल्कि तब परखा जाता है जब उसके सामने अपने ही तेज का अंश अर्पित करने की घड़ी आ रही हो। कर्ण अब ऐसे ही एक धर्म संकट के द्वार पर खड़ा है जहां दान केवल उदारता नहीं रहेगा बल्कि उस के व्यक्तित्व की अंतिम कसौटी बनने वाला है। आगे का प्रसंग त्याग, तपस्या और आत्म गौरव की ऐसी गाथा है जो शताब्दियों बाद भी हृदय को आंदोलित करती है। आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 की ओर, जहां सूर्य पुत्र कर्ण की महिमा एक नए शिखर को स्पर्श करती है। सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया और बोला,
2: जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आदि, नहीं रा एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं, आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है, लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतला हैं कि दधीची प्रात कोट में आ गिने जाए, सबका हस मृत्यु में डरते हैं, हसन के लिए प्राण झट सकते हैं, ऐसा मनुष्य जय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, भय भी कौन कितना पाता, यह लिखा नर के ललाट में ही देखा जाता है, क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा, नहीं केवल ऊंची अभिलाषा।
0: ब्राह्मण सबसे पहले कर्ण की दानशीलता, सत्यनिष्ठा और वचन पालन की प्रशंसा करता है। वो उन्हें केवल महान योद्धा नहीं बल्कि शिवी, दधीची और प्रहलाद जैसी त्यागमयी परंपरा का उत्तराधिकारी बताता है। ये प्रशंसा केवल अलंकार नहीं है। दिनकर जी यहां कर्ण के चरित्र की उस ऊंचाई को स्थापित करते हैं जहां मनुष्य अपने वैभव से नहीं अपने त्याग से महान बनता है। यही भारतीय संस्कृति का शाश्वत आदर्श भी है। किंतु यदि हम इस संवाद को ध्यान से सुने तो अनुभव होगा कि यह केवल स्तुति नहीं है। प्रत्येक शब्द मानो कर्ण की आत्मा की परीक्षा ले रहा है। ब्राह्मण बार बार उन्हें उनके वचन, उनके साहस और उनके दान धर्म का स्मरण कराता है। वो जानता है कि जिस मनुष्य का जीवन उसके सिद्धांतों पर टिका हो, उसे पराजित शस्त्रों से नहीं बल्कि उसके अपने धर्म की कसौटी पर ही किया जा सकता है। यही इस प्रसंग का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सौंदर्य है।
1: दिनकर जी की लेखनी की यही तो विलक्षणता है। ये संवाद के भीतर भी अनेक स्तर रच देते हैं। ऊपर से यह एक साधारण बातचीत प्रतीत होती है, किंतु भीतर नियति अपना जाल बुन रही है। श्रोता भी नहीं जानते कि यह ब्राह्मण वास्तव में कौन है, लेकिन वातावरण संकेत दे रहा है कि आज जो भी मांगा जाएगा वह साधारण दान नहीं होगा, यह ऐसा दान होगा जो इतिहास की दिशा बदल देगा।
0: दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य की महानता इसी में है कि वो पात्रों के बाहरी कर्मों के साथ साथ उनके अंतर मन का भी उतना ही सूक्ष्म चित्रण करता है। रश्मिरथी में दिनकर जी केवल महाभारत की कथा नहीं कहते बल्कि मनुष्य के चरित्र, उसके धर्म, उसकी निष्ठा और उसके आत्मसम्मान का ऐसा विश्लेषण करते हैं जो हर युग में प्रासंगिक बना रहता है। यही कारण है कि ये काव्य केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि प्रत्येक बार नए अर्थों के साथ आत्मा में उतरता है। ये प्रसंग हमें एक और गहरी शिक्षा देता है। किसी मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है और उसे वही सबसे प्रिय वस्तु मांगी जाती है। कर्ण के सामने भी अब ऐसा ही क्षण आने वाला है। उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय, उनकी दानवीरता की सबसे बड़ी परीक्षा और उनके चरित्र की सबसे ऊंची कसौटी अब कुछ ही क्षण दूर है।
1: तो आइए अब सुनते हैं इस अमर प्रसंग का अगला चरण, जहां एक साधारण सा प्रतीत होने वाला याचक ऐसा दान मांगता है जिसे सुनकर स्वयं देवता भी विस्मित रह जाते हैं। आगे की कथा केवल दान की नहीं बल्कि धर्म, वचन, त्याग और अमर मानवीय गरिमा की कथा है। फिर कर्ण कहते हैं,
3: वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मांगता हूं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहां जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए, जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा।
1: भली भांति कसकर दाता को बोला तुच्छ भिखारी।
2: धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी, ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन। आपके मुख से अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूं सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूं। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी

0: भर को सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा। मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूं।
1: बोल उठा राधेय,
2: आपको मैं अद्भुत पाता हूं। सुर हैं या यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनितर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यहीं चढ़ा दूं, या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका धोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए, छोड़ संकोच, वस्तु मन चाही। मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी ना ही, एक बार भी ना ही।
3: श्रोताओं, जब ईश्वर परखते हैं तो वे केवल हमारे बाहुबल को नहीं, हमारे धैर्य को देखते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में धैर्य ही मनुष्य का असली कवच होता है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक प्रश्नों से घिर जाता है, जब परिस्थितियां हमारी निष्ठा को तौलने लगती हैं, तब लगता है मानो ईश्वर स्वयं विभिन्न रूप धरकर हमारी परीक्षा ले रहे हों।
1: हाँ, और सच तो ये है कि जिनका हृदय विशाल होता है, जिनका संकल्प निर्मल होता है, उनकी देहरी पर तो परीक्षा स्वयं चलकर आती है। यहाँ कर्ण के साथ परिस्थिति साधारण नहीं है, यह केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, यह इतिहास का मोड़ है। फिर भी देखिए, वह महामानव अपने सिद्धांत से डिगता नहीं, अपने वचन से हटता नहीं। यही तो महानता है। जब नियति द्वार खटखटाए और मनुष्य शांत स्वर में कहे, आइए मैं तैयार हूं, इस निस्तब्ध तट पर शब्दों का भी शस्त्र परीक्षण हो रहा है। एक ओर भाग्य की धुंधली रेखा, एक ओर भुजबल का उन्मेष प्रखर हो रहा है। यह क्षण अभी प्रस्तावना है, परीक्षा की पूर्ण रात्रि शेष है। आई श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग के भाग चार की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां कर्ण जीवन के इस महासंग्राम में स्वयं को भी दान देने को तैयार है।
3: सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला।
0: धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें, कृपा कर कवच और कुंडल दें।
3: कवच और कुंडल, विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को।

0: समझा तो ये और ना कोई आप स्वयं पति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा स्वयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं। छिपकर आया आप नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्रही समझ कहा धन धाम धरा लेने को था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे जो भी हो इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश ना लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना त्राण छोड़ते हैं क्यों कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे। व्यर्थ ना उसके शर अमोग मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करें बहु भांति पार्थ कि स्वयं कृष्ण रखवाली और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को सुर को शोभे भले नीति ये नहीं शोभती नर को। ये तो निहत शरब पर चढ़ आंखें तक पद पाना है। जहर पिला मृग को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में कर्ण जय कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वो और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वो भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र देवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेला किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला।
1: दोस्तों, गंगा अब भी उसी शांति से बह रही है। संध्या की अंतिम स्वर्णिम आभा धीरे धीरे जल में विलीन हो रही है। हवा खसी गई है, मानो प्रकृति स्वयं इस संवाद के लिए मौन धारण कर चुकी हो। सामने खड़े हैं कप निशल तेजस्वी और आत्मास से भरे हुए, और अब रहस्य का पर्दा उठ चुका या कोई साधारण बिंद रहे क्रोध और मुख्य अटूट निष्ठ।
2: यही कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता, इंद्र को पहचान लेने के भी उन्हें घर में खड़ी करते, उल्टा कह आज है कि स्वर्ग का जा द्वार पर याचन कर आया है। यह केवल दत्ता का परिचय कि उस भारतीय संस्कृति का भी परिचायक है, जहाँ याचक का सम्मान उसके परिचय से नहीं, उसके आग्रह से किया जाता है। कर्ण जानते हैं कि उनके साथ छल किया जा रहा है, फिर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते, यही उन्हें असाधारण बनाता है।
1: लेकिन दिनकर जी कर्ण को केवल दानी नहीं दिखाते, वे उन्हें एक विचारक के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कर्ण इंद्र से प्रश्न करते हैं, यदि अर्जुन को बचाना ही उद्देश्य है तो क्या ये युद्ध न्यायपूर्ण रहेगा? क्या किसी योद्धा का कवच पहले ही उतार लेना वीरता कहलाएगा? ये प्रश्न केवल इंद्र से नहीं है, यह हर उस व्यवस्था से है जो विजय के लिए न्याय का मार्ग छोड़ देती है। कर्ण यहाँ पराजय से नहीं डरते, वे केवल अन्याय से असहमत होते हैं।
2: ये काव्यांश सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मैं स्वयं उस तट पर खड़ी होकर वह संवाद सुन रही हूँ। गंगा का वेग कानों में गूंजता है, मध्याह्न का सूर्य जल पर स्वर्ण रेखाएं खींचता है, और वातावरण में एक विराट स्तब्धता ठहर जाती है। ऐसा लगता है जैसे गंगा स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो, हे सूर्यपुत्र मत टिको, मेरी धारा की तरह निरंतर बहो, शिलाओं से टकराकर भी अपना मार्ग न छोड़ो। तुम्हारा जन्म संग्रह के लिए नहीं, समर्पण के लिए हुआ है। तुम दान लिए आए, देवी तुम पर याचक बने हैं। तुम्हारी परा नहीं, तुम्हारी तेज उत्कर्ष है। सूर्य की किरणों के कंधों हाथ रखते हो, क्यों मन अड़े है, तब गांव ही ऊंचा हो जाता है।
1: श्रोतो, आज हम उस क्षण के समय जहाँ कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि वीरता केवल शस्त्र की धार में नहीं आत्मदृढ़ता में बसती है। कवच कुंडल शरीर की रखते थे, पर उस कच्चा कवच कवच राज खड़ा नियति प्रश्न बन थी, फिर भी स्वर में कंपना। उसने तर्क धर्म की बात की, युद्ध मर्यादा की बात की, अंततः स्वयं को समतल भूमि पर लाने का निर्णय लिया। ये दान नहीं, ये आत्म गौरव की ज्योति थी, ये घोषणा थी कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य होकर ही लड़ूंगा। और अब ये काव्य कथा उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां इस महादान के दूरगामी परिणाम सामने आने लगेंगे। नियति ने अपना बीज बो दिया है, समय उसे फलित करने की तैयारी में है। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग से भाग 5 का काव्य पाठ।
0: जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहित व्यकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में, भृगुपति तक धाया बड़ी भति की, पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही चलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा मेरे पर हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं ये रहस्य भी क्या है, खोज खोज कर घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे ही क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया। सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया, जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आ धर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी ना सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी ना सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहां आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वो भी लाया है। स्याथ उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वो कर्तव्य है ये कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव